सुभद्रभाषिणी सुमधुरभाषिणी सुखद

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि। तदनुसार 6 जून सन 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। मीडियम वेव और एफएम पर हमारी प्रथम सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देशभर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6 बजकर 5 मिनट हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

राम उठत राम चलत, राम शाम भोर हैं। राम बुद्धि राम चित्त, राम मन विभोर हैं। राम शब्द राम अर्थ, राम ही परमार्थ हैं। राम कर्म राम भाग्य, राम ही पुरुषार्थ हैं।

बैकुंठ में भी ना मिले जो वो सुख काना तेरे वृंदावन धाम में है। कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे समाधान बस श्री राधे के नाम में है।

क्या पूछते हैं शान और अजमत हुजूर की, दोनों जहां बने हैं बदौलत हुजूर की। चूमेगी कामयाबी कदम उसका बिल यकीन, अपनाई जिस किसी ने भी सीरत हुजूर की।

गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा ना मीत, गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर जीत।

जय गणेश जय गजवदन, कृपा सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए ज्ञान बुद्धि वरदान, शिव नंदन गौरी तनय प्रथम

अभी आप, वाणी जयराम, अनूप जलोटा, जमील अहमद, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। वंदना अब संपन्न होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। वंदना के पश्चात आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है कर्मानुसार, ऐसा हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है। कर्मानुसार ही मनुष्य को सुख दुख की प्राप्ति होती है, अतः जीवन में कर्म ही प्रधान है। जीवन में कर्म फल की महत्ता को स्वीकार कर ही कर्मों का दो वर्गों में विभाजन किया गया है, सत्कर्म अर्थात सुकर्म, असत्कर्म अर्थात कुकर्म। पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के फल स्वरूप ही इस जन्म में कुल वंश धन शिक्षा पत्नी एवं संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है। क्योंकि हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यदि वर्तमान जीवन में निम्न कुल निर्धनता बुरी संतान दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी मिली है तो निश्चय इसका कारण पूर्व जन्म के बुरे कर्म है, ये सोचकर मनुष्य संतोष कर लेता है। इस जन्म में भी अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करने वाली यही धारणा होती है, जिसके कारण मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार निर्धनों को दान देता है, विद्यालय अनाथालय तथा मंदिरों का निर्माण कराता है, दीन अनाथ बालकों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां देता है। भारतीय समाज में तो विशेष रूप से मनुष्य परलोक की चिंता करता है, चाहे ये लोग बिगड़ जाए पर दान पुण्य महात्माओं की सेवा से वो अपना परलोक बनाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। कर्म की महत्ता बताते हुए भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल की चिंता ना करो। कवि प्रसाद की भाषा में भी आदि पुरुष मनु को जगत के प्रति उदासीन देखकर श्रद्धा समझाती हुई कहती है, एक तुम ये विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ चेतन का आनंद, अर्थात हे तपस्वी, तुम कर्म से विरत होकर जो ये समाधि लगाए बैठे हो वो उचित नहीं है, जीवन कर्म प्रधान है, मनुष्य को कर्म करना चाहिए। अंग्रेजी में कहा गया है, वर्क इज वर्शिप।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। ये समय है स्वास्थ्य संदेश का। स्वास्थ्य संदेश में आज जानकारी का विषय है जीवाणु जनित रोग। जानकारी दे रहे हैं असीम सक्सेना।
1: श्रोताओं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं

0: जो इंसान में बैक्टीरिया के कारण होती हैं। कुछ सामान्य जीवाणु रोग जैसे तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड, टिटनेस, ये सब जीवाणुओं के कारण ही होते हैं। कारण यही होता है कि ये जीवाणु शरीर में बैक्टीरिया के रूप में प्रवेश कर लेते हैं और फिर प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। अपनी जन्मजात प्रतिरक्षा के कारण हम कई जीवाणुओं के विकास को बनाए रखने में सक्षम हैं। बीमारियां प्रदान करने वाले बैक्टीरिया शरीर के प्राकृतिक रक्षा तंत्र को पार कर जाते हैं, शरीर के ऊतकों पर आक्रमण करते हैं, सीधे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने साइड इफेक्ट्स छोड़ देते हैं और हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं या फिर प्रतिरक्षा के प्रति प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। बैक्टीरिया से बचा नहीं जा सकता, ये हर जगह मौजूद है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक स्थायी पर्यावरण बनाए रखने में मदद करते हैं। बैक्टीरिया की 100 से भी कम प्रजातियां हैं जो मनुष्य में बीमारी पैदा करने के लिए जानी जाती हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो संक्रमण का कारण नहीं बनते, उन्हें हम अच्छे बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं, और जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हानिकारक जीवाणु कहा जाता है। ये एक तरह का संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जीवाणुजन्य रोग जैसे जल से, वायु से, भोजन से, शरीर के तरल पदार्थों आदि के माध्यम से फैलते हैं, और जिस तरह से हमारा मेडिकल साइंस फील्ड तरक्की कर रहा है, मनुष्य में इन रोगों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है और इन रोगों के निदान के उपाय भी खोजे जा रहे हैं। मनुष्यों में सामान्यतः जो जीवाणुजन्य रोग हैं जैसे फेफड़े का क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा, कुष्ठ रोग, काली खांसी, धनु स्तंभ, प्लेग, सुजाक, उपदंश और सल्मोनेलेसिस, ये दूषित भोजन और पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और रोगों का कारण बनते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी ये जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा दूषित सुइयों या फिर संक्रमित सर्जिकल उपकरणों को साझा करने से भी ये रोग फैलते हैं। संक्रमित मल या शरीर के तरल पदार्थ के माध्यम से भी ये बैक्टीरिया जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रतिरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। कोशिकाएं प्रभावित होती हैं और हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है वो कमजोर हो जाती है। वैसे तो ये सीधे सीधे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और ऊतक से पोषक तत्व प्राप्त करके अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। ये बच्चों और वृद्धों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। कुपोषण ग्रस्त बच्चे, पुराने रोगों से ग्रसित वृद्धजन इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। इसके अलावा इम्यूनो डेफिशिएंसी विकार जो होते हैं उनका भी ये कारण बनते हैं। इनका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से किया जा सकता है। यद्यपि मनुष्यों में विभिन्न जीवाणु रोगों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं, लेकिन लगातार विकसित हो रही बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होना चिंता का एक प्रमुख कारण बन जाती है। हम जीवाणुजनित रोगों की रोकथाम सचेत रहकर कर सकते हैं। समय पर टीकाकरण कराएं, खाना ठीक से पका हो, स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान हम शारीरिक रूप से और अपने भोजन में भी रखें, आसपास के परिवेश को भी साफ सुथरा रखें, सर्जिकल उपकरणों की साफ सफाई बहुत जरूरी है, नियमित अंतराल पर हाथ धोना, सैनिटाइज करना, असुरक्षित यौन संबंधों से बचना, सावधान रहना, संक्रमित होने पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना, ये सब कारगर होते हैं संक्रमित रोगों के प्रचार प्रसार से बचने के लिए। इसके अलावा टूथब्रश, रेजर, साबुन, बर्तन जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से भी बचना जीवाणुजनित रोगों से निजात दिलाने में फायदेमंद साबित होता है।
1: जीवाणुजनित रोग, इस विषय में अभी आपको जानकारी दे रहे थे असीम सक्सेना। स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 6:45 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। 7:00 लोकरंग में आज कलाकार होंगे लालमन चित्रकार। 7:00 कार्यक्रम अब तक पहुंचेगा 7:31 पर। 8:45 पर सुनिए कुछ नए फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स गौरव भारत देश के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:25 पर। 9:30 उर्दू प्रोग्राम लखनऊ से रिले होगा। उपशास्त्रीय संगीत में 9:50 पर सुनिएगा बेगम अख्तर के स्वर में ठुमरी। 10:05 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपके अनुरोध पर। और 10:30 पर सुनिएगा कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। प्रोग्राम होगा गोल्डन हिट्स।

धरोहर के अंतर्गत 11 बजे सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर समाचार वाचिका श्रीमती चंद्रिका जोशी के साथ मनोज कुमार की भेंट वार्ता। मन भवन कार्यक्रम में 11:30 पर आज आप सुनेंगे गीत माला। 12:10 पर कार्यक्रम होगा गीत आपके नाम। हेलो फरमाइश, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 1:15 पर। 2:30 पर कार्यक्रम होगा सुनहरा दौर।

0: हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे आज शाम के साथ। युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युवावाणी होगा 5:15 पर। 6:10 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। किसान साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत होगा 6:20 पर। इसमें आज चर्चा होगी प्रधानमंत्री आवास योजना। साथ ही डॉक्टर M.S. पाल के साथ भेंटवार्ता का विषय होगा चारे के लिए मक्का की खेती। कृषि संकेत में आप सुनेंगे सब्जी वाली फसलों की देखभाल के विषय में। श्रोता मंच ये कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7 बजे। इसमें आज श्रोता राजेश सोनी के साथ भेंट करता होंगे मनोज कुमार। सुगम संगीत में 7:31 पर कलाकार होंगी रुचि शुक्ला। गीत गाता चलिए कार्यक्रम आप सुनेंगे 8 बजे। 9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती दिल्ली केंद्र से रिले होगा और दिल्ली केंद्र से ही 10 बजे सुनेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे कड़ी संख्या 320।
1: एपिसोड नंबर 320 320।

लंका में भीषण युद्ध छिड़ा है। वानर सेना ने रावण की प्रायः आधी सेना का संहार कर दिया है। रात्रि का आगमन होने पर दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में जय पराजय तथा रणनीतियों की समीक्षा करते हैं। आधा सैन्य बल खोकर रावण चिंतित है। मंत्रणा के समय माल्यवंत रावण को फिर सीख देता है कि वेद पुराणों ने जिन प्रभु का गुण गाया है उनसे विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सका। माल्यवंत उसे स्मरण दिलाता है कि जब से वो सीता को हर लाया है तब से ही भांति भांति के अपशकुन हो रहे हैं, किंतु रावण को अपने वृद्ध नाना की ये सीख नहीं सुहाती। अपमानित कर वो माल्यवंत को सभा से निकाल देता है। रावण पुत्र मेघनाथ ने पिता को अपनी दृढ़ता से उत्साहित किया। कल प्रातः देखना मैं क्या करता हूं, अभी से क्या कहूं। इस प्रकार पिता पुत्र में मंत्रणा होते रात बीत गई। सवेरा हुआ, वानर सेना ने एक बार फिर दुर्गम गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंड तथा अन्य अस्त्र बरसाने लगे। घोर गर्जन तर्जन और वज्र जैसे अस्त्रों से प्रलय मच गई। वानर सेना प्रहार से घायल होती है किंतु मैदान नहीं छोड़ती। मेघनाद ने जब वानर और रीछ सेना द्वारा दुर्ग के घेर लिए जाने का समाचार सुना तो युद्ध घोष करता, डंका बजाता, किले से उतरकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गायक स्वर ए हरिहरन और रविंद्र साठे के थे। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में एक कलाकार हैं लालमन चित्रकार।
1: संधि नाच ले द्वारे में बज रही सहनाई।

घुंघटा से नैन जिने मारो, तुम हो हम का है बिगारो।

8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वागथन 2026 में एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वागथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है।

0: अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली देश की पहली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना यूपी कैंप का शुभारम्भ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाभियान 2026 की शुरुआत करते हुए इसके लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: इस अवसर पर श्रावस्ती स्थित गुलरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायो प्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल को देश का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि

0: भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि यह उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने सुरहताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का कल समापन हो गया। आखिरी दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी मंथन हुआ।
1: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए कि वो हमारी धरोहर, उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी 21 जून तक सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। एक पेड़ माँ के नाम, यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किए गए। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ जनपदों में तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी जनपदों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुक्त ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का

इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान

0: द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:32 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। ये हवा आपकी हंसी की खबर देती है, हमारे दिल को खुशी से भर देती है। खुदा सलामत रखे आपकी हंसी को, आपकी खुशी हमको जिंदगी दे देती है। आपकी खुशियों की इसी दुआ के साथ आप सभी को नमस्कार।

0: साथियों, एक दूसरे की खुशी हमारी सच्ची दोस्ती का उसूल है। दोस्त चाहे दूर हो या पास, हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे के साथ हर खुशी बांटते हैं। इसी तरह ये सफर चलता रहता है, बिना थके बिना रुके। और एक समय ऐसा आता है जब दोनों एक दूसरे के साये बन जाते हैं। हमारी और आपकी दोस्ती का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। हमारी आवाज आपकी जिंदगी का हिस्सा है और हमारे श्रोता आकाशवाणी का रेडियो और आपका साथ 90 वर्षों से बरकरार है। आकाशवाणी से आप न केवल श्रोता के रूप में जुड़ते हैं, बल्कि अनेक कलाकारों की प्रतिभा को मंच दिया है आकाशवाणी ने। शब्दों के माध्यम से चित्र खींचने की कला बहुत ही अनमोल है, और जो ऐसे चित्रकार हैं उन्होंने ना जाने कितने ही किरदारों को जिया है। ये कलाकार आकाशवाणी की देन है। शब्दों के माध्यम से रंगमंच की रचना, आवाज का कौशल और विभिन्न चरित्रों को साकार रूप प्रदान करने का कौशल जिन्हें मिला है वो है रेडियो अभिनेता और कलाकार। नाटक आकाशवाणी के कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान रखते हैं। आकाशवाणी पर अनेक नाटकों का प्रसारण होता है एवं अनेक कलाकारों ने इस माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त की है। आज हमारे साथ हैं रेडियो नाटक कलाकार श्री राजदीप शर्मा।
1: मुरादाबाद मंडल की एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर रायपुर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई, जो कि पहले बरेली मंडल के अंतर्गत आता था। आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से स्वर परीक्षा में जो कलाकार चयनित हुए उन्होंने अपनी आवाज के दम पर विभिन्न क्षेत्रों तथा नाटक की रंगमंच पर प्रस्तुति, रामलीला कार्यक्रम का संचालन आदि में अपना नाम खूब कमाया। हमारे मुरादाबाद में 1966 से रामलीला की पहली टीम दिल्ली में रामलीला मंचन करने गई थी। ये सिलसिला इस समय भी चल रहा है। जब मैं कम आयु का था तो मैंने रामलीला में अनेक भूमिका जैसे राम रावण आदि की निभाई। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मेरे माँ मार्गदर्शक स्वर्गीय बलबीर पाठक तथा डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने मुझसे कहा कि तुम आकाशवाणी में स्वर परीक्षित हो। ईश्वर की कृपा और अपने मार्गदर्शक गण के आशीर्वाद से मैं प्रथम प्रयास में ही आकाशवाणी की स्वर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, और फिर मैंने आकाशवाणी के कई नाटकों में भाग लिया जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाई। उसका प्रभाव यह हुआ कि मेरे उच्चारण, आरोह अवरोह, भाव्य व्यक्ति आदि में बहुत सुधार हुआ। उसके बाद मैंने मुरादाबाद शैली की रामलीला में पार्श्व वाचन का कार्य किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुरादाबाद शैली के कलाकार मंच पर अपना संवाद बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज दर्शकों तक पार्श्व वाचन के माध्यम से ही पहुंचती है। रामलीला में अनेक कलाकार भाग लेते हैं और उनमें बोलचाल में भी अंतर होता है। मुझे पहले पहल राम के पात्र की आवाज में संवाद बोलने को कहा गया और मैं उसमें खरा उतरा। उसके बाद मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया कि अब मैं अकेले ही राम रावण लक्ष्मण हनुमान आदि के कलाकारों की आवाज स्वयं ही निकालता हूं। और दर्शकों तथा श्रोताओं को ये भी नहीं पता चल पाता कि ये सारी आवाजें एक ही कलाकार बोल रहा है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इस कार्य में आकाशवाणी रामपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा। आकाशवाणी रामपुर की वजह से ही मैंने नाटक के क्षेत्र में खूब नाम कमाया। कई बार कार्यक्रमों के संचालन का सुअवसर भी प्राप्त हुआ जिसमें मेरे उच्चारण तथा श्रोताओं से अंतरंगता का प्रभाव रहा, जिसकी आयोजकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आकाशवाणी में अपने स्वर परीक्षा के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा एक सजीव चित्रण श्रोताओं को देते हैं, जिसे सुनकर श्रोतागण भाव विभोर हो जाते हैं। धन्यवाद।
0: ये थे रेडियो नाटक कलाकार राजदीप शर्मा।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। श्रोताओं, हर एक दिन खास होता है क्योंकि हर एक दिन अपने अंदर कोई ना कोई खास घटना, कोई ना कोई याद समेटे होता है जिसे दुनिया इतिहास के नाम से जानती है। आज 6 जून है और क्या है आज का इतिहास, आइए डालते हैं एक नजर। 6 जून 1774 को रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। 6 जून 1916 को अमेरिका के ईस्ट क्लीवलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 को आज के ही दिन फिनलैंड ने बोल्शेविक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 6 जून 1966 को अश्वेतों के मानवाधिकारों की पैरवी कर रहे जेम्स मेरिडिथ पर गोली चली। 1967 की 6 जून के दिन इसराइली सेना ने गाजा पर कब्जा किया। 6 जून 1981 को बिहार की बागमती नदी में ट्रेन गिरने की भयावह दुर्घटना हुई। मानसी से सहरसा जा रही ट्रेन के

9 में से 7 डिब्बे नदी में जा गिरे। इसे सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। 6 जून 1995 को पाकिस्तान के बाल अपराधियों को कोड़े मारने और फांसी की सजा देने पर रोक लगाई गई। 6 जून 1997 को भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने बिम्स्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया। 2004 में आज के ही दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का निधन हुआ और 2005 में ईरान गैस पाइपलाइन पर भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान में सहमति बनी। श्रोताओं, ये था आज का इतिहास और अब समय है एक अल्प विराम का। कार्यक्रम अभी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
5: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
4: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

श्रोताओं, भोर में पनघट के नजारे अब कहीं खोसे गए हैं। आज स्थिति ये है कि पनघट नदी तालाब सब कहीं गुम हो गए हैं। शहरों को तो छोड़िए, गांव में भी नदी तालाब और पोखरों का अस्तित्व खतरे में है। हवा, पानी, भूमि, वन, ये सब हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा है। कल हम सब ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, संकल्प लिया पर्यावरण को बचाने का। पर आज क्या? क्या हमें अपना वो संकल्प याद है, या फिर हम फिर उसी ठर्रे पर चल निकले हैं? पर्यावरण एक दिन बात करने का मुद्दा नहीं है, बल्कि हर दिन प्रयास ही पर्यावरण संरक्षण का एकमात्र उपाय है। अभी गर्मी का मौसम है और हम जल संकट का सामना कर रहे हैं। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम आएगा तो हम जल भराव की समस्या झेलेंगे। तो क्या मौसम मुख्य समस्या है? जी नहीं, समस्या मौसम नहीं है, बल्कि हमारा आचार व्यवहार और सुनियोजित तैयारियों का अभाव है। वर्षा जल संचय को अपनाकर न केवल बाढ़ की समस्या से बचा जा सकता है, बल्कि बाद में होने वाले जल अभाव की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। अपने संसाधनों की सीमित और उनका समझदारी से उपयोग करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत हरी भरी दुनिया दे सकते हैं, जिसमें चैन हो, सुकून हो और हरियाली हो, जहां हर एक रुत जीवन में उत्साह भरने वाली हो।

आप सुखी हों, स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित

0: उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
8: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
9: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
10: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का

0: अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra, the headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history becomes first Indian to win Norway chess title.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय महीशत आलमी इक्तसादी बुहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिए फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम

0: शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर आखिरी मरहले में हराकर यह जीत हासिल की है। नॉर्वे शतरंज के मुकाबले में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा लेने वाले प्रज्ञानंद ने इस मुकाबले का बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम किया है। इन मुकाबलों के दौरान उन्होंने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दो मरतबा हराया है। गोवा के शहर मारगांव में जारी सैफ फुटबॉल खवातीन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है। भारत अब तक 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने गुजरात के शहर सूरत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक अवामी रैली से खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में अखबार की शह सुर्खी है, भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इकतसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की जबरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में 18 नमो पार्कों की शुरुआत, इसी साल लगेंगे 15 लाख पौधे। अखबार इंकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान को नुमाया किया है कि इंसानियत और इंसाफ के सामने AI सबसे बड़ा चैलेंज, मसनूई जहानत की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल पर जोर। अखबारात ने सनअती हल्के के इस रद्दअमल को अहमियत दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एरानात सरमायाकारी बढ़ाने वाले। इसके अलावा अखबारात ने मीनाक्षी मदन राय की पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने की खबर को भी सफे अव्वल पर जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इकतसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रगिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमा मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म का नाम है धड़क 2।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत भूमि त्रिवेदी और राहुल जैन की आवाजों में, फिल्म का नाम है एक्टिंग का भूत।

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना विशाल मिश्रा और सचिन की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं ये गीत जावेद अली की आवाज में। फिल्म का नाम है दबंग 3।

दबंग थ्री। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में। अब सुनिए ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है गदर टू।

प्यार है तो है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हरिहरन और प्रतिभा सिंह बघेल की आवाजों में। इसी के साथ 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में जिले की हलचल लखनऊ केंद्र से रिले होगी।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फिरोजाबाद और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
1: फिरोजाबाद में जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर बखबू सारंग के मार्गदर्शन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों ने तंबाकू के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव सुश्री योगेश शिवा ने जोर देकर कहा है कि नशे की लत न केवल इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उसके परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। फिरोजाबाद के विकास भवन सभागार में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के जनपद स्तरीय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससीजा, मेयर कामनी राठौर और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव के साथ प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैस एवं अपर जिलाधिकारी मोहन लाल गुप्ता ने मेधावियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। समारोह में जिले के टॉप 10 में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया। फिरोजाबाद में शासन के निर्देशों पर 1 जून से 30 जून 2026 तक भूमि विवादों के पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए एक विभिन्न अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार

0: पिछले एक वर्ष में आए एक भूमि विवाद को दोबारा खोला गया, जिसके निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। इनमें जसराना, फिरोजाबाद, शुकावास, सिरसागंज और टूंडला के मामले शामिल हैं, जिन्हें पुनः स्थलीय सत्यापन के लिए उप जिलाधिकारियों को पोर्टल पर भेज दिया गया है। अभियान के तहत केवल कागजी कार्रवाई न करके राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर साक्ष्यों के आधार पर अवैध कब्जे हटाने, पट्टे राजस्व अभिलेखों में सुधार, रास्ता, पैमाइश व वरासत से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान करेंगी। साथ ही प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर न्याय पंचायत वार ग्राम पंचायतों में भी आयोजित की जाएंगी। फिरोजाबाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले के स्वास्थ्य योजनाओं और चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, स्वास्थ्य केंद्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बेहतर काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने की बात कही। मौसम विभाग की हीट वेव अलर्ट को देखते हुए उन्होंने सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कूलर, ORS घोल और ठंडे पानी से युक्त कूलिंग सेंटर सक्रिय करने तथा सरकारी डॉक्टर द्वारा बाहर की दवाएं लिखने पर पूरी तरह से रोक लगाकर फार्मेसी काउंटर पर दवाओं की सूची प्रदर्शित करने के कलेक्टर निर्देश दिए हैं। फिरोजाबाद में पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने दो महत्वपूर्ण पर्यटक गए स्थलों का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी सबसे पहले सिरसागंज में 24.24 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आर संस्कृत संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने मल्टीपर्पज हॉल में सुव्यवस्थित स्टेज बनाने और भवन की मजबूती व तकनीकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था के इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के निर्देश दिए।
1: फिरोजाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
2: जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम जौनपुर में सामूहिक आयोजन कर सुना गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जनपद के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक व अस्मरणीय क्षण बन गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से सीधे जौनपुर से लाइव जुड़े। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ सीधे जुड़ने और जौनपुर का मान बढ़ाने के लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। जनपद के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत प्रेरणादायक व गौरवपूर्ण है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास, सांस्कृतिक और जन भागीदारी एक नई ऊर्जा मिलेगी। जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पाल के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं को त्वरित और प्रभावी निस्तारण तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने का उद्देश्य संचालित गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड महाराजगंज के ग्राम पंचायत बिरवा में मुख्य विकास अधिकारी धू खड़िया की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जन चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं और शिकायतों का गंभीरता सुना गया तथा उनके गुणवत्तापूर्ण और संबंधपूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा का अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तथा योजनाओं को लाभ पहुंचाना तथा ग्रामीणों की समस्या को स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। शासन स्तर पर विभिन्न कोर्ट से लंबित वादों के लिए निस्तारण के आधार पर मई की रैंकिंग जारी की गई। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अवस्थ ने कहा कि शासन स्तर पर जारी रैंकिंग में जनपद को प्रदेश में पहला स्थान मिला। यहां 5 कोर्ट मिलकर कुल 250 वादों को कम से कम निस्तारण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष सभी 5 कोर्ट से कुल 466 वादों का निस्तारण किया गया, जबकि मैनपुरी में 407 वाद हल किए गए, जबकि तीसरा स्थान पर आजमगढ़ जनपद रहा जहां 418, बलिया में 147, गाजीपुर में 160, मऊ जनपद को अलग अलग कोर्ट में कुल 187 वाद निस्तारित किए गए। जौनपुर जिले के रामपुर क्षेत्र के सदिरंगन गांव में 33/11 KVA क्षमता के विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इससे 7.92 करोड़ खर्च किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति शासन की ओर से मिल गई। नए उपकेंद्र बनने से 50 गांव और 21,000 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्विरोध निर्बाध बिजली की मिलेगी। वर्तमान में सदिरंगन के आसपास के क्षेत्रों के रामपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति की जाती है। इससे उपकेंद्र पर लोड अधिक होने से बिजली ट्रिपिंग फॉल्ट और लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता परेशान थे। इसके मद्देनजर अपना दल इसके विधायक मड़ियाओं के विधायक डॉक्टर आरके पटेल ने नए उपकेंद्र के निर्माण के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। रामपुर के सदरनगंज में 33/11 KVA का उपकेंद्र बनने के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया। इसके निर्माण में 7.92 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना कि इसके बिजली आपूर्ति स्थिरता आएगी और क्षेत्रीय विकास में गति मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब सभी लाभार्थी किसानों के लिए वर्ष में एक बार EKYC करना अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी किसान निर्धारित अवधि में EKYC नहीं करता तो किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। ऐसे किसान जिन्होंने 2025 से मार्च 2026 के बीच PM किसान योजना में EKYC नहीं कराई है, वह 30 जून के पूर्व अपनी EKYC

0: भूकंपन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क 5.5 किलोमीटर चौड़ी होगी। सड़क किनारे पूर्ण होने के बाद निगोह, जरौना सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को आगमन में काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ क्षेत्र के व्यापार और विकास में गति मिलने की उम्मीद है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर 9:25 हुए हैं। गौरव भारत देश के इस क्रम में आज व्यक्तित्व है मीर मदन का।
1: कोटि कोटि कंठों में गूंजित एक विजय विश्वास लिए, मुक्त पवन में उड़ उठने का एक अमर अभिलाष लिए, बोलो जय सब उन वीरों की जो प्राणों को उमगाते हैं, अपने जीवन की ज्योति जला जीवन ज्योतित कर जाते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत का इतिहास मीर मदन की शहादत से आरंभ होता है। 18वीं शताब्दी की अंधेरी रातों में षड्यंत्र के बीज बोए गए। नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल के राज सिंहासन से हटाकर किसी अन्य को नवाब बना दिया जाए, इस षड्यंत्र में नवाब का सेनापति मीर जाफर, जगत राम सेठ, राम दुर्लभ, अमीचंद और राजा कृष्णचंद्र शामिल हुए। 23 जून 1757 भारतीय इतिहास का काला दिवस था जब लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल पर चढ़ाई की। सिराजुद्दौला ने अपने विश्वासपात्र मीर मदन, जो 5000 घुड़सवार और 7000 पैदल सैनिक लिए थे, से पूछा, हमारी विजय के विषय में क्या राय है? मीर मदन ने जीत का विश्वास दिलाया नवाब साहब को। मीर मदन को नवाब द्वारा महत्व दिया जाना, गद्दार मीर जाफर का क्लाइव से मिल जाना, भारत की दास्ता का प्रथम दिवस था। नवाब के फ्रांसीसी मित्र सेंट फ्रे ने सबसे पहले तोप दागी, गोले छूटे, तीव्र गोलाबारी से क्लाइव की सेना पीछे हट गई। तभी एक गोला मीर मदन के लगा और वो शहीद हो गए। यदि वीर मीर मदन की मृत्यु न हुई होती तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरव भारत देश के, ये आकाशवाणी रामपुर है।

0: मन में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वागथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवास। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में उर्दू प्रोग्राम लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: 15 फरवरी 1925 को जन्मे बशीर बद्र साहब का असली नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की और सालों तक कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी शायरी।
1: एक दौर था जब गजल में बहुत भारी भरकम अरबी फारसी के लफ्ज इस्तेमाल होते थे। आम इंसान को उसे समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। ऐसे दौर में बशीर बद्र साहब ने आम फहम यानी वो जुबान चुनी जो हम और आप रोज बोलते हैं।

जी और उनका घर उनकी सालों की मेहनत से जमा की गई किताबें, उनकी अनमोल लिखी हुई गजलें, सब कुछ उस आग में जलकर राख हो गई। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो मेरठ छोड़कर भोपाल आ गए, लेकिन उस आग की तपिश उनके अशार में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।

0: लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
1: एक और गजल में उन्होंने कुछ यूं इरशाद किया, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
0: कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा, और मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा।
1: सब उसी के हैं, हवा खुशबू जमीन और आसमां, मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा।
2: मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार

क्या जहां मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं।

मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद चट गई। चंशेर और दूसरी गजल के जैसे मैंने अर्ज किया था, अल्लाह फरमाए कहीं चांद

वक्त का पहिया घूमता रहा और ढलती उम्र के साथ साथ बशीर साहब को अल्जाइमर बीमारी ने घेर लिया। जिस शायर के अशार को पूरी दुनिया याद रखती है, वो शायर धीरे धीरे अपने ही शेर भूलने लगा।

0: और 28 मई 2026 को ईद उल अजहा के दिन आप इस दुनियाए फानी को छोड़कर अपने रब से जा मिले। उर्दू अदब से बद्र का मंजर चला गया, अल्फाज मोहब्बत का कलंदर चला गया, अशआर जिसके आज भी जिंदा है दोस्तों, दुनिया को छोड़कर वो सुखनवर चला गया।
1: तो दोस्तों, आकाशवाणी लखनऊ इस बुलंद शायर को खिराज अकीदत पेश करता है। हम फिर अगले प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। आसिफ इकबाल और शमसुल आरफिन को दें इजाजत।
0: आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
3: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 9:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत में आज आइए सुनते हैं बेगम अख्तर की आवाज में ठुमरी।

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम की सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गीत सुनने के लिए हमें अनुरोध भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। कोहिनूर तेराहा के पास पंडित नगला बाईपास से अख्तर हुसैन, बारू निशा, असलम हुसैन, महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम प्रोनित का प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, पटियाली रोड गंजुनवारा से पप्पू, अफसाना बेगम, महजबी, एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम और मिर्जा नसरीन बेगम, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा, बॉबी, शमा, मिक्की, बुशरा खान, आसिम खान, जिला अस्पताल के पास से गज्जन खान, शमा परवीन, शमशद अली आजम, गुलफशाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, मुकाम हिपरसोगा तालुका जिला लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैज नबी शेख, शाकिर इस्लाम बी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया शकील पठान, बिस्मिला बी शेख, गदर शेख, नीलोफर डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये, मिलक भूजपुरा शाह

जिला मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज भी और आसिया भी। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। शिवाजी नगर वडाली से देशमुख से राजेश खोबर केड़े, शिवसागर, इंदिराबाई, सुनैना खोबर केड़े। जलगांव जामोद से राम धाड़े, दीपाली धाड़े और स्वराज धाड़े। थिलोरी दरियापुर से सुनैना पवन बोंडे और तनुज पवन बोंडे। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोट के, नंदा बोट के, हनुमान बोट के उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान, मरियम और बुशरा। संभल रोड बस्तौर जिला मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय आंचल, आकांक्षा, आकाश, विक्की सैनी, दक्ष, काव्य, कृष्णा सैनी और इनकी माता हीरा देवी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर। आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर और टुकटुक गवाणकर। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत।

प्रेम पर्वत। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। महबूबा फिल्म का ये गीत सुनने का अनुरोध हमें लिख भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार रही शादाब रही मेहताब निशा मुश्ताक अंसारी और शहजाद अंसारी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी त्रिगी से भगवत वर्मा। मोहल्ला अलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया सादरानी और हिना कौसर। करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया शोएब खान और नवेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेगम आयशा खान हदिया खान आसमा सालिया शोएब खान पोत्रा मुश्तबा खान रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ग्राम घाटमपुर से रामभजन सैनी हरप्यारी सैनी राजीव संजय मुकेश आशा अंशिका पूजा और रामप्रकाश सैनी। मलोट पंजाब से सतीश मिगलानी सीमा विवान गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीम अली और जुनैद अब्बासी। गांव कैरो पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शम्मी रजनी आकाशदीप अनहद और गुरशब्द। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार नर्मदा सुनील साहिल और सुजाता पोहरकार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय

उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, चैतिक विरक और मीका विरक, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से श्रोता है, विनोदपुरी बीपी रंजू, अशोकपुरी सुशीलपुरी, नीलमपुरी बीकेपुरी, कैलाश रामापुरी और आरएसपुरी, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू एरोही और स्वाति मौर्य, इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वलीउल्लाह नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा, सोनम और अदीबा, पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वाड़ोदे और बीटी वाड़ोदे, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, महाराजा रेड्डी श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम है महबूबा।

खलसा अमरोहा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सलीम फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान, अनूप पूर्व मध्य प्रदेश से जयवंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पा ताई नारे, खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, राजदरा रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, फिरासत अर्पित अभेरिया और आरुष रस्तोगी, नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन, इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज, मुसरत जहां नाज, बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनशा बेगम अक्रम सैफी और आबाद खान, परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी, गंज डुनवारा से शमसुल कमर और जाहिद अली, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश गौड़, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, मोहल्ला झंडा बड़े पीर साहब निकट बालाजी मंदिर से लियाकत भाई, गौसिया सिद्रा, उबैद खान, प्रेम प्रकाश, अनुराज और जमील भाई, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर, सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सभ्यशेरे। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म का नाम है आराधना।

अभी आप सुन रहे थे गीत आपके अनुरोध पर, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। दस बजकर 30 मिनट हुए हैं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। कार्यक्रम है गोल्डन हिट्स।

आन मिलो सजना। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आइए अब सुनते हैं ये गीत आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है धन दौलत।

गीत इस फिल्म में अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को। आइए इन्हीं आवाजों में सुनते हैं एक और गीत, फिल्म का नाम है प्यार किए जा।

महबूब की मेहंदी। इस फिल्म में अभी आपने सुना किशोर कुमार को, और अब कार्यक्रम के अंत में ये गीत मुकेश और शारदा की आवाजों में। फिल्म का नाम है अराउंड द वर्ल्ड।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। धरोहर के अंतर्गत आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज सुनिए समाचार वाचिका श्रीमती चंद्रिका जोशी के साथ ये भेंट वार्ता। भेंट करता है मनोज कुमार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार। विशेष कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं मनोज कुमार। श्रोताओं, आकाशवाणी अपनी 90 साल की यात्रा का जश्न मना रहा है और इस जश्न में आप सब भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आपके साथ और विश्वास ने इस 90 साल की गौरवशाली यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। आपका साथ न होता, आपका हम पर विश्वास न होता तो मुश्किल होता ये लंबा सफर। आपके प्यार और विश्वास ने ही हमें मजबूत बनाया है। उत्साह से भर जाते हैं हम और फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपसे रूबरू होते हैं। इस अंक में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आपकी पसंदीदा आवाज। समाचारों की दुनिया में आपने बहुत नाम कमाया है और आपकी आवाज को सुनकर श्रोता कुछ देर तक ठिटक जाते थे। रेडियो सुनने वाला हर कोई आपकी आवाज को बार बार सुनना चाहता है। ये आकाशवाणी है, अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। ऐसा ही कुछ वाचन आपने भी सुना होगा।

0: तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाचार वाचिका चंद्रिका जोशी जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मनोज जी और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इस सफर के हमराही आप भी रही हैं मैम, क्या कहेंगे श्रोताओं से आप?
1: जी, मैं सबसे पहले तो श्रोताओं को बधाई देना चाहूंगी। उनके प्यार ने हमें ये महसूस ही नहीं होने दिया कि आकाशवाणी ने इतना लंबा सफर तय किया है, तो वो सबसे बड़े इसके भागीदार तो हमारे सुनने वाले हैं।
0: बिल्कुल
1: दूसरा नंबर हमारे जो प्रस्तोता हैं, जैसे आप लोग हैं, उद्घोषक हैं, और इंजीनियरिंग जो विशेषज्ञ, तकनीकी विभाग के जो लोग हैं, ये सब कुछ मिलके ऐसी एक टीम बनती है, तभी प्रसारण श्रोताओं को पसंद भी आता है। क्योंकि देखिए, जो सुन रहा होता है वो तभी सुनता है जब उसका मन उसमें लगता है।
0: बिल्कुल
1: ये सारी जो टीम है, चाहे वो समाचार विभाग की टीम हो, चाहे वो तकनीकी विभाग की टीम हो, चाहे उसमें रेडियो पर प्रत्यक्ष बोलने वाले आपके श्रोताओं के समक्ष आते हैं, चाहे पीछे से जो पर्दे के पीछे जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनका हाथ हो, तो ये सब मिलके एक ऐसी टीम बनती है जो इस सफर को इतने लंबे अरसे तक जारी रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक हमारा प्रसारण जाता है, वो हमारे देश के 98% आबादी तक तो हम पहुंचते ही हैं, उससे ज्यादा में भी पहुंचते होंगे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 98 तो है ही। और बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारा प्रसारण होता है, तो आकाशवाणी के लिए बड़ा गौरवशाली समय है ये। पूरा एक ना लंबा जो हमने सफर तय किया है, बहुत सारे इसमें पड़ाव आए, बहुत सारी इसमें रुकावटें आई, बहुत सारी मंजिलें तय की। तो हम जब बात करते हैं 90 वर्ष की, तो वो आजादी से पहले का समय भी है। इसमें हमारे बहुत कम प्रसारण केंद्र थे, शायद मेरे ख्याल से, जहां तक जानकारी है मेरी, 6 प्रसारण केंद्र ही होते थे उस वक्त।
0: जी
1: तो फिर वो बढ़ते बढ़ते क्या लोगों का प्यार मिलता गया, थोड़ा आत्मनिर्भर भी होते गए देश की आजादी के बाद, और नए नए प्रसारण केंद्र खुले। फिर मीडियम वेव, शॉर्ट वेव से हम लोग FM पर आए, FM के फिर अलग अलग स्टेशन खुले, और आज देखिए हम इतने एक समृद्ध रूप में रेडियो खड़ा है, समृद्ध बन चुकी है आकाशवाणी। हम जिस भाषा में चाहें, जिस बोली में चाहें, हमारे जो ऐप हैं वो दिन भर हमें इस चीज की इजाजत देते हैं कि वो हमारे साथ साथ ही रहते हैं, और हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तरंगों में व्यवधान आए, हम प्रसारण को सुन पाते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: ये एक बहुत बड़ा पड़ाव हमने हासिल किया है। इतने व्यापक स्तर पर बहुत कम रेडियो स्टेशन ऐसे हैं जो कि अपना प्रसारण करते हैं, और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि विश्व के इतने बड़े रेडियो स्टेशन के साथ हम जुड़े हैं। और जहां तक काम करने की बात है, काम करने के लिए भी हम और आप सब बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हमें आकाशवाणी के साथ काम करने का मौका मिला है। आकाशवाणी से वो जुड़ाव मिला है जिसमें हम बहुत सारी अपनी आबादी के साथ एक एक बार में मुखातिब हो सकते हैं, वो हमको सुनते हैं, और ये संवाद एक तरफा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मनोज जी, ये संवाद एक तरफा होता तो इसमें मजा नहीं रहता, लेकिन जो
0: बिल्कुल
1: हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो पत्र आते हैं, अब तो व्हाट्सएप और ईमेल पर भी तुरंत हमें प्रतिक्रियाएं मिल जाती हैं, तो
0: बिल्कुल
1: मैं इन सबको बहुत बड़ा एक पड़ाव मानती हूँ हमारे आकाशवाणी के सफर में।
0: बिल्कुल मैम, यदि चंद्रिका जोशी की बात करें तो वो कौन सा साल रहा जब आपने आकाशवाणी में कदम रखा, और कैसे मन में आया कि एक समाचार वाचिका बनना है?
1: देखिए, कदम तो मैंने युवाणी के माध्यम से रखा। मैं कॉलेज से प्रोग्राम करने के लिए आई थी, तो वो साल रहा होगा 1988 था शायद, जब मैं कॉलेज से आई और मैंने पहला अपना प्रोग्राम किया। उसके बाद जब मैं वहां प्रोग्राम करने आई ना, तो एक दो न्यूज रीडर्स को, उन लोगों को देखा जिनकी आवाजें हम रोज सुनते थे, और उस दौर में अपने सामने समाचार वाचक को या उद्घोषक को देखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि सी लगती थी।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: मन में तो कहीं चल रहा था, मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि इतने अच्छे श्रोता थे कि घर में डांट पड़ती थी, और डांट इसलिए पड़ती थी, भाई गाने तो चलो ठीक है, सारा दिन गाने सुन लिए, लेकिन कुछ समझदारी की भी तो बात करो, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, तो कुछ समाचार सुन लो, कुछ समाचारों की चर्चाएं सुन लो। तो वो भी सुनते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनते थे, पूरे सुनते थे समाचार भी, सामयिक वार्ता, स्पॉटलाइट, सब चीजें, चर्चाएं, और गीत संगीत तो खैर दिल में रचा बसा ही हुआ था।
0: बिल्कुल
1: तो जब मैं आकाशवाणी में प्रोग्राम देने के लिए कॉलेज से मैंने 2-3 प्रोग्राम किए यहाँ आकर के आकाशवाणी में, तो उस वक्त हमारी एक प्रोड्यूसर हुआ करती थी युवाणी, देखिए पहचानने की क्षमता भी होती है। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं अपना आखिरी प्रोग्राम करके जा रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया कॉरिडोर में आकर, तो मैं यहाँ उनका नाम लेना चाहूंगी, शोभा मित्तल, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी प्रोड्यूसर रही वो। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा, मुझे लगता है तुम्हें अभी कुछ करने का और मन है। मैंने कहा जी जी मेरे को। उस जमाने में 50 रुपए मिलते थे। हाँ,
0: अच्छा
1: उन्होंने कहा कि पंचायती राज का उस वक्त वो चल रहा था दौर, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि 6-7 टॉक्स लिख के लेके आओ, मैं चेक करूंगी और फिर पढ़ना भी तुम्ही को होगा।
0: अच्छा
1: रिसर्च किया, 1-2 महीने का टाइम लिया, क्योंकि तब कुछ ये गूगल व्हाट्सएप ये सारी चीजें कुछ नहीं होती थी।
0: बिल्कुल
1: तो लाइब्रेरियों में बैठ के बुक्स देखी, सब पुराना मटेरियल देखा, कहाँ कैसे हुआ, गांधी जी ने कैसी इस व्यवस्था को उत्तम ठहराया कि ये उत्तम व्यवस्था है। और फिर उसके बाद सब करके, रिसर्च करके, शोध करके लेके गए, तो पता लगा कि उन सबको बहुत, हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब थे वो बहुत खुश हुए, मैडम बहुत खुश हुई, और उन्होंने कहा आप तुम बोलो। तो यहाँ से पहला पड़ाव एक आत्मविश्वास का जगह कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ।
0: बिल्कुल
1: और उसके बाद अनाउंसर की पोस्ट निकली, किस्मत अच्छी थी, उसमें सिलेक्शन हो गया। उसके 2 साल बाद ही न्यूज रीडर की पोस्ट निकली, उसमें सिलेक्शन हो गया। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, थोड़ा सा मेहनत हमारी थी
0: बिल्कुल
1: और ऊपर वाले ने बहुत कृपा बरसाई।
0: वो केंद्र आकाशवाणी दिल्ली ही रहा।
1: जी, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि वो जो पहला सिलेक्शन मेरा उद्घोषक के रूप में हुआ, वो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा होती थी आकाशवाणी की, रात भर चलती थी, तो उसके लिए चयन हुआ था। फिर दिल्ली स्टेशन आ गई थी, फिर दिल्ली में ही समाचार भाषिका बनी।
0: तो वो कौन सा साल था मैम, जब आप पहला
1: हाँ
0: बुलेटिन पढ़ा, और वो कैसा पल था जब आप माइक्रोफोन के सामने थी और पहला बुलेटिन आपको पढ़ना था?
1: 1993 में मैंने पहला बुलेटिन पढ़ा, 1993 में ही समाचार वाचक के रूप में मैंने ज्वाइन किया। लेकिन माइक से थोड़ा तब तक बहुत दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि मैंने 89 में ज्वाइन किया था एज अनाउंसर। 89 से 93 तक स्टूडियो से भी दोस्ती हो गई थी, माइक से भी दोस्ती हो गई थी, तो उतनी घबराहट नहीं हुई। लेकिन हाँ, घबराहट तो होती है जब श्रोताओं से उन्मुख होते हैं, तो उस वक्त ये लगता है कि हम कुछ भी ऐसी बात ना करें कि मतलब उनको कुछ अच्छा ना लगे, उनको अच्छा ही लगे।
0: बिल्कुल यही प्रयास रहता है हर प्रस्तुतकर्ता का कि श्रोताओं को लुभाएं, कार्यक्रम मन को
1: हाँ
0: भाएं और तारीफें भी बटोरी जाएं।
1: बिल्कुल, और वो बार बार आपको सुनना पसंद करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, आकाशवाणी ने हमेशा से श्रोताओं को तथ्यपरक सूचनाएं दी हैं मैम। बात यदि समाचारों
1: हाँ
0: की करें, क्योंकि आप समाचारों से लंबे समय तक जुड़ी रही हैं, तो श्रोताओं
1: जी
0: ने हमेशा रेडियो पर विश्वास किया, यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में दी जाने वाली जो जानकारियां हैं उनको सच माना है। तो कितने विश्वसनीय रहते थे आकाशवाणी के समाचार, और आज में क्या अंतर है?
1: देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त भी विश्वसनीयता चरम पर थी। मतलब हम जो भी खबर देते हैं आज की डेट तक भी, देखिए कितनी बड़ी बात है, मैं 33-34 साल मैंने समाचार में काम किया है, और हमारी विश्वसनीयता सबसे पहले है। ये मैं आज भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम विश्वसनीय हैं। हम जो भी सूचना देंगे, उसमें कुछ देरी हो सकती है, लेकिन हम होड़ में नहीं रहते हैं, हम तथ्यपरक जानकारी देते हैं। और जो हमारे युवा हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो जानकारियां और हासिल करना चाहते हैं, समाचार बुलेटिन के अलावा जो कार्यक्रम होते हैं
0: जी मैम
1: वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये मेरा खुद का भी मानना है। मैंने भी भाई पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो रेडियो सुन सुन के ही पढ़ाई की ना।
0: बिल्कुल
1: गीत संगीत से मनोरंजन भी होता रहता है, आप फ्रेश भी होते रहते हैं
0: बिल्कुल
1: और जानकारी भी आपको मिलती रहती है। तो विश्वसनीयता तो सर्वोपरि है।
0: बिल्कुल, और उसी विश्वसनीयता को आज भी कायम किया है आकाशवाणी ने मैम, की वजह है आज लाखों श्रोता रेडियो को सुनते हैं, आकाशवाणी में विश्वास करते हैं।
1: आज भी मैंने ये देखा है कि कहीं भी कोई भी खबर, क्योंकि आज तो सूचना के बहुत सारे माध्यम हैं,
0: बिल्कुल
1: सूचनाएं तुरंत एकदम इधर से उधर आती हैं, लेकिन फिर भी लोग रेडियो को इसलिए सुनना पसंद करते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि सही जानकारी तो इसी से मिलेगी। हम जो कहते हैं वो उसको तोल के कहते हैं, नाप तोल के कहते हैं, हर वर्ग का ख्याल रखा जाता है। क्योंकि देखिए, गाड़ी में बैठा व्यक्ति भी हमें सुनता है, खेतों में काम कर रहे हैं हमारे श्रमिक भाई भी उसको सुनते हैं, तो हमारे लिए तो सब एक हैं।
0: बिल्कुल
1: तो हम उसी भाव से, हम सम भाव से सबके लिए प्रस्तुत होते हैं, ताकि इसीलिए हमारा ये परिवार बहुत बड़ा, एक पूरे देश का एक परिवार बन जाता है आकाशवाणी के श्रोताओं का। कहीं एक के नहीं रहते हैं हम, अगर जम्मू कश्मीर के हैं तो हम कन्याकुमारी के भी हैं। तो हम इस भाव से चलते हैं कि हमारे लिए सब हमारे अपने हैं। वही है कि ऑथेंटिसिटी, हम जो कहते हैं विश्वसनीय बात कहते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ जानकारी देना भर काम नहीं होता, हम सूचना देते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, हम सरकार की योजनाओं के बारे में आम लोगों को जागरूक करते हैं जिनको नहीं मालूम है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं मालूम होती। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक बताएं, प्रशासन की जो बातें हैं उनको लोगों तक बताएं, यानी एक तरह से हम सेतु का काम करते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, हमारा लक्ष्य जानकारी, हमारा लक्ष्य ज्ञान बढ़ाना, प्रसार करना। और देखिए शिक्षा के भी कितनी बातें हमारे यहाँ जो अलग अलग क्लासेस हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए जो घर में महिलाएं हैं वो घरेलू उद्योग या छोटी छोटी चीजों से कैसे जुड़ सकती हैं आपस में। हम सैनिकों के लिए विशेष कार्यक्रम करते हैं जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, ताकि हम दिन रात चैन से अपने घरों के भीतर बैठे रहें। बहुत हम बड़े सम्मान के साथ सामने सिर झुकाते हुए उनको नमन करते हुए हम उनके लिए भी कार्यक्रम करते हैं। तो बताइए, जहाँ हमारी इतनी व्यापकता है तो हम किसी से पीछे कैसे हो सकते, सबको साथ लेके चलते हैं। ये देश हमारा है तो हमारे सारे श्रोता भी हमारे अपने, सारे हमने इवेंट्स देखे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि हर पल को जिया है और हर घटना के साथ स्मृतियां बंधी हुई हैं, चाहे वो हमारा करगिल का युद्ध हो, उसके बाद हमारी विजय हो। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि हमने हर पल को जिया है और समर्पण के साथ काम किया है, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन, जो हमारे ये दो बिंदु हैं, इनको जितने वर्ष आकाशवाणी में रहे हमने यही सीखा।
0: आपसे वो लाइन में जरूर दोहराने के लिए आग्रह करूंगा, जब आप समाचार वाचन करना शुरू करती थी तो कौन सी वो दो लाइनें थी जिनसे श्रोता एकदम झूम जाते थे सुनकर?
1: वो दो लाइनें तो यही थी कि ये आकाशवाणी है, अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए।
0: मैम, आपने अनेक बुलेटिन किए हैं, अनेक परिचर्चाओं में प्रतिभाग किया है, चाहे वो संसद सत्र की रही हो या फिर बजट सत्र की या फिर स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के आंखों देखा हाल की रही हो, तो उस समय की कुछ खास यादें जो श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हो आप?
1: देखिए, जब हम राष्ट्रपति भवन जाते थे कमेंट्री करने के लिए या गणतंत्र दिवस परेड की आंखों देखा हाल सुनाते हैं, तो उस वक्त तो आपको मैं क्या बताऊं, ऐसा गर्व होता है, अपने आप पर नहीं अपने देश पर गर्व होता है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे यहाँ की जो मिली जुली संस्कृति है ना, इस पर गर्व होता है कि हम वाकई में भांति भांति के फूल हैं, अलग अलग रंगों के हैं, लेकिन एक ही गुलदस्ते में हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो इतना गर्व के क्षण होते हैं। चाहे आप संसद भवन में जाएं, चाहे आप कहीं पर राजनेताओं के साथ बैठें, और मुझे लगता है शायद ये नौकरी, ये मतलब मैंने तो इसको खैर नौकरी माना ही नहीं, मैंने तो इसको अपना एक पैशन माना, एक जुनून माना, और इतने बड़े बड़े लोगों से मिलवाया इस नौकरी ने, इस आकाशवाणी ने, कि मेरे पास अनुभवों का इतना जबरदस्त खजाना है, मैं बता रही हूँ, और वो सब समर्पित है आकाशवाणी।
0: बिल्कुल,
1: कहाँ कोई मिल पाता है।
0: बिल्कुल मैम, और यही खासियत है रेडियो की। मैम, रेडियो का रिश्ता अदृश्य होता है, जो आवाज के जरिए श्रोताओं तक पहुंचता है। कई बार बुलेटिन पढ़ते समय ऐसे समाचार भी पढ़े होंगे आपने जिनको पढ़कर गला रुंध गया होगा।
1: हाँ, बहुत मुश्किल होता है उस वक्त, क्योंकि देखिए हम को चाहे जितनी मर्जी हम ट्रेनिंग कर लें तटस्थ रहने की और बिल्कुल अनबायस जिसको कहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ दुखद ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो सुखद होती है उसमें तो आप झूम उठते हैं कि हमारा जो ग्रह वहां पर पहुंच गया अंतरिक्ष में, आज हमने ये हासिल कर लिया, आज हमारी ये जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण हो गया, बहुत झूमने वाले क्षण होते हैं। लेकिन जब कहीं पर अचानक भूकंप आ जाता है या कोई ऐसा हत्याकांड आ जाता है या कोई ऐसी दुर्घटना आ जाती है, तो उस वक्त जो एक मानव मन होता है ना, वो हार्ट बीट को कंट्रोल करके उस बुलेटिन को निभा जाना, उसको पढ़ जाना, वो बहुत मुश्किल होता है। और शायद वर्षों की ये एक अनुभव की देन होती है कि हम सुखद और दुखद समाचारों को तटस्थ भाव से पढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है।
0: बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे समाचार बुलेटिन पढ़ते समय मैम आपको दिक्कतें भी आई होंगी एक समाचार वाचिका के रूप में, तो किस तरीके की तैयारी करके जाती थी?
1: हमारे साथ ऐसा होता है कि जो समाचार वाचक होता है वो सिर्फ वाचन नहीं करता, उसके उसको ट्रांसलेशन भी करनी होती है, एडिटिंग भी करनी होती है, समाचार एकत्र भी करने होते हैं। लेकिन हाँ, उस समय उस पूरी एक टीम होती है, तो कभी आपकी बहुत मनपसंद टीम होती है और कभी ऐसा होता है बहुत दिन हैवी है, जैसे स्वतंत्रता दिवस से बहुत सारी खबरें आ रही हैं इधर से उधर, तो उन सबको संपादित करना है, तो पूरी टीम का ये काम होता है कि उनको संपादित करें, और फिर उनका प्रेजेंटेशन जो है वो तो पूरा न्यूज रीडर पर निर्भर है।
0: बिल्कुल
1: मतलब एक वो व्यक्ति ऐसा होता है जो समाचार एकांश में करीब 30 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो उन सबकी मेहनत को लोगों के सामने वो व्यक्ति रखता है, तो
0: बिल्कुल
1: इसलिए समाचार वाचक थोड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि सबकी मेहनत वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है ये बताना होता है।
0: बिल्कुल
1: तो जो आपने कहा कि बहुत मुश्किलें, तो देख कोई ऐसी तो नहीं कभी आई, क्योंकि पूरी व्यवस्था होती है जो हर दम हमारे साथ तैनात रहते हैं, हर वक्त जो न्यूज घटित हो रही है दुनिया भर में, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मीटिंग्स होती रहती हैं, उसमें निर्देश मिलते रहते हैं, सब लोग साझा विचार करते हैं कि इसको कैसे किया जाए, तो वो तो एक पूरी हमारी निश्चित वो है। लेकिन हाँ, अगर आप कहें कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, या बुखार है, या आपको अचानक कोई दूसरा न्यूज रीडर नहीं आया है वहां पर है, और आपको अचानक से बुला लिया जाता है, तो बस यही थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जिसको कि हम काबू कर लेते हैं, मतलब इतना अनुभव के बाद काबू में आ जाती हैं चीजें। ऐसा कोई, क्योंकि सभी जो है वो टीम वर्क की तरह काम करते हैं, तो ऐसा कोई ऐसी मुश्किल आती नहीं है, मैंने कभी फेस नहीं की है।
0: बिल्कुल मैम, अक्सर सुबह के समय समाचार प्रभात होता है सुबह 8 बजे,
1: हाँ
0: और सुबह की जो शुरुआत होती है बहुत सारे लोगों की वो उसी समाचार बुलेटिन से होती है, तो उसका कोई यादगार पल श्रोताओं के साथ जो साझा करना चाह रही हूँ आप?
1: समाचार बुलेटिन सुबह के जो होते हैं, देखिए सबसे बड़ा तो इसमें ये होता है कि आपको अलार्म, अब तो खैर मोबाइल में होते हैं, हमारे जमाने में घड़ी में अलार्म रखा जाता था, फिर हम लोग फोन में अलार्म रखते थे, क्योंकि भाई उठना आपका सबसे जरूरी है
0: बिल्कुल
1: ना। अगर आपको 6 बजे पहला बुलेटिन पढ़ना है, तो यानी कि आपको 3:20 या 3:30 तक तो घर से निकल जाना है। अब आप ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस में 4 बजे से आप ड्यूटी पर तैनात होते हैं, अगर आपको 8 बजे का बुलेटिन पढ़ना है तब भी,
0: अच्छा
1: हाँ 6 बजे का पढ़ना है तब भी, क्योंकि आपको पूरी न्यूज की समझ होनी चाहिए और आप उस पूरी न्यूज को आत्मसात कर चुके होने चाहिए तब तक काम करना, और बहुत सतर्क और बहुत सावधान।
0: बिल्कुल, बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है मैम आपका।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो
0: समाचार
1: है।
0: निर्माण में जिस तरह टीम वर्क होता है, कितने लोग होते हैं, कुछ पर्दे के पीछे भी काम करते होंगे।
1: और देखिए बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है, हमारा हर राज्यों की राजधानियों में हमारे न्यूज रूम हैं, तो वहां हमारे संवाददाता हैं, दिल्ली में हमारे संवाददाता हैं, दिल्ली में जनरल न्यूज रूम है जहां सारी खबरें तैयार होती हैं, फिर वो हिंदी न्यूज रूम में, उर्दू न्यूज रूम में, संस्कृत न्यूज रूम में, सब जगह बढ़ती हैं फिर वो खबर। से मान लीजिए हमारा कोई बुलेटिन है वो प्रादेशिक का बुलेटिन है, तो वो दिल्ली और आसपास, उसमें उन खबरों को महत्व दिया जाता है। नेशनल हुकअप पर जो जा रहा है वो पूरे देश के लिए अलग अलग भागों में कहाँ क्या हो रहा है, तो बहुत तरह के बुलेटिन है। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सा बुलेटिन उसका टारगेट एरिया क्या है,
0: बिल्कुल
1: या जो विदेश प्रसारण हमारे होते हैं उसमें फिर उस हिसाब से बुलेटिन बनाए जाते हैं। और हाँ, पूरी टीम होती है, पूरी टीम होती है जो समाचारों को देख रही होती है, जो समाचारों को एडिट करती है, ट्रांसलेट करती है, भाषा सुधारती है, पूरी टीम होती है न्यूज रूम में, करीब 20-25 लोग तो होते ही हैं।
0: बिल्कुल, तो अब श्रोता बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब समाचार बुलेटिन होता है तो उसमें हम एक ही आवाज सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है।
1: जी जी जी जी
0: मैम,
1: बिल्कुल
0: कई सारे समाचार वाचकों के साथ आपने काम किया होगा, आपके सहवाचक भी रहे होंगे, तो वो कौन कौन से सहवाचक रहे हैं आपके साथ?
1: जी, मैंने मेरे साथ जब मैंने ज्वाइन किया था तो इंदु वाही, रामानुज प्रसाद सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, कृष्ण कुमार भार्गव, ये वो पीढ़ी थी जिनको हम बचपन से सुनते थे, और जब मैंने ज्वाइन किया तो ये लोग थे, ये लोग सब मेरे सामने ही रिटायर हुए। और फिर दूसरी पीढ़ी में अखिल मित्तल, राजेंद्र चुग, इन लोगों ने काफी लंबे अरसे तक हमारे साथ काम किया,
0: बिल्कुल.
1: फिर वे सेवानिवृत्त हुए। फिर उसके बाद यंग पीढ़ी जो हमारे बाद वाली है उनको भी हम लोगों ने ट्रेन किया और वो लोग आज काम कर रहे हैं सब।
0: बिल्कुल.
1: तो अच्छा लगता है आकाशवाणी में काम करके, बड़ा सहयोगात्मक रवैया है सबका, तो अच्छा लगता
0: मैम,
1: है।
0: हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो आपका कौन आइडियल रहा समाचार वाचक के रूप में?
1: वैसे तो देखिए देवकीनंदन पांडे तो हमारे आधार स्तंभ रहे, उनको तो हमने बचपन से सुना, लेकिन मेरे ज्वाइन करने से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे,

0: एक वाकया ये था, जब मैं नई नई आई थी, मतलब करीब 2 साल हो गए होंगे तब, तो एक दिन कोई दिव्यांग व्यक्ति थे, वो बैठे हुए थे, किसी के साथ बात कर रहे थे ऑफिस के अंदर ही। जो हमारे प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने उनसे आके कहा, मैं फीचर बना रही थी, तो मैंने उनसे जाके कहा कि जहां पर वो वॉइस लगानी है वो मिल नहीं रही है, वो म्यूजिक का कोई एक पीस लगाना था। बस मेरा इतना कहना था कि वो बोल पड़े, अरे ये तो चंद्रिका की आवाज है। और मुझे इतना अचरज हुआ कि बिना देखे कोई व्यक्ति मेरे बोलने से ये बता सकता है। और दूसरा, हाँ, एक बहुत गजब का एक्सपीरियंस था। मैं जापान में थी उस वक्त, मैंने जापान रेडियो में भी काम किया है। तो मैं जब वहां थी, तो हम लोग एक भारतीय दुकान में गए, तो वहां मैं बात कर रही थी अपनी दो तीन सखियों के साथ, तो एक महिला मुड़ी और मुझसे कहने लगी, आप चंद्रिका जोशी हैं। मेरे लिए ये समझो पैर तले जमीन निकलने वाली सी स्थिति हो गई थी कि आप विदेश में खड़े हैं, एक विदेशी महिला आपका नाम लेकर के पूछ रही है। तो मैंने एकदम से कहा, जी बिल्कुल मैं हूँ। तो मैंने कहा, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना और आप क्या हिंदी जानती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में रही हूँ, मैंने हिंदी पढ़ी है, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ती थी, और जब मैं हिंदी पढ़ती थी तो मुझसे ये कहा जाता था कि सुबह वो बुलेटिन सुनो और उससे उच्चारण अपना शुद्ध करो। वो सुनते सुनते मेरे कानों में वो उच्चारण और वो आवाज वो थी, तो वो मैंने जब आपकी सुनी थी इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप बताइए कितना गजब का एक्सपीरियंस है
1: बिल्कुल
0: ये। बड़ा ऐसा लगता है दुनिया इतनी छोटी है क्या?
1: बिल्कुल, दिल गदगद हो जाता है ऐसा
0: हाँ
1: अनुभव जान करके। मैम, अगर बात की जाए चंद्रिका जोशी की, चंद्रिका जोशी समाचार वाचिका ना होती तो फिर क्या होती?
0: हाँ समाचार वाचिका नहीं होती तो मैं या तो भरतनाट्यम डांसर होती और या सिंगर होती, क्योंकि मैंने भरतनाट्यम भी सीखा है और मैंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है। तो गंधर्व महाविद्यालय से मैंने शास्त्रीय संगीत 6 साल सीखा, विशारद किया। तो मतलब दुनिया तो संगीत साहित्य के ही आसपास घूम रही थी,
1: बिल्कुल
0: तो ये नहीं होती तो शायद डांसर होती या संगीतकार होती।
1: चलिए, अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आकाशवाणी रामपुर से जुड़कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कीमती वक्त दिया हमसे बात करने के लिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: देखिए ऐसा है, मैं अपने श्रोताओं से थोड़ा बात कर लूं कि मुझे आप सबसे बात करके बहुत खुशी हुई। मेरा सारा वक्त मेरे श्रोताओं के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए कीमती समय तो मेरा तब होता है जब श्रोताओं से बात करनी होती है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार कि आप आकाशवाणी सुनते हैं, और मनोज जी आपको भी बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं दूंगी, साथ में बहुत सारा धन्यवाद इसलिए दूंगी क्योंकि आपने मुझसे बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा।

धरोहर कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर श्रीमती चंद्रिका जोशी से खास बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे असीम सक्सेना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मन में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वागथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वागथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन सामाजिक

एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज, जन जन के मन की सच्ची परवाज। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ। आकाशवाणी वाकथन 2026 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन।

0: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: श्रोताओं नमस्कार, मन भवन कार्यक्रम में आज गीतमाला के साथ मैं हूं मनोज कुमार।

श्रोताओ, एक शब्द है बंधन। जी हाँ, बंधन। यूं तो इस शब्द के दो मतलब निकलते हैं, एक किसी को दायरे में, सीमाओं में बांधना या कैद करना, लेकिन वहीं इसका दूसरा पहलू भी है श्रोताओं, जोड़े रखना। किसी भी रिश्ते को जोड़े रखना ज़्यादा मायने रखता है। किसी से जुड़ना बड़ी बात नहीं है श्रोताओं, जुड़े रहना बड़ी बात है, और इससे भी बड़ी बात है किसी भी रिश्ते नाते को जोड़े रखना। रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाए उसी अनुसार फल प्राप्त होता है। हाँ, ये अलग बात है कि रिश्ते नातों में थोड़ी खटास और मिठास आ ही जाती है, लेकिन उनकी हिफाजत करना, उनको सहेजना हमारा फर्ज बनता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहाँ एहसास खत्म, वहाँ रिश्ता खत्म।

रिश्तों के बंधन में अक्सर मोहब्बत छूट जाती है और इन्हें निभाने के चक्कर में हमारी ज़िंदगी हमसे रूठ जाती है। कहा जाता है कि रिश्ते और रास्ते एक जैसे ही होते हैं, कभी रिश्ते निभाते हुए रास्ते बदल जाते हैं और कभी रास्ते पर चलते हुए रिश्ते बदल जाते हैं। फिर ये कैसा बंधन है रिश्तों का, नातों का, जो बांधने से बन जाए और जोड़ने से जुड़ जाए। उसी का नाम है बंधन। जो अपने आप बन जाए और जीवन भर ना टूटे, वह है अटूट बंधन।

पारिवारिक बंधन जीवन की आधारशिला है श्रोताओं। भावनात्मक जुड़ाव का आधार है एक बंधन, अपनीपन और पहचान के साथ एक ख्याल का परवाह का नाम है बंधन। ये परवाह परिवार के लिए होती है, भाई बहनों के लिए होती है, दोस्तों के लिए होती है, अपने बच्चों के लिए होती है, अपने हमदम के लिए भी होती है, क्योंकि बंधन की ये डोर दिल से बंधी होती है और दिल के तारों तक पहुँचती है। तभी प्यार और अपनेपन का एहसास होता है, एक एहसास जो लगने लगे बेहद ही खास, जब कोई अपना हो दिल के पास। ये बंधन प्यार के कुछ नाम के और कुछ बेनाम से।

बंधन प्रेम का हो या रिश्तों का, मजबूत होना चाहिए श्रोताओं, कभी ना टूटने वाला होना चाहिए। रिश्ते बंधे हों अगर दिल की डोरी से, तो दूर नहीं होते किसी मजबूरी से। एक धागा प्रेम का जो बंधा है मजबूती से, जो बंधा है प्रिया और पिया के संग सात फेरों से। लेकिन एक बंधन बना है सात जन्मों तक, कैसा अजीब बंधन है ये जो तेरे मेरे बीच में है।

प्यार का बंधन कुछ अजीब होता है श्रोताओं, लेकिन जितना अजीब होता है उतना ही नाजुक भी होता है और मजबूत भी होता है। प्रेम सिर्फ सात फेरों का बंधन नहीं होता श्रोताओं, हमेशा साथ देने का बंधन होता है। विश्वास है, शक्ति है, आस है, ये बंधन। त्याग और विरक्ति का, संतोष का, प्रीति का, स्वीकृति का बंधन है ये प्रेम। कुछ ऐसे बंधन होते हैं श्रोताओं जो बिन बांधे बन जाते हैं। तेरा मेरा बंधन तो प्यार का बंधन है, तू ही तो मेरा दर्पण है, इसीलिए तो ये तर्पण है, क्योंकि दो दिल एक धड़कन है। बिल्कुल ऐसे बंधन होने भी चाहिए श्रोताओं, अनजाने बंधन बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो ऐसे बंधन हमेशा दुख देते हैं। प्रेम का नाता टूट गया, तू मुझसे क्यों रूठ गया, मैं था तेरा तू थी मेरी, फिर क्यों प्रीत का दामन छूट गया, क्यों ये प्यार का बंधन टूट गया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन में गीतमाला। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: Lovely Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में, लेकिन पहले कुछ संदेश।
4: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
5: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
4: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई। हमारी जनगणना
6: हमारा विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

ये पहली सूचना हमें मिली है ग्राम राजा गालीपुर थाना असमोली जनपद संभल से। सूचना यह है कि इनम पुत्री तसब्बुर, जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनकी आयु लगभग 18 वर्ष, कद 4.5 फीट, शरीर की बनावट सामान्य, चेहरा गोल। घर से लापता होने के समय इन्होंने हरे रंग का सूट सलवार और पैरों में चप्पल पहने थी। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर है 9258110989। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9258110989।

ये दूसरी सूचना हमें दे रहे हैं श्री इमरत सिंह पुत्र धन्नामल निवासी ग्राम हापीजपुर हजरत नगर गढ़ी जिला संभल। सूचना देते हैं कि इनकी पुत्री प्रियंका जिनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनके शरीर की बनावट कुछ इस तरह है आंख नाक कान औसत लंबाई 5 फुट 3 इंच रंग गेहुआ कपड़े गुलाबी रंग के सूट सलवार और मटमैले रंग की जर्सी पहने हैं पैरों में इनके काले रंग के हवाई चप्पल हैं और इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचना देने का कष्ट करें। थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल। मोबाइल नंबर है 9149282299। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9149282299।

यह भी सूचना हमें मिली है ग्राम ओबरी थाना असमोली जनपद संभल से। सूचना देने वाले हैं मोहम्मद सफीक उर्फ वकार। ये सूचना देते हैं कि साइस्ता उर्फ नाजेश, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, कद 5 फीट 4 इंच है, शरीर सामान्य, चेहरा सामान्य, घर से लापता होने के समय इन्होंने सुरमई रंग का सूट सलवार और पैरों में काली जूती पहने हुए थी। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचना देने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर है 9105257732। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9105257732। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स के साथ साथ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। 12:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना, अपने नाम हम तक पहुंचाना, तो ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए जिस पर आप अपना संदेश, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है geetaapkenaam@rampur.gmail.com। जी हाँ, इसी ईमेल पर आपको अपना संदेश भेजना है। और ये जो हमें संदेश मिले हैं उनमें सबसे पहले कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनके परिवार वाले। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हमें मिला है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। नूर महल महसोल सीतामणी बिहार से हमें संदेश भेज रहे हैं मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहां, नुजहत, साजिया, शाहिनाज और इन्हीं के साथ हैं नाजिया नूरीनाज। ये ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम, यशफ और इन्हीं के साथ हैं सिकंदरा राव से मुवीन अब्बासी, इशरत परवीन और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं अमरावती महाराष्ट्र से सईद भाई, सुफियान अनस, आयजा सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया और इनके परिवार वाले। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, जी एस रामगढ़िया और इनके साथ ही। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन और इनके बहुत सारे साथी। ये ईमेल हम तक पहुंचा है दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और इनके परिवार वाले। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता और इनके परिवार वाले पिपरिया जिला कबीरधाम से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये ईमेल हम तक पहुंचा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश रावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर और इन्हीं के साथ हैं टुक टुक गवाणकर।

दिनेश कुमार, रागनी और मुस्कान हमें संदेश भेज रहे हैं बरेली कैंट चनहटी उत्तर प्रदेश से। ये ईमेल हम तक आया है गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेंद्र पांड्या और विजय पांड्या जी का। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है मगरपारा बिलासपुर से वसीम आसमा, अकरम आसमा और इन्हीं के साथ हैं रेलवे कॉलोनी लखनऊ से सोनम, दानिश और फातिमा। ये ईमेल हम तक पहुंचा है सरगुजा मेनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा आदिवा, कुमारवली थापा। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार और रिंकी शेखावत। ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सिर्फ आपका नाम ही आया है और जगह का नाम आपके संदेश में हमें नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया करके दोबारा अपना संदेश भेजें तो हमें आपके एड्रेस का भी पता चलेगा। ये अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम सुरलकर और इनके परिवार वाले। ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं गाजियाबाद से। श्रोताओं, आपका नाम हम समझ रहे हैं, आप बार बार अपना जगह और नाम बदल करके अपना संदेश भेज रहे हैं। ये हमारे श्रोता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से भेज रहे हैं और ये समझ गए होंगे कि आप कितनी बार नाम बदल करके भेज रहे हैं। फातिमा वली बेलदार करके आपने संदेश भेजा है गाजियाबाद से और आपका संदेश हम पढ़ चुके हैं, आप जगह का नाम बदल रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। ये संदेश हम तक पहुँचा है मोहल्ला बारादरी मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, साहिमा काजल और शहजाद अली मंसूरी। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं करणवीर हाउस भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू एकम, दमन अभिजोत और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है नई बस्ती गंडुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। आप सब ने सुनना चाहा है ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के, फिल्म का नाम है घुंघरू।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओ, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गीत आपके नाम में। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना संदेश सिर्फ अपने नाम के साथ और अपने पते के साथ ही भेजें, और एक बार ही भेजें, नाम बदल करके और स्थान बदल करके अपना संदेश ना भेजें। ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है रेशमी नगरी आजमगढ़ से, जावेद अख्तर राही, रुखसार रकीबा, शाहीन तुबा अफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं गोवर्धन विहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव, रिधान खुराना और इनके परिवार वाले। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं मोहल्ला मजार चांद श्राम मियाँ रामपुर से, मोहम्मद रमजान साहिब अदनान और इन्हीं के साथ हैं अरमान अली मंसूरी, रैना चांदनी, अनमत और आशु। अगला ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार वाले।

हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके परिवार वाले। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार हमें संदेश भेज रहे हैं। ये ईमेल हम तक पहुंचा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं शेरवानी गंडुंडवारा से, आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, नमस्कार के साथ यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से हमें ईमेल संदेश भेज रहे हैं। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। ये ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास बादवानी। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, परवीन सुल्ताना, भावेश और आपने संदेश भेजा है बीरगांव गुजरात से। बागपत उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेज रहे हैं संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया, अपार ढेंगिया और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हम तक पहुंचा है राजकोट से जैमिनी कुमार जैन, हैतल जैन, कृष्णा और राकेश जैन। ये ईमेल हम तक पहुंचा है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण सेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं जीशान वारसी और इनके परिवार वाले। सिर्फ आपका नाम ही हम तक पहुंचा है, बाकी आपके जो और नाम हैं और पता है वो हम तक नहीं पहुंचा है। ये ईमेल हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहिनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये ईमेल हमें मिला है चमन पार्क दिल्ली से और ये भी अपना नाम बदल करके हम तक पहुंचा रहे हैं, इनका नाम पहले भी शामिल हो चुका है। इसलिए श्रोता बार बार आपसे आग्रह है कि अपना नाम ना बदलें, जगह का नाम ना बदलें। ये हमारे श्रोता हैं कृष्णा घोटके, प्रशांत सिंधे, रूशि, यशराज और सुनीता के साथ हैं, रोहिदास और पंधरपुर सिटी से हमें संदेश भेज रहे हैं ये। अगला संदेश हम तक पहुंचा है रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी का। ये ईमेल हमें मिला है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार बुड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप हमें संदेश भेज रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से हमें संदेश भेज रहे हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। ये ईमेल हम तक पहुंचा है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हम तक पहुंचा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, इन्हीं के साथ हैं रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल और बावड़ी से खुदाबख्श। आप सब ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल के युगल स्वर में। ये गीत संगीत दिया है बाबुल बोस ने और गीत को लिखा है रविंद्र रावल ने। फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम। इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम शामिल कर रहे हैं आपके ईमेल संदेश। ईमेल संदेश हम तक पहुंचाने के लिए एक बार ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। ये ईमेल हम तक पहुंचा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज़ रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार वाले। अगला संदेश हम तक पहुंचा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव और SK पप्पी। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं वर्णा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से, विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्वी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान। ये हमारे श्रोता हैं। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, मधुकर येले और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं सनावत ग्राम से खुशदीप और एकांश। ये ईमेल हम तक पहुंचा है सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा और निशा डोमिन। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं वैष्णव कॉलोनी सनावस से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश, मोहम्मद अलकमर खत्री, रमेश गौर और शादाव खत्री। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं बुल्डाना वर्णिंग सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। इन्हीं के साथ हैं महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेत कुमार। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निसा श्रवस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। ये ईमेल हम तक पहुंचा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, मेराज जहां का, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईसदुल्ला अंसारी और इनके परिवार वाले। शहबाजपुर कला कशवा पागवड़ा से मजहर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज, इनका बेटा मुजक्किर बाबू, रईसा मजहर और आसिम, बेटी सुमैया महक। ये ईमेल हम तक पहुंचा है ऊपरकोट मोहल्ला चौघंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़ शोभापुर बाईपास मेरठ से हमें संदेश भेज रहे हैं। वेरणी से राजेश सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, कंचन सोनी, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सुबह शेरे। ये हमारे श्रोता हैं वेरणी मध्य प्रदेश से ही हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची तनु करमकर और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं लोहगढ़ ठाकुरवाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल, अविराज और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं बघेरा दुर्ग से, संतोष और शौर्य। फजिलका पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशाल, विशु खेड़ा, लाडली खेड़ा, शालनी, टिवांशी और वाणी खेड़ा। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, इन्हीं के साथ हैं अंबेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट मुंगेसापुर कानपुर देहात से, रमेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू कठेरिया और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं संघमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से, जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी और चेतन के साथ हैं बेबी प्रियांशी। ये हमारे श्रोता हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं गांधी समाधि रोड रामपुर से, हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदिहा खान, सुभान खान और फरोज खान। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं नमस्कार के साथ आप संदेश भेज रहे हैं, काले गांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राधे राजे जाधव, संचेत, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख के साथ हैं कल्पना देशमुख। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी और इन्हीं के साथ हैं हिमाक्ष। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू और दिव्या भारती के साथ हैं उमा राज। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं आपने अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखा है, सिर्फ आपका संदेश हम तक पहुंचा है, इसलिए आपका नाम पढ़ पाने में हमें दिक्कत हो रही है श्रोताओं। ये अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं दुर्गा चौक सनावस से सीताराम और हीरा लाल। अगला ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और इनके परिवार वालों का। आप सबने सुनना चाहा है वाजीगर फिल्म में ये गीत स्वर विनोद राठौड़ और अलका याग्निक के हैं, संगीत अनु मलिक का है और गीत को लिखा है गौहर कानपुरी ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने के लिए हमें ईमेल संदेश मिला है बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु संस्कृति पौरुष रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं जालना से परमेश्वर शिंदे कावेरी शिंदे प्रवाद शिंदे और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब सईद भाई मंसूरी राशिद भाई मंसूरी फौजिया रोशनी शाइना काजल और असद भाई फिरोजा मुस्कान। इन्हीं के साथ हैं नगमा नाज मंसूरी। अगला ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं प्रकाश बोरगांवकर सुषमा प्रकाश प्रांजलि सोहम बोरगांवकर सदानंद विराज स्वीट अंशुमन और इन्हीं के साथ हैं बेबी। आप संदेश भेज रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी से। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं आप संदेश भेज रहे हैं जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से राजा हुसैन शाहिद हुसैन आदिल हुसैन और मोहम्मद राजिया। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश मंजू और निशांत के साथ हैं कौशिकी वर्मा दीपाली वर्मा युवान और आर के राजा। अगला ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता दले अनिकेत ऋषिकेश जीविका सानिका पुनावले पुणे से अजय सोनवने करिश्मा सोनवने अविका और विशाखा सोनवने। ये ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी जी का संदेश हम तक पहुंचा है सिर्फ आपका ईमेल हम तक पहुंचा है नाम और जगह का नाम नहीं मिला है हमें लेकिन हमें पता है आप मोहल्ला हलवयान शेरकोट बिजनौर से संदेश भेजते हैं बाकी आपके नाम इसमें फ्लैश नहीं हो रहे हैं। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं वर्निंग खेड़ा पंजाब से आरती अरोड़ा और लवली अरोड़ा हमें संदेश भेज रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं ओम रेडियो श्रोता संघ नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओम कुमार और साईं गायकवाड़। अगला ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं चंदन नगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी प्रभा जोशी और इन्हीं के साथ हैं अम्बाला से आशु और सोनाली। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं बाल कृष्ण शर्मा प्रवीण मुनीश राहुल शर्मा आप संदेश भेज रहे हैं नंगलखेड़ा पंजाब से। ये ईमेल हम

तक पहुंचा है जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, दिलदार मेरी, ज्योति और दीक्षांत मेरी। राजेंद्र कुमार, मलकीत, आरती रानी, राघव और इनके परिवार के सभी लोग हमें संदेश भेज रहे हैं गांव उगाला जिला अम्बाला से। ये ईमेल हम तक पहुंचा है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत और इनके परिवार वालों का। रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जीशान खान आप संदेश भेज रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत, खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव जी हमें संदेश भेज रहे हैं। ये ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है वीड शहर माराठ से, नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महतरे, अंजलि करवा और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है लोहगढ़ ठाकुरवाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज और इनके परिवार वालों का। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार और इनके परिवार वाले हमें अपना संदेश भेज रहे हैं। आप सबने सुनना चाहा है ये गीत आज का अर्जुन फिल्म से, स्वर है लता मंगेशकर का, संगीत बप्पी लहरी का और गीत को लिखा है अनजान ने। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपने ईमेल संदेशों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामेगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण, लेकिन पहले कुछ

0: संदेश।
1: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती रात 9:30 पर और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का प्रसारण समय रहेगा रात 8:00। सुगम संगीत कार्यक्रम में संध्या 7:31 पर आज आप सुन सकेंगे रुचि शुक्ला के गाए कुछ गीत और भजन। श्रोता मंच कार्यक्रम में संध्या 7:00 आज सुनिएगा श्री राजेश सोनी से मनोज कुमार की फोन इन बातचीत। समय याद रखिएगा, संध्या 7:00 श्रोता मंच कार्यक्रम में। शाम 6:20 पर किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, चारे के लिए मक्का की खेती विषय पर भेंटवार्ता होगी। जानकारी देंगे MS पाल और आपसे जानकारी जुटाएंगे राजेंद्र भट्ट। मनोरंजन के लिए लोकगीत होगा और कृषि संकेत में जानकारी दी जाएगी सब्जी वाली फसलों की देखभाल पर। कार्यक्रम लेकर आएंगे दीपक और हेमपाल भैया। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विक्रांत चौधरी। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी होगा रोजाना के समय संध्या 5:15 पर। हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आज शाम। दिन में 2:30 पर सुनहरा दौर कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिएगा 2000 दशक के हिट्स गीत। हेलो फरमाइश, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे अब से कुछ ही देर में, यानी 1:15 पर। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर से बता दें, श्रोता मंच कार्यक्रम में संध्या 7:00 आज आप सुनेंगे श्री राजेश सोनी से फोन पर की गई बातचीत। साथ ही हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे, यानी 1:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं, 1:10 होने को हैं। कुछ ही देर में इलाकाई खबरें आकाशवाणी लखनऊ से रिले होंगी।

0: अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए के 262 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट और चेक दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने रियासत के हर जिले को तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि रियासत अब मुल्क और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। वजीर आला ने कहा कि आज गोंडा में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्टों से जिले की तरक्की और अवामी सहूलियात को वुसअत मिलेगी।
1: उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं कह सकता हूं पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं।
0: महाकुंभ 2025 ने मरकजी हुकूमत के जरिए ऐलान करदा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड जीता है। इस साल मरकजी हुकूमत ने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के तहत 11 गोल्ड अवार्ड्स, 6 सिल्वर अवार्ड्स और 1 ज्यूरी अवार्ड का ऐलान किया। महाकुंभ 2025 को मुल्क की बेहतरीन ई गवर्नेंस ईजादात में से एक तस्लीम किया गया है। महाकुंभ गोल्ड अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 10 लाख की रकम मिलेगी और सिल्वर अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 5 लाख मिलेंगे। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 की रस्मी पेशकश की तकरीब जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक्किद की जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत अब अपनी सरमायाकारी और सलामती के माहौल के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत हर जिले की मजमूई तरक्की के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: रियासत के वजीर तवानाई ए के शर्मा ने पीएम सूर्यघर पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आजम की तरगीब पर मुल्क में सोलर तवानाई में तेजी से तौसी हो रही है। वाराणसी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश मुल्क में अव्वल मुकाम पर है और वाराणसी मुल्क में सोलर तवानाई में 11वें मुकाम पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर एक खसूसी मुहिम कल शुरू हुई। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियासत के तमाम अजला के इंचार्ज वजरा और अवामी नुमाइंदे 21 जून तक समाज के रोशन ख्याल तबकों के साथ बातचीत करेंगे। वो अवामी मसाइल के हल के लिए देही इलाकों में रात के चौपाल का भी एहतमाम करेंगे। इस तनाजुर में काबिनी वजीर ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में दरख्त लगाकर एक मरबूत अवामी फलाह बहबूद और बेदारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम के बारे में मालूमात फराहम करते हुए रियासत के जल शक्ति के वजीर स्वतन देव सिंह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में दुनिया भर में मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में एकेडमी अवार्ड तकरीब में 2021 से 2024 के लिए मुंतखब फनकारों को एजाज से नवाजा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के जेर इतमाम तकरीब में 51 मुमताज फनकारों को मौसिकी, रक्स, ड्रामा और लोक फनून में नुमाया खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। वाराणसी मुनक्कदा ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप का 2 रोजा इजलास कल इख्तिताम पजीर हुआ। आखिरी दिन ब्रिक्स के रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने सकाफती ताउन और बाहिमी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हिंदुस्तान की सदारत में होने वाली इस अहम मीटिंग में ब्राजील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका और सऊदी अरब समेत 11 ममालिक ने शिरकत की। सकाफत की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी अमिता प्रसाद सरभाई ने कहा कि मीटिंग में हिंदुस्तान के कीमती विरसे की वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान तरक्की और सकाफत के मुतखफा तफहूम के साथ आगे बढ़ने के तौर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बलिया के जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुराताल को मुल्क के सवा रामसर साइट करार दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि यह मुल्क के कुदरती माहौल खास तौर पर उसकी आबी जमीन के तहफ्फुज़ के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने माहौलियाती तहफ्फुज़, हयातती तनू के तहफ्फुज़ और वेटलैंड के तहफ्फुज़ के शोबों में काबिल जिक्र तरक्की की है। मुजफ्फरनगर जिले के छपर थाना इलाके में देहली देहरादून कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में तीन अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल पर सवार तीन अफराद ट्रक से टकरा गए, मौके पर ही हलाक हो गए। आंसू वाकये के बाद पुलिस और इंतजामी अहलकार जाए वकूफ पर पहुंचे। पुलिस सुपरिंटेंडेंट संजय कुमार ने कहा कि मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 और 54 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: आपसे बातें, आपकी पसंद का गीत, यही रहती है ख्वाहिश। तभी तो हर हफ्ते लेकर के आते हैं हम कार्यक्रम हेलो फरमाइश। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार। श्रोताओं, आपको बता दें, दस्तूर के मुताबिक अपना फ़ोन नंबर जिस पर आप फ़ोन करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं, फ़ोन नंबर है 0595-23-24-326। जी हाँ, इसी नंबर पर आपको फ़ोन करना है और अपनी पसंद का गीत आप सुन सकते हैं। हमने नंबर बताया और हमारे श्रोता इस समय हमसे लाइन पे जुड़ चुके हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
1: राजेश नहीं, मैं राकेश बोल रहा हूँ।
0: राकेश जी, क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो सेब की बागवानी करते हैं।
0: अच्छा, लगता है आपसे पहले भी हमारी बात हुई है।
1: जी, एक बार पहले बात हुई थी।
0: तो राकेश जी, कब से रेडियो सुन रहे हैं आप?
1: मैं रेडियो तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ और अब तो आकाशवाणी के 90 वर्ष भी हो चुके हैं।
0: जी, तो क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर?
1: मैं आकाशवाणी 90 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें ज्ञानवर्धन जानकारी, मनोरंजन, तो शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, और ये काम तो होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात ये, हम रेडियो के माध्यम से हमारी पहचान भी बढ़ जाती है। इससे हर राज्य के श्रोता भी होते हैं और इससे जो है हम किसी भी श्रोता की कॉल भी आती है तो हम पहचान जाते कि फलाना व्यक्ति जो है कहाँ से जुड़ा है रेडियो पे। ये हमें कन्फर्म हो जाता है, चाहे किसी भी कोने से भी क्या होते हैं लोग जुड़ते हैं और इसमें जो है कॉन्टैक्ट या पहचान हो जाती है। और हम बड़े बड़े जैसे कि इसमें हमें रेडियो से शुरुआत हो जाती है कि जो हम किसी को जानते नहीं और रेडियो के माध्यम से हम सबको जानते।
0: बिल्कुल, यही रेडियो की खासियत है कि हम एक दूसरे को देखे हुए नहीं होते, लेकिन फिर भी ये रिश्ता इतना मजबूत होता है जो जुड़ा रहता है। तो आज कार्यक्रम में आपने फोन किया है, किस फिल्म का गीत आपको सुनवाएं?
1: ये फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और गाने की बोले जा रहा हूँ इसमें फिल्म में।
0: चलिए, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे दिल का क्या कसूर फिल्म से। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हम देखते हैं हमारे कौन से श्रोता इस समय लाइन पर हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
0: हेलो फरमाइश।
3: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, कौन से श्रोता इस समय हमसे जुड़े हैं?
3: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: बहुत बहुत स्वागत है लोकेंद्र वर्मा जी, कैसे हैं आप?
3: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आकाश अनवर रेडियो की दुनिया में जीते हैं सर।
0: बहुत सही, क्या करते हैं आप रेडियो सुनने के साथ साथ?
3: मेरा हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है, मतलब सभी को तैयार करना, संवारना, उनकी हेयर स्टाइल बनाना, खूबसूरत दिखाना, यही मेरा पेशा है सर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि आप उन लोगों को संवारने का काम कर रहे हैं।
3: जी सर बिल्कुल सर।
0: तो रेडियो कब से
3: इसी बिजनेस को कर रहे हैं?
0: जी रेडियो कब से सुन रहे हैं लोकेंद्र जी आप?
3: रेडियो सर मैं 1985 से सुन रहा हूँ, 85 से, जब बिना का सिबा का गीत माला आता था, जब से ही मतलब रेडियो से सुन रहा हूँ मैं। बचपन से मतलब मेरे पिताजी के साथ में जब वाला रेडियो होता था बड़ा, जब से सुन रहा हूँ। बस पिताजी तो नहीं रहे हैं, पर उनकी यादों को मैं रेडियो के सहारे अपने दिलों में जिंदा रखता हूँ सर।
0: बिल्कुल, ये यादें सजोने की जरूरत होती है। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष की यात्रा पूरी करने जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस 90 वर्ष की यात्रा पर?
3: सर जी, आकाशवाणी की इस 90 वर्ष की यात्रा में बहुत

0: राजस्थान की जो उसने उपलब्धि हासिल की है, तो वो वार्ता से कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना कठिन प्रयास करने के बाद में आज इस स्तर तक पहुंचे हैं।
1: बिल्कुल, यही प्रयास आकाशवाणी ने हमेशा से किया है श्रोताओं के लिए, कि उनके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं, उनको जानकारी में इजाफा किया जाए।
0: जी जी बिल्कुल, और अब तो ऐप का जो डिजिटल जमाना आ गया है, इसके अनुसार सभी उद्घोषक महोदय और जितने भी आकाशवाणी के अपडेट रहती है प्रोग्रामों की, वो ऐप के माध्यम से भी सुन लेते हैं, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म रहते हैं इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, इस पे सभी अपडेट प्रोग्रामों की मिलती रहती है। और खास करके मुझे युवानी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
0: गाना सर ये थोड़ा पुरानी फिल्म है, फिल्म का नाम है कर्तव्य, धर्मेंद्र की फिल्म है, इसमें गाना है तुझे मेरी कोई बात जितने करीब आओ, और कुछ मित्र भी हैं सर जी, थोड़ा सा उनका एक दो तीन मित्र हैं, और शाहनूर अंसारी जी हैं हमारे, और मोहम्मद सैयद अब्बासी है बुलंदशहर से, और पीर जरा मेराजुद्दीन है जम्मू कश्मीर से, और योगेश जी हैं, उदयलाल टेलर जी हैं, करणवीर पॉल जी हैं, और मुकेश कश्यप जी हैं।
1: चलिए लोकेंद्र जी, आपके साथ हम भी सुनते हैं ये गीत फिल्म कर्तव्य से लता मंगेशकर के सुर में। फ़ोन करने के लिए शुक्रिया आपका।
0: बहुत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: हाँ जी हेलो फरमाइश से बात कर रहे हैं। हमारे कौन से श्रोता इस समय हमसे बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपरेंका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ, मुस्तरा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: हम तो सर जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं। इस समय बगीचे में लेटे हुए हैं और कार्यक्रम हेलो रामपुर का प्रसारण सुन रहे हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमीरपुर में बैठकर आकाशवाणी रामपुर का प्रिय कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुन रहे हैं। तो क्या
1: जी
0: करते
1: सर,
0: हैं आप?
1: कृषि का कार्य करते हैं। इस समय बगीचा है तो बगीचे में लेटे हुए हैं और मूंगफली की बुवाई होती है तो गहरी जुताई चुकी है, खाद डाल दी गई है गोबर की, 20 जून से बुवाई शुरू हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो रेडियो के कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं आप?
1: रेडियो के तो बहुत दुआएं, क्योंकि 1993 से सुन रहे हैं।
0: हेलो।
1: 1993 से सुन रहे हैं रेडियो।
0: अच्छा, 1993 से सुन रहे हैं। तो
1: जी
0: आकाशवाणी अपने प्रसारण की 90 वर्ष की यात्रा पूरी करने जा रहा है 8 जून को। तो क्या कहेंगे
1: जी
0: श्रोताओं से आप?
1: हम तो श्रोताओं से कहेंगे कि अपने ऐसे ही रेडियो आकाशवाणी रामपुर से जुड़े रहें, और रेडियो समय तो नहीं लेता है और आपका समय का पूर्ण भरपूर मनोरंजन करवाता है।
0: बिल्कुल, आज आपने फोन किया है तो किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर जी आज गीत सुनेंगे, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ।
0: फोन करने के लिए शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइए सर, अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं?
1: सर। मैं जिला रामपुर ग्राम कासीपुर से शबनम बात कर रही हूँ आपसे।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका शबनम जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हो और आकाशवाणी रामपुर में सभी लोग कैसे हैं।
0: सब लोग यहाँ पर ठीक हैं। शबनम जी, कब से सुन रही हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम आप?
1: जी सर, आकाशवाणी रामपुर से तो हम सन 2006 से जुड़े हुए हैं
0: तो
1: और
0: आकाशवाणी
1: पूरी दुनिया।
0: अपने 90 साल की यात्रा पूरी करने जा रहा है, क्या कहेंगी श्रोताओं से? हेलो हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। इन्होंने अपनी पसंद का गीत हमसे सुनना चाहा था, आंदोलन फिल्म में। सुनवाते हैं आपको शबनम जी ये गीत आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: जी। हेलो फरमाइश से बात कर रहे हैं, कौन से श्रोता इस समय हमसे जुड़े हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिवन जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
0: बहुत दूर से आप हमसे बात कर रहे हैं, आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं?
1: बस फोन कार्यक्रम हमको अच्छा लगता है, उस
0: अच्छा
1: पर ही फोन लगाते हैं।
0: तो आज आपने फोन किया है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: सलामी का सुना देना हवा से।
0: चलिए ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपके विदिशा में। फ़ोन करने के लिए शुक्रिया आपका
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी हेलो फरमाइश से बोल रहे हैं, कौन बोल रही हैं हमसे?
1: अच्छा जी, आदाब।
0: आदाब।
1: कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप अपना परिचय तो दीजिए।
1: सर, मैं ककरवा से बात कर रही हूँ।
0: ककरुआ से श्यामा परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप?
1: जी सर, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, और आज मेरी कॉल अगर आपसे मेरी बात हो रही तो मैं और भी अच्छी हो जाएगी।
0: चलिए, आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और काबिले तारीफ है सर।
0: आकाशवाणी
1: और
0: अपने
1: आपने जो 12 बजे से गाने चलाए,
0: बिल्कुल
1: बहुत ही अच्छे, दिल को छू गए। मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए।
0: शुक्रिया। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष की यात्रा पूरी करने जा रहा है, तो क्या कहेंगी श्रोताओं से?
1: सर, मैं श्रोताओं से बस यही कहना चाहूंगी कि मन लगा के रेडियो सुने। रेडियो हमें बहुत कुछ सिखाता है, रेडियो बहुत कुछ बताता है, और रेडियो को सुनना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम फोन देखते हैं, चलाते हैं, तो वो कुछ नहीं सीखते जो हम रेडियो से सीखते हैं।
0: बिल्कुल, आज आपने
1: और सर,
0: फोन किया।
1: आकाशवाणी रामपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ रेडियो की, आकाशवाणी की।
0: चलिए, हम भी आभारी हैं आप जैसे श्रोताओं के। आज आपने फोन किया है तो किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: सर, मूवी का नाम रहेगा दिल का रिश्ता, और गीत के बोल रहेंगे दया दया। और जाते जाते दो लाइनें कहना चाहूंगी सर मैं। और सर, लाइनें मैंने अभी अभी बनाई है, कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से लेकर आऊं।
0: जी
1: सर कहते हैं कि रूठेंगे हम वो मनाएंगे हमको, रूठेंगे हम वो मनाएंगे हमको, अपने हाथों से वो सजाएंगे हमको, और खुशबू लगाने की हमको जरूरत नहीं, अपनी ही बाहों से वो महकाएंगे हमको।
0: चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। श्यामा परवीन जी, फोन करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर नमस्ते। जी
0: जी। नमस्ते, कौन से श्रोता इस समय हमसे बात कर रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे लग रहे हैं उज्जैन में आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम?
1: जी आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम मोबाइल ऐप पे सुनता हूँ मैं सर, इस पर प्रसारण मिलता है हमें जी, और फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करता हूँ।
0: अच्छा
1: जी, हेलो फ्रेंड शाम को आता है उसमें भी लगाता हूँ, और हेलो फरमाइश प्रोग्राम में भी लगाता हूँ।
0: चलिए, अच्छा
1: शनिवार का तो सर हमें वैसे भी इंतजार रहता है।
0: बिल्कुल, आप
1: जी हाँ
0: बराबर आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को सुनते हैं, कैसे लगते हैं?
1: जी, कार्यक्रम काफी अच्छे होते हैं, जानकारी से परिपूर्ण होते हैं, और मैं एक बात और है, आकाशवाणी पे जितनी भी जानकारी मिलती है ना वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलती है, इसमें ऐसी कोई भ्रांतियां नहीं होती।
0: बिल्कुल, यही हमेशा से आकाशवाणी ने अपने ध्येय को रखा है कि श्रोताओं तक जो भी जानकारी पहुंचे वो सटीक और सारगर्भित हो। तो आज आपने
1: जी
0: फ़ोन किया
1: बिल्कुल।
0: है, किस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएं?
1: जी फिल्म का नाम है सरगम, और गाने के बोले डफली वाले डफली बजा।
0: चलिए ये गीत हम भी सुनते हैं आपके साथ उज्जैन में। फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया।
1: जी थैंक यू सो मच।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार।

0: करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15

0: लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न

0: कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 और 18 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 2010 दशक के कुछ हिट्स गीत। कार्यक्रम का गीत इस अंतराल के बाद।

कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, बी हैप्पी फिल्म से, स्वर सुनिधि चौहान व साथियों का।

ये गीत आप सुन रहे थे बी हैप्पी फिल्म में। स्वर था सुनिधि चौहान व साथियों का। अगला गीत सुनते हैं असलम अब्दुल मजीद के स्वर में, फिल्म गुड बैड अगली से।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं 2010 दशक के कुछ हिट्स गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं विशाल मिश्रा और नीति मोहन के स्वर में, फिल्म का नाम है बॉर्डर 2।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म गदर 2 से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मृदंग फिल्म में, स्वर है कुमार सानू और रैना लाहिरी का। इस गीत में संगीत दिया है नवीन मिश्रा ने।

आज के सुनहरा दौर कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म प्यासा से। इस गीत में स्वर है अलका याग्निक और उदित नारायण का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम। इन्हीं मीटर्स पर संध्या 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, लेकिन अब से लेकर संध्या 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर जारी रहेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। मीडियम वे पर हमें ये सभा यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है, आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकटे और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा यह गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाही गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाही गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
2: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूं। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
3: रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की दगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में

हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी। आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब के चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियाया तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात व ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, आपकी बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्ते फाश देनी चाहिए।
1: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
1: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
1: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी। आलम पना,
1: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
1: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म वाली जा।
3: तस्लीम।
1: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम एमिली है योर मैजेस्टी।
1: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम? योर
3: जी योर मैजेस्टी।
1: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
3: आलम पनाह। आलम पनाह।
1: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
3: जी जी हाँ, जान पाना हा। यहाँ बचपन से रहे हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
1: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
3: ओ, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं। हम यहाँ आपकी पनाह में रहने चाहते हैं।

0: ठीक है एमली, तुम यहां रह सकती हो।
1: ओह थैंक यू। नहीं नहीं बहुत अच्छा।
0: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा। बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
1: नो नहीं नहीं हम पर्दे में नहीं रह सकते। हम तो आजाद घूमने चाहते। हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
0: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहां जब तक चाहो रह सकती हो।
1: ओ जय पाना, आप कितने अच्छे हैं, कितना खूबसूरत है आप।
0: हाँ हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
1: ओ, ओ शुक्रिया आलिम पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
0: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हां जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
0: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हां आलमपना, अंग्रेज तो बंगाल बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
0: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं। लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
0: नवाब
2: जहांपनाह,
0: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
0: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
0: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
2: जी आली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
0: वाह बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
2: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
0: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेहयाब होंगे, इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
2: बेशक आलमपनाह, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहां पना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
0: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
2: अली कत्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
0: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?
2: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
0: और अब क्या हुआ उसको?
2: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान, हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
0: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
2: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
0: ये तो बहुत संगीन मामला है।
2: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
0: इस वक्त वो कहां है?
2: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
0: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपाही के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
2: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
0: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
2: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलमपनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कुछ भी कर चुके थे।
0: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
2: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
3: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
0: कौन? सकीना बेगम? यहां? फौरन भेजो।
3: जी जहां पना।
1: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
0: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहां क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
1: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
0: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
1: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
0: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
1: जी नहीं आलमपना।
0: वो कमीनी कहाँ है?
1: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
0: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
2: जहां पना ने याद फरमाया।
0: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है, उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ, बराबर के खेमे में है वो बदसात?
2: जी अलीजा, हुक्म की तामील होगी।
0: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो, इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
1: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं, फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
0: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
1: जैसी आलमपना की मर्जी।
2: मालूम पना, मैंने तहकीकात कर ली है। अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्त मेजर मुंडो को भेज चुकी है। घोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर।
4: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो।
3: शुजा,
4: शुजा ये हाँ। ये क्या है?
2: ओह जहां बना, ये तो अंग्रेजों की तोपें हैं। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
4: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
2: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है। धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
4: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खां, मियां ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं, और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूरे वाला, यह अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेजिया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बार करके दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहनशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तू दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शान शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।
0: आलम पना ये आली जहा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलमपना सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम है लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूं इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: जी, तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहां हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहां हुआ, कैसे आपका बचपन बीता, और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन, जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो था
0: ना, था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे, या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूं कि टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। हम चार भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्हें कहा कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश इन्वायरमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वॉज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मैं मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ। और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा, कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे वो इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन
0: हाँ।
1: की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए, तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
1: बोनी एम का,
0: हाँ,
1: ओके। हाँ
0: बोनियम 1975 में।
1: हाँ
0: तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन।
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे फिर अजीब दास्तां है,
1: हाँ
0: अजीब दास, मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सब उनको चाहिए था, तो वो
1: जी
0: लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो वो लफ्ज जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: गाने
0: चीज
1: याद भी हो जाते थे।
0: याद हो जाते।

तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार पुरस्कार बहुत बार मिला है और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है। तब मेरी आवाज एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था और बहुत वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन में।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेके आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझमें ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था।
0: फिर
1: इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया, तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों को, लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो।

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी, और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे, क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोले कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे, मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया, और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने

0: लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
1: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
0: 17 साल
1: होगी,
0: की थी,
1: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं।
0: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया था।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे। तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था, तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे, उन्होंने कहा आप ले लो, ये आप पढ़ा दो, और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
1: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान
0: हाँ
1: के बारे में, दिलचस्प, मुझे यहां कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
0: अच्छा
1: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है, और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना
0: करेक्ट
1: कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुइस।
0: बहुत बहुत
1: तो
0: शुक्रिया।
1: टेरेंस, मैं यहां ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो
0: हाँ
1: संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
0: एग्जैक्टली क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहाँ से छुड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया, और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया, और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से। लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने हैं।
1: ओह,
0: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ। तो उन्होंने सबने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू तू तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: कि हर तरह से
0: हर तरह से
1: तोड़ने
0: मतलब,
1: की कोशिश थी।
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए, एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है, वो हर चीज से डरता है,
0: हाँ
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो
0: करेक्ट
1: खोने के लिए
0: हाँ
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो
0: हाँ
1: जाए,
0: अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम
1: कोई
0: नहीं है,
1: प्रॉब्लम
0: क्योंकि
1: नहीं
0: लोग सपोर्ट मिलता है। लेकिन
1: है।
0: हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं,
1: हाँ।
0: उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ कि पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए वो ही खुशी
1: ये
0: है।
1: बहुत
0: हाँ
1: बड़ी बात है ना। और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे,
0: करेक्ट
1: आगे बढ़े, हर बाप
0: करेक्ट
1: की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि
0: हाँ
1: उसका बेटा उससे आगे जाए।
0: बढ़े हाँ
1: बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश
1: उनको
0: हो
1: तो
0: गए।
1: खुशी मिल गई,
0: हाँ लेकिन उनको वही
1: लेकिन
0: वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो
1: चलिए,
0: मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूं, और वो
1: फाइनली
0: बोले
1: फिर आपके मदर फादर खुश
0: अग्री
1: हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए, बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक

अच्छा काम किया है। और यू नो तो ये बड़े बड़े ख्याल, मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में। फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो। तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, हाँ। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते हाँ। थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त हाँ, पूछी जाए हाँ, तो किस तरह के गाने होते थे, किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन,
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: दरवाजे पे लटक जाऊं।
1: आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूं कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूं। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल

0: नहीं करना
1: नहीं
0: है
1: करना
0: आपको,
1: है।
0: ये मैं आपको बता दूं,
1: हाँ,
0: क्योंकि ये बहुत खतरनाक
1: खतरनाक
0: है।
1: चीज है,
0: मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की
1: जान।
0: जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए
1: मत
0: और
1: कीजिए।
0: कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे
1: एब्सोल्युट
0: बढ़ते
1: नहीं,
0: हैं।
1: सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हंसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।
2: मैं

0: गया।
1: ये गीत तो हमने सुन लिया,
2: हाँ,
1: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
2: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
1: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
2: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35-35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, टिकटिक क्या है, तब तक तो मुझे कोई थे ही नहीं, मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग
1: करेक्ट.
0: क्लासेस के
1: हाँ
0: अलावा
1: हाँ
0: फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी ये इच्छा तो रही होगी
1: करेक्ट.
0: कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं, आज भी है ना।
1: शुक्रिया.
0: तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है. मेरे ज़माने में मुझे कोई समझ नहीं थी, और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है, या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो. तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा.
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था और
0: अच्छा।
1: मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था. लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था. शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं,
0: वाह वाह।
1: उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था.
0: हाँ
1: उसके मेन किरदार, जो मेन मॉडल, जो मॉडलिंग, जो
0: हाँ
1: मेन कैरेक्टर है, वो मैं प्ले कर रहा था. तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ. लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी. और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपने परिस्थिति, आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था. और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा, और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा. तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं. तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है. जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता. अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है. तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ, और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का. लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था, और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा. मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे. तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह. तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया. किसी की गलती नहीं है.
0: फिर
1: मैं
0: आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे
1: कैसे
0: मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
1: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है. मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया. और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं, और फिर 18 या 19 साल में मैं कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है. यू नो स्कूल, कॉलेज, फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है. तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं. तो वो डर जाते थे. मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है. तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया. और फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था. वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता, जो आमिर की पहली बीवी थी, वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की. तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए.
0: वो जो अंग्रेज लड़की डांस
1: अंग्रेज
0: करती
1: लड़की
0: है
1: नाचती है,
0: वो वाला
1: माय
0: डांस
1: हार्ट इज, हाँ
0: सेक्शन?
1: वो वाला. हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए. मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया, और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था.
0: उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी
1: हाँ,
0: पहले इसको।
1: इसको
0: हाँ
1: तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी. वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए. मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना, और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में से। नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
0: का कहानी है।
1: कहानी है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
0: बताइए।
1: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे

0: कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूं, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल्स
0: स्टेज,
1: में
0: हाँ,
1: और
0: फिल्मों के लिए
1: कॉलेजेस
0: नहीं,
1: में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है,
0: अलग
1: उसके
0: होती है,
1: न्यूएंसेस अलग होते
0: एकदम
1: हैं,
0: अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं, वो
0: एब्सोल्युटली
1: तो आप जानते नहीं थे। फिर
0: एब्सोल्युटली
1: आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों
0: हाँ,
1: चीजों को जोड़ के
0: साथ में
1: बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत, आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है। ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है, आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू विल बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है,
1: ओहो
0: हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज कोरियोग्राफी में डाली। गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर, द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप 2 दिन के मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं, अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3रे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और
0: बड़े
1: इतनी बड़ी
0: कलाकार
1: कला, बड़ी फिल्म थी,
0: को
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर
0: हाँ
1: की और आशुतोष की भी, और
0: करेक्ट।
1: फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म
1: हाँ,
0: फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया
1: वो
0: था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप।

136.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ सेवा एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई केंद्र के कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज शाम।

श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद पूरी है कि आप खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और अपनों के साथ होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम आज शाम में बात कर लेते हैं उन शामों की जिनका दौर कुछ ख़त्म सा होता लगता है। जी श्रोताओं, ऐसी शामें जब हम देखते थे अपने मोहल्ले की दुकान पर लोगों की भीड़, शाम होते ही किराने की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। कोई चीनी लेने आता था, कोई चाय पत्ती, कोई दूध, तो कोई बस हाल चाल पूछने कुछ देर के लिए रुक जाता था। दुकान के बाहर खड़े होकर लोग मोहल्ले की बातें करते थे, बच्चों की पढ़ाई पर बात होती थी, किस तरह त्यौहार मनाएं वो बात होती थी, रिश्तों में अपनापन बढ़ता था। श्रोताओं, वो समय था जब दुकान तक जाते जाते रास्ते में कई परिचित चेहरे मिल जाते थे और दो चार लोगों से तो दुकान पर पहुंचने तक ही सलाम दुआ हो जाती थी। कई छोटी बड़ी बातें, मोहल्ले की दुकानें समाज का एक छोटा सा चौपाल हुआ करती थी। वहां सिर्फ सामान नहीं बिकता था बल्कि खबरें, हंसी मजाक, सलाह, रिश्तों की गर्माहट भी मिलती थी। दुकान पर बाहर रखी बेंच पर मोहल्ले के बुजुर्ग लोग देश दुनिया की बातें करते थे, युवा अपने सपनों की योजनाएं बनाते थे, बच्चे तो टॉफी और बिस्कुट खरीद कर अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हो जाया करते थे। श्रोताओं, जहां दुकानदार भी केवल दुकानदार नहीं होते थे, वे पूरे मोहल्ले के परिचित होते थे, शुभचिंतक होते थे, उसे हर परिवार की पसंद जरूरत का पता होता था। कई बार पैसे कम पड़ जाएं तो उधार भी मिल जाता था,

क्योंकि वहाँ लेन देन से ज़्यादा विश्वास का रिश्ता होता था। पर आज ऐसा नहीं है, और उन दुकानदारों को हम हर वो दुकानदार भी हर ग्राहक को नाम से जानते थे। उन्हें पता होता था कि किस घर में कौन सी चाय पसंद की जाती है, किस घर में कौन सा बच्चा किस टॉफी का शौकीन है, और किस परिवार के महीने के अंत में उधार की ज़रूरत पड़ सकती है। उस समय बिजनेस यानी व्यापार में केवल लाभ नहीं बल्कि विश्वास भी शामिल होता था। मोहल्ले की दुकानों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहाँ इंसानियत का रिश्ता जीवित रहता था। और ये भी आपको याद होगा कि अगर कोई बुज़ुर्ग दुकान तक नहीं पहुँच सकता था तो दुकानदार स्वयं सामान घर तक पहुँचा दिया करते थे। अगर किसी के पास पैसे कम होते थे तो वो कह देते थे, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। कुछ ऐसा ही तो ज़माना था। वो मोहल्ले की दुकानें अब भी हैं मगर पहले जैसी रौनक नहीं। सामान आज भी मिलता है मगर रिश्तों में वो गर्माहट नहीं। कहीं ना कहीं आजकल के ज़माने में दिलों के बीच फासले बढ़ गए। वो पुराने दिन, वो बातें, वो अपनापन आज भी याद आता है। वो मोहल्ले की छोटी सी दुकान, वो लोगों का हंसता हुआ जहान, वो चीनी लेने आते थे बस मिलने ही चले आते थे, दुकानों पर किस्से सजते थे, बातों के मेले लगते थे, हर चेहरा अपना लगता था, हर रिश्ता सच्चा लगता था। पर आज हम मोबाइल से सब कुछ घर बैठे मंगवाते हैं। सुविधाएं तो बढ़ गईं पर दिलों की दूरी बढ़ गई। काश वो दिन, वो बचपन के दिन कोई हमें लौटा दे।

श्रोताओ, आज हम याद कर रहे हैं उन दिनों को जहां रिश्तों में अपनाइयत थी। वो दुकानें जहां शाम होती थी तो अपने बड़े बुजुर्गों का एक चौपाल सी बन जाती थी, लेकिन आज तो समय बदल गया है। लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जिन्होंने दुकानों की जगह ले ली, घर बैठे मोबाइल से सामान मंगवा लेते हैं। कुछ ही मिनटों में ऑर्डर और सामान घर पहुंच जाता है। सुविधाएं तो बड़ी, पर कहीं ना कहीं वो अपनापन, वो बातचीत कम हो गई। अब ना दुकान पर मिलने का बहाना है, ना हालचाल पूछने का समय। लोग पहले से ज़्यादा जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। वो पुराने दिन जब मोहल्ले की दुकान पर खड़े होकर हंसी मजाक होता था, जब दुकानदार बच्चों को टॉफ़ी दे देते थे, जब उधार की छोटी सी डायरी में रिश्तों का भरोसा लिखा जाता था, आज सिर्फ यादों में रह गए हैं। मोहल्ले की दुकानों में बहुत बदलाव आ गया है। अब लोग घर बैठे मोबाइल की स्क्रीन से सामान चुनते हैं, कुछ ही समय में डिलीवरी दरवाजे तक आ जाती है। ये सुविधा का युग तो है श्रोताओं, समय बचता है, विकल्प अधिक मिलते हैं और खरीदारी आसान हो गई है। लेकिन सुविधा की कीमत भी चुकानी पड़ती है, वह कीमत है मानवीय रिश्तों की। अब किराने की दुकान पर जाकर किसी से मुलाकात ना होती, ना दुकानदारों से बातें होती, ना पड़ोसियों से हालचाल पूछते हैं। धीरे धीरे बातचीत कम हो गई है, लोग अपने अपने घरों में सीमित हो गए हैं। आज हर कोई ऑनलाइन तो जुड़ा है, पर भावनात्मक रूप से क्या हम जुड़े हुए हैं? वो दिन याद आते हैं जब शाम के समय हम बाहर खड़े होकर देखते थे कि हमारे बुजुर्ग दुकानों पे खड़े हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बच्चों की शरारतों पे बातें करते हैं। किसी के घर में खुशी आती है तो पूरा मोहल्ला खुश हो जाता है, और किसी में घर में दुख होता है तो सब साथ खड़े दिखाई देते हैं। आज सामान पहले से अधिक आसानी से मिल जाता है, लेकिन वे अपनापन, वे मानवीय स्पर्श कहीं पीछे छूटता जा रहा है। कई बार लगता है कि हमने सुविधा तो पा ली, लेकिन सामाजिक जीवन को खो दिया, जो हमारी पहचान था। मोहल्ले की दुकानें केवल दुकानें नहीं, रिश्तों की पाठशाला थी। जहाँ कोई चाचा था तो कोई भाई, वहाँ लोगों को जोड़ने की ताकत थी। आज भी जब किसी पुराने किराने की दुकान से सामान लेते हैं, गुजरते हैं, हम बड़े होने के बाद, तो ऐसा लगता है कि बीते दिनों की आवाज़ें अब भी वहीं गूंज रही हैं। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातचीत, दुकानदारों की पुकार और लोगों के बीच का अपनापन। समय बदल रहा है, तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उन पुराने दिनों की यादें हमेशा दिल के किसी कोने में जीवित रहेंगी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त आपसे विदा लेने का हो गया है। आपसे बस चलते चलते यही कहेंगे कि वो दिन फिर कहाँ से लाएंगे जब सब मिलकर मुस्कुराएंगे। दुकानों पर बैठकर घंटों करते थे बातचीत, ना कोई जल्दी ना कोई बहाना, बस अपनों के संग वक्त ही तो बिताना था। अब सब अपने घरों में कैद हैं, मोबाइल के संग व्यस्त हैं। सामान तो हर दिन आ जाता है मगर इंसान से कम ही मिल पाते हैं। फिलहाल कार्यक्रम आज शाम समाप्त करने की अर्शी मसूद को इस वादे के साथ इजाज़त दीजिए कि आप खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए रहेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज शाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी भारती,
1: और साथ हूँ मैं आपकी रेडियो मेजबान तरुणा जोगेश।
0: आशा करते हैं चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए और दिल में एक नई उमंग आप सभी सुन रहे होंगे हमारा आज का कार्यक्रम।
1: तो चलिए, हमेशा की तरह अब करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत आज के सवाल के साथ। तो साथियों, हमारा आज का सवाल है, विश्व योगासन चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर यानी मास्कॉट क्या है?
0: दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर यानी मास्कॉट क्या है?
1: और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज अपलोड किए गए सवाल के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने जवाब। सवाल का सही जवाब और सही जवाब देने वाले अपने सभी श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में।
0: तो साथियों, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि आज है हमारा स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड, जिसमें हम फोन कॉल के जरिए जुड़कर आपसे करेंगे बहुत सारी बातें, और आज भी हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
1: तो साथियों, नोट कर लीजिए हमारा फोन नंबर 0595-2324-326। एक बार फिर से सुन लीजिए, 0595-2324-326।
0: अरे तरुणा, आज सुबह मैं अपने घर के बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, तभी मेरी नज़र एक छोटी सी तितली और मधुमक्खी पर पड़ी।
1: अच्छा, फिर क्या?
0: फिर मैंने सोचा, हम अक्सर शेर, हाथी या मोर जैसे बड़े जीवों की बात करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कीट भी तो प्रकृति का कितना अहम हिस्सा हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने भारती, और शायद यही कारण है कि हर साल 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है।
0: लेकिन तरुणा, कीटों के लिए भी कोई दिवस मनाया जाता है?
1: हाँ बिल्कुल, और इसके पीछे बहुत खास वजह भी है। पता है दोस्तों, विश्व कीट दिवस का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि कीट सिर्फ हमारे आसपास मौजूद छोटे जीव नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की रीढ़ हैं।
0: मतलब मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, चींटियाँ और दूसरे कीट।
1: हाँ बिल्कुल, और उदाहरण के लिए मधुमक्खियाँ और तितलियाँ परागण यानी पॉलिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर ये ना हो तो फलों, सब्जियों और फूलों की कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।
0: वह यानी हमारी थाली तक पहुंचने वाले भोजन में भी इनका योगदान है।
1: बिल्कुल ठीक कहा भारती, वैज्ञानिकों का मानना तो ये है कि दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलों का उत्पादन किसी न किसी रूप में परागण यानी पॉलिनेशन करने वाले कीटों पर निर्भर करता है।
0: अरे तरुणा, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई कीट मिट्टी को उपजाऊ बनाने, जैविक पदार्थों को विघटित करने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं।
0: लेकिन आजकल तो हम सुनते हैं कि कीटों की कई प्रजातियां तेजी से कम हो रही हैं।
1: हाँ, और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। यही वजह है कि विश्व कीट दिवस हमें इनके संरक्षण का संदेश भी देता है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी तितली को उड़ते हुए या किसी मधुमक्खी को फूल के आसपास मंडराते हुए देखें, तो उन्हें सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा ना समझें,
1: क्योंकि प्रकृति की इस विशाल व्यवस्था में उनका योगदान शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है।
0: विश्व कीट दिवस हमें सिखाता है कि प्रकृति का हर जीव महत्वपूर्ण है,
1: और जब हम प्रकृति के इन छोटे छोटे साथियों की रक्षा करेंगे, तभी हम एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण का निर्माण कर पाएंगे।
0: विश्व कीट दिवस पर आइए प्रकृति और उसके इन नन्हे रक्षकों के प्रति सम्मान और संरक्षण का संकल्प लें।
1: तो साथियों, इसी संकल्प के साथ अब बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे की ओर, लेकिन उससे पहले अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास।
2: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर आप जुड़ गए हैं अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर, और जानते हैं आज का दिन क्यों है इतना खास।
4: कुछ ख्वाबों की बात,
5: कुछ अपनों का साथ,
4: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
5: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
4: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
5: वाकई कुछ खास है आज,
4: कुछ खास है आज।
6: साथियों, किसी भी नेता की सबसे बड़ी पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि जनता के दिलों में उसके लिए बसे सम्मान से होती है। और जब किसी नेता के नाम के आगे ही लोकप्रिय जुड़ा हो, तो समझ जाइए कि उसने लोगों के जीवन को कितनी गहराई से छुआ होगा।
3: दोस्तों, कुछ खास है आज में, आज हम स्मरण कर रहे हैं असम के प्रथम मुख्यमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ वरदलोई जी की। 6 जून 1890 को जन्मे गोपीनाथ वरदलोई जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सेनानी रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनका योगदान केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं था।
6: स्वतंत्रता के बाद उन्होंने असम की सांस्कृतिक पहचान, उसकी एकता और उसके विकास के लिए अथक प्रयास किए। कहा जाता है कि जब देश विभाजन के कठिन दौर से गुजर रहा था, तब उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने असम के हितों और उसकी विशिष्ट पहचान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
3: और दोस्तों, यही कारण है कि आज भी असम की जनता उन्हें सम्मान और स्नेह के साथ याद करती है।
6: जनसेवा, सादगी और राष्ट्रहित, ये तीन शब्द उनके व्यक्तित्व की पहचान थी।
3: वर्ष 1999 में देश में उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें मरण उपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया। दोस्तों, कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं एक ऐसे गीतकार को याद करते हुए जिनके गीत आज भी लोग बहुत प्यार से गुनगुनाते हैं।
6: साथियों, कुछ लोग गीत लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे गीत लिखते हैं जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजते रहते हैं। जब भी हम हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की बात करते हैं, तो एक नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, और वो नाम है राजेंद्र कृष्ण जी का।
3: 6 जून 1919 को जन्मे राजेंद्र कृष्ण जी हिंदी सिनेमा जगत के उन महान गीतकारों में से थे जिनकी लेखनी ने प्रेम, बिरहा, खुशी और जीवन के हर रंग को शब्द दिए।
6: उन्होंने हजारों गीतों की रचना की और अपने सरल लेकिन भावपूर्ण शब्दों से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई।
3: उनके लिखे गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने दशकों पहले थे।
6: जैसे इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये जिंदगी उसी की, जैसे कालजयी गीत आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर हैं।
3: राजेंद्र कृष्ण जी की खासियत यह थी कि उनके गीतों में साहित्य की गहराई थी और आम जनता की भावनाएं भी थी।
6: उनके शब्द सीधे दिल से निकलते और सीधे दिल तक पहुंचते। साथियों, कलम से इतिहास भी लिखा जाता है और दिलों की कहानी भी।
3: राजेंद्र कृष्ण जी ने अपनी कलम से दोनों काम बखूबी किए। उनकी जयंती पर हम इस महान गीतकार को सादर नमन करते हैं और उनके अमर गीतों को प्रणाम करते हैं।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: चलो तरुणा, फिर अब शुरू करें हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट।
3: हाँ हाँ भारती, अभी करते हैं, पर पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया या नहीं।
2: रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस चीज का?
3: अरे तुम भूल गई क्या भारती, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी रामपुर लेकर आ रहा है हम सबके लिए वॉकाथॉन 2026।
2: और साथियों, आप सब भी इस वॉकाथॉन का हिस्सा बन सकते हैं। जाइए हमारे फेसबुक इंस्टा आकाशवाणी रामपुर पर,
3: वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और बन सकते हैं हमारे आकाशवाणी वॉकाथॉन का हिस्सा।
2: अच्छा तरुणा, तो आओ फिर अपने श्रोताओं से भी इस कॉल के माध्यम से जानते हैं कि उनकी इस वॉकाथॉन के बारे में क्या कहना है।
3: हाँ बिल्कुल भारती, चलो सुनते हैं अपने पहले श्रोता साथी को। हेलो फ्रेंड्स।
4: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
3: नमस्कार, कौन से श्रोता साथी से हमारी बात हो रही है?
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
3: अच्छा राकेश जी, कैसे हैं आप?
4: जी बहुत बढ़िया है
3: जी। तो शिमला में कैसा मौसम हो रहा है इस समय?
4: शिमला में अभी मौसम बारिश हो रही थी लगातार, और आज है मौसम सुहाना है, बिल्कुल साफ है।
3: अच्छा
4: जी जी,
3: तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी रामपुर आयोजित कर रहा है एक वॉकाथॉन, तो आपके क्या कहना है इस पर?
4: जी जी, ये जो वॉकाथॉन है ये बहुत अच्छा है। इसमें जो है प्राणी जो है ताजा यादें का जो है दिखाया जाएगा कि पहले का जो आकाशवाणी और अब का आकाशवाणी कैसा था। लेकिन जो पहले जो आकाशवाणी होता था उसमें जो आप जब गाने प्ले करते थे वो टेप कैसेट के माध्यम से करते थे, लेकिन आज जो आकाशवाणी है तो इसमें तो थोड़ा बदलाव हो गया है कि जैसे आप लोगों के लिए भी अच्छा हो गया और हमारे लिए भी अच्छा हो गया सुनने के लिए, क्योंकि हम किसी भी केंद्र को सुन सकते हैं।

0: कर लिया
1: पूरे कर
0: आकाशवाणी
1: लिए,
0: के।
1: लेकिन आकाशवाणी का जो इतिहास है शुरू से लेकर, और इसमें ये भी कहा गया कि जब आकाशवाणी पहले रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस हुआ करता था, के माध्यम से जो अगर जो रेडियो सुनते थे उनके पास अगर लाइसेंस नहीं था तो फिर वो क्या बोलते हैं जेल में उनको डाला जाता था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो तब लेकर पूरे भारत जो है आकाशवाणी का जो है नाम दिया गया क्या बोलते हैं नब्बे वर्ष का, क्योंकि पहले
0: बिल्कुल
1: आप रेडियो सुनना पहले अलाउड नहीं था हम आम आदमी के लिए, लेकिन आज जो है जन जन तक जो है आकाशवाणी पहुंच रहा है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री ने जब 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 3 अक्टूबर को मन की बात की शुरुआत आकाशवाणी से की थी, क्योंकि
0: जी
1: जन जन
0: जी
1: तक जो है आकाशवाणी पहुंच रहा है।
0: जी राकेश जी, तो
1: जी,
0: आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे गाना सुनना है तुमसे मिलना बातें करना, और फिल्म का नाम है तेरे नाम। जी
0: अच्छा ठीक है,
1: जी
0: तो आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई, और आपको इतनी सारी जानकारी थी आकाशवाणी के बारे में ये जानकर तो हमें और भी खुशी हुई।
1: जी जी क्योंकि मैं आकाशवाणी बचपन से सुनता था, जब
0: जी
1: जब
0: जी
1: से ट्रांजिशन हुआ करता था, लेकिन पहले तो हम आप आकाशवाणी शिमला तक सीमित थे। जब से ये न्यूज़ 1 ARF को चलाया गया है तब से हम किसी भी केंद्र के साथ साथ आप भी आकाशवाणी रामपुर सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए धन्यवाद आपका, आपने हेलो फ्रेंड्स में कॉल लगाया, और इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रमों से। अब चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी धन्यवाद, बिल्कुल सुनिए, ओके।

श्रोता साथियों, जब तक आपकी कॉल हम तक पहुंचती है, अगली कॉल लेने से पहले चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। और साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जितनी देर तक हम ये गीत सुनते हैं, उतने समय में आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी वॉकाथॉन 2026 के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप प्लीज़ फिल कर लें, क्योंकि अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो हमारे और आपके मिलने का मौका जो है वो हम गवा बैठेंगे शायद। और अगर किसी वजह से नहीं भी हो पाता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल, तो आप 8 तारीख को यानी जिस दिन

वॉकथॉन है, उस दिन आप आकाशवाणी की बिल्डिंग में आकर वॉक से पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि वॉक पर आने से पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकें, ताकि हम अपनी वॉक में कोई देरी ना करें। चलिए आइए, आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते सर, हमारे कौन से श्रोता साथी हमसे जुड़े हैं?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, कानपुर से।
0: जी सतीश जी, स्वागत है आपका युववाणी कार्यक्रम में। तो बताइए कैसे
1: धन्यवाद।
0: हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। आपका प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगता है प्रोग्राम और सुनने में, और सब प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। और आज एक गाना प्ले सुनवा दीजिए। मूवी का नाम है राजा हिंदुस्तानी गाना, मूवी नाम है राजा हिंदुस्तानी गाना, और कितना प्यार से जैसे अपने बनाया। आज विषय क्या है, टॉपिक क्या है, किस विषय पे बात करनी चाहिए?
0: तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा विषय है वॉकाथॉन 2026, जो 8 तारीख को आयोजित हो रहा है, जहां से आकाशवाणी से चलकर और अंबेडकर पार्क तक हमारी एक वॉकाथॉन चलेगी, जहां सभी लोग हमसे साथ जुड़ेंगे।
1: अच्छा मैडम जी, मैं इतना देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, हम इतनी जानते नहीं आपके, आप बौकाटे इतना मुझे जानकारी है नहीं, तो हिंदी में बता दो, समझाओ तो मैं समझ में आएगी।
0: एक पैदल यात्रा होगी जिसमें सभी आकाशवाणी के सदस्य एक साथ होकर एक यात्रा को करेंगे, जो सुबह
1: अच्छा
0: साढ़े
1: अच्छा
0: पांच बजे से आकाशवाणी से शुरू होकर और अंबेडकर पार्क तक जाएगी, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में ये।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो आकाशवाणी 90 वर्ष हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। 90 वर्ष से ऐसे चलता रहे आकाशवाणी, बहुत अच्छा
0: जी
1: लगता है। लेकिन जहाँ मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, तो आपके रामपुर से पैदल यात्रा तो मैं कैसे कर पाऊँगा, तो आप ही लोग कर पाऊँगे, लेकिन जहाँ मैं तो इतनी दूर रहता हूँ।
0: जी जी
1: तो गाना सुनवा दीजिए, आपको कहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ, जितने तमाम सुनने वाले सबको कहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी बोलिए।
1: हाँ, जितने तमाम सुनने वाले सबको कहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ, आपके लिए कहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो अपना सेवन करना चाहिए, क्यों बढ़िया तरह से रहना चाहिए। ये जैसे पक्षी अच्छी हैं तो उनको पानी रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पानी
0: जी
1: देना
0: जी
1: चाहिए।
0: आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी, धन्यवाद।

0: तो आइए साथियों, सुनते हैं अपने अगले श्रोता साथी को। हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो फ्रेंड,
0: जी, कौन से श्रोता साथी से हमारी बात हो रही है?
1: मैडम मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: जी अमरजीत जी, कैसे हैं आप?
1: मैं काफी अच्छा हूँ मैडम, आप बताइए आप लोग कैसे हैं और रामपुर परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं और आकाशवाणी रामपुर के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा अंदाज।
0: ठीक है, तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते। हमारे कौन से श्रोता साथी हमसे जुड़े हैं?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम जी, तो कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: धन्यवाद। तो आप जैसा जानते हैं कि हमारे आकाशवाणी में वॉकाथोन 2026 आयोजित किया गया है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है?
1: जी मैं ये बताना चाहूँगा, जब आकाशवाणी सुनते हैं सभी श्रोता और जितनी अच्छी अच्छी जानकारी आकाशवाणी से मिलती है, तो आकाशवाणी का ऐसा परिवार बन चुका है सभी श्रोताओं का कि मतलब एक दूसरे से जान पहचान भी काफी श्रोता की बढ़ चुकी है। और आकाशवाणी का 90 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, इसमें सभी श्रोताओं का साथ है और आकाशवाणी का भी मतलब इतना भरपूर योगदान रहा कि श्रोताओं को मतलब इतना प्रेम मिलता रहा और आकाशवाणी से जुड़ते रहे श्रोता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और
0: तो
1: एक बात और ये भी है, जैसे कि अभी मोबाइल ऐप से कार्यक्रम आने लगे हैं ना आकाशवाणी के, तो ज्यादा से ज्यादा श्रोता बढ़ चुके हैं और हर राज्य के श्रोता हर आकाशवाणी को सुनने लगे हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: क्रिश फिल्म का है कोई तुमसा नहीं, और ये गाना आकाशवाणी के लिए रहेगा क्योंकि आकाशवाणी जैसा कोई नहीं है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: साथियों, अब वक्त है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का। चलिए जानते हैं आज के सवाल का सही जवाब, साथ ही जानते हैं कि हमारे किन किन श्रोता साथियों ने आज सही जवाब देकर बाजी मारी है। और हमारा आज का सवाल था, विश्व योगासन चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर मास्कोट क्या है, जिसका सही जवाब था वीर द लॉयन। और सही जवाब देने वाले सभी श्रोता साथी हैं आप सभी
1: अजीत कसाना, सुरेश खुराना, सुदर्शन शाह, धर्मेंद्र चीपा, जॉन डिकास्ट्रो, हीरामणि वर्मा, नंद कुमार ठाकुर, दिग्दर्शन गौर, दिनेश वर्मा, फरियाद हुसैन अंसारी, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, मोहम्मद रफीक पवार, रियासत हुसैन सिद्दीकी, राम कुमार रिवार, आकाश रस्तोगी, लालगिरी गोस्वामी, विनोद मुनत, विजय सुरलकर, शाहजी भोटके, देवशंकर तामुरिया, सुनील पाठक, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, एम अफजल ताज, सिद्धार्थ कोंडाने, संजय ढींगिया, दीपेश वर्मा, राधेश्याम पांडे, सत्येंद्र चंसौलिया, राष्ट्रपाल गजभैये, गजानन येले, इरशाद अहमद, राजू मिगलानी, एस के अलबक्स, नवी हसन अब्बासी, रवि रस्तोगी, मसरूर हसन, बी एल धाकड़, बलवंत कुमार वर्मा, मोहम्मद सैयद अब्बासी, मोहम्मद आमिर अंसारी, जगदीश धाकड़, अरविंद कुमार, विठल सुरोशे, कैलाश फूलमाली, पुंजाजी नावकर, सुरेश जायसवाल, रामशरण, हाजी गफ्फार खान, मोहम्मद फरमान, अनोखे लाल, एम खलील कुरेशी, धर्मवीर कश्यप, लाल मोहम्मद अंसारी, राजवीर सिंह यादव, धीरज भाई रबारी, रवि कुमार राहुल, शाहरून नूर अंसारी, फागुराम यादव, मोहम्मद यासीन अंजान, जाकिर मंसूरी, शकील अहमद इदरीसी, भाई रफत साहब, प्रवीण चौहान, नितेश कुमार, गंगा सिंह रावत, रियासत हुसैन सिद्दीकी, राशिद हुसैन अंसारी और अमरजीत जी। तो साथियों, ये थे उन सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने दिया है आज के सवाल का सही जवाब।
0: दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या 244901।
0: आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com।
1: इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई आवाज और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी भारती
1: और तरुणा जोगेश को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान

0: के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए सूचना खोए हुए व्यक्ति के संबंध में। लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ संदेश।
2: घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
1: शिशुपाल पुत्र विधाराम ग्राम सुनवर सराय थाना से हमें सूचित करते हैं कि विद्याराम पुत्र रामप्रसाद सुनवर सराय थाना, जिनकी आयु 75 वर्ष है, कद 4 फुट, रंग गोरा है, 28/7/2025 से गुमशुदा है। इन्होंने सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा है। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। शिशुपाल पुत्र विधाराम ग्राम सुनवर सराय थाना धनारी जनपद संभल। सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर इस प्रकार है 8368730206। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। प्रभारी थाना निरीक्षक हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल से हमें सूचित करते हैं कि श्री हरि सिंह पुत्र कल्लू निवासी बताते हैं कि सोनी पत्नी हरि सिंह निवासी रहटोल थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल, जिनकी आयु करीब 21 वर्ष है, कद 4 फीट 6 इंच, रंग सांवला है, 9/5/2026 से गुमशुदा हैं। इन्होंने हरे रंग का सूट और शलवार चप्पल पहन रखे हैं। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। श्री हरि सिंह पुत्र कल्लू निवासी रहटोल थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल। सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर इस प्रकार है 9350869478। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9350869478।

प्रभारी थाना निरीक्षक असमोली जनपद संभल से हमें सूचित करते हैं कि शाइस्ता उर्फ नाजिश, पत्नी मोहम्मद रफीक वकार, जिनकी आयु 30 वर्ष है, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा है, 1/5/2026 से गुमशुदा हैं। इन्होंने सुरमई रंग का सूट और शलवार, पैरों में काली जूते पहन रखे हैं। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। शफीक उर्फ वकार पुत्र रफीक, निवासी ओबरी, थाना असमोली, जनपद संभल। सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर इस प्रकार है 9105257732। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश,
1: हमारा भारत देश। वंदे भारत।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म कहो ना प्यार है में।

0: कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति को फिल्म कुछ ना कहो में, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ संदेश।
1: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान साथियों को आपके भैया दीपक
2: और हेमपाल भैया की
1: राम राम।
2: और सुनाओ दीपक भैया, कैसे हो?
1: भैया हम तो ठीक हैं, और जो हमारे किसान साथी हैं ना, वे जो हमारी बात को सुनना है तो वे लगती है उम्मीद है कि वे ठीक ठाक होंगे।
2: बिल्कुल भैया, देखो ठीक ठाक होना भी चाहिए, और थोड़ी बहुत तो हाड़ी बीमारी लगी रहती है।
1: हाँ।
2: और जब हम सब लोग हमारे किसान साथी ठीक ठाक ना होंगे तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे।
1: सही बात है। इस समय देखो भैया, गर्मी को मौसम चल रहा हो, बहुत तेज लू चल रही है, बामे जुए खासतौर पर अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें।
2: बिल्कुल भैया, देखो कभी कभी का होता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी ना आए या हम किसी से संक्रमित ना भए, लेकिन कभी कभी का होता है कुछ छोटी छोटी गलती अगर हम कर लें तो बात से हम बीमार पड़ जाते हैं।
1: हाँ।
2: तो इसलिए जैसे अब की बात आपने की गर्मी पड़ रही, तो इस समय गर्मी पड़ रही तो किसान साथी जैसे आप उपाय बचन के करते रहें और सुरक्षित रहें, खेतन पे काम भी आप उसी तरह से करते रहें। जग अलावा अब गर्मी के बाद मौसम चौमासे को आ रहा हुआ।
1: देखो चौमासे को आ रहा, देखो भैया अब गर्मी की बात करी तो जा समय पे जो हमारी फसल हों या हम हों, देखो पानी की आवश्यकता बहुत होती है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और देखो हम उनको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, और जो जानवर हैं हमारे उनको नहलाना हुआ है, उनको पानी पिलाना हुआ है, और जो फसलन को पानी समय पर देना हुआ है वो जरूर करें।
2: और भैया देखो जैसे हमने अभी कही ना चौमासा आ रहा है।
1: हाँ।
2: और भैया देखो जब चौमासा आ जाता है तो चौमासे में अनेक समस्याएं ही जाती हैं, क्योंकि कई तरीका की बीमारी पैदा ही जाती है, क्योंकि चौमासे में जब बारिश होती है ना तो वहाँ मक्खी मच्छर बहुत पैदा ही जाता है।
1: हाँ।
2: और वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत तो नुकसान पहुँचाए थे, कभी कभी तो जो होता है कि अनेक तरीका के संक्रमक जो रोग हैं वे ही जाता है, वो डायरिया है और डेंगू है, चिकनगुनिया, ऐसे रोग जो मच्छर वगैरह के काटने से ही जाते हैं। तो आप इस बारिश के मौसम में भी आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, अपने बच्चन को भी ध्यान रखें। जाके अलावा ये देखो चौमासे में एक और बात बहुत परेशान करती है,
1: एक बात और ध्यान रखें भैया, जो पास पड़ोस की जो गंदगी होती है ना, पाँव की साफ सफाई अवश्य कर लें।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ।
2: जो तो हम आपको बताने जा ही रहे।
1: हाँ।
2: कि वो तो चौमासे में जो तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मक्खी मच्छर पैदा होते हैं वहां से।
1: देखो वहां में सांप है,
2: बिल्कुल,
1: बिच्छू है, बहुत चीजें बीमारी जानवर ऐसे होते हैं जिससे जो हमें हानिकारक हो सकता है।
2: कभी कभी कुछ घर के आसपास में जो कूड़ा करकट जमा रहता है, लकड़ियाँ पड़ियाँ या फिर घास उ जमी आई, तो वे आगे सफाई ना कर रहे हैं, तो साफ सफाई को ध्यान रखें। जाके अलावा किसान दीपक भैया देखो चौमासे में एक बात और ज़्यादा दुख देती है।
1: बाका चीज़ है भैया,
2: वैसे तो सभी मौसम में देती है लेकिन चौमासे में और ज़्यादा देती है, क्योंकि अगर किसी साथी को घर कच्चो है और म्यों वर्ष रो है, और पता तो चलिएगी कई दिन तक बूंदा बांदी ही रही है और लगातार झड़ ही गए, तो ऐसे झड़ में जब कच्चे घर होते हैं तो भी टपका निकलते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। तो भैया समय रहते भी अगर कच्चो मकान है तो अगर बिना जो है बाकू या तो पहले से मरम्मत कर लें, और ना तो हमारी सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही, प्रधानमंत्री आवास योजना।
2: बिल्कुल भैया, जो तो भैया बहुत ही अच्छी योजना है,
1: क्योंकि
2: हमारी सरकार ने सोची कि हमारे बहुत से किसान भैया बहन, हमारे शहर में भी हमारे बहुत से भैया बहन ऐसे हैं।
1: हाँ।
2: जो अपनी किसी वजह से तो पैसे इकट्ठो कर ना कर पाते हैं कि वो आवास बना सकें, इसलिए हमारी सरकार ने जब बात को देखते हुए एक बड़ी अच्छी योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के दोनों लोग बड़े आसानी से मकान बना सकते हैं।
1: जिनके भैया कच्चे मकान हैं और जिनके पास मकान होना है, उनके लिए जुए प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ ले सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बाकी ले जुए भैया नॉर्मल काम है, जैसे आधार कार्ड है और जैसे बैंक की पासबुक, इन चीज़ें की जरूरत पड़ती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया जैसे जो घर है ना आपको, बाकू एक फ़ोटो ले जाएं, जो कागज आपने बताए जे ले जाओ आप, और जो नज़दीक में जो कोई जो सीएससी सेंटर हों वहाँ, पहले तो अब उन पर जान की जरूरत ही ना है, हर गांव पंचायत घर में पंचायत सहायक बैठ गए, उनके पास जाओ और आप ऑनलाइन करा दो। और कभी कभी तो अभियान चलाए जाते हैं।
1: हाँ।
2: जो फार्म भरन के आप जब ऑनलाइन करा देंगे तो अधिकारी लोग आपको जाँच उच करना बंगे और पास कर देंगे, आपको उसको मिल जाएगा।
1: देखो भैया जब सत्यापन हो जाता है तो सीधी सी बात है, बाकी जो धनराशि होती है आवास बनान की वो हमारे बैंक खाते में आ जाती है।
2: बिल्कुल भैया,
1: और बात है जो हम अपना आवास बनवा सकते।
2: हाँ, लेकिन किसान साथी एक बात को आप ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है, बहुत से हमारे किसान साथी कहते हैं कि अरे हमने फार्म भरवाओ, हमारो पास ही ना है वो हमारा, तो हर साल जब चौमासे आते हैं तो मेहू में हमारे कपड़ा भीग जाते हैं और जो संदूक उंदूक घर में रखे हैं वे भीग जाते हैं, खटियाँ उटियाँ भीग जाती हैं। तो भैया क्या होता है वे इसलिए पास ना होते हैं कि जैसे आपकी घर की दीवारें हैं वे पक्की हैं, ईंटन की बनी हुई हैं और छत आपकी कच्ची है, तो आपको आवास ना मिले। सब दीवारें हैं और सब तरफ से अगर कच्चू है तभी आवास की श्रेणी के आप जो है पात्र होते हैं, तभी आपको आवास मिलाए।
1: देखो पंजीकरण के करण के बाद में जो है बाकू स्टेटस जरूर चेक करवाते रहे।
2: हाँ
1: देखो भैया ऐसा ना है कि हमने पंजीकरण करा दो फिर बैठ के घर
2: बैठ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखो ब्लॉक स्तर पर जाकर या जिला स्तर पर जाकर बात को अपनी कहना चाहिए कि जो समस्या है तभी लाभ मिल पावे।
2: और जितने जरूरी दस्तावेज हैं उनको सबको लगावो आप। तो अगर आप इस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो आपको जोर से जरूर आवास मिल जाए। और जो परेशानी हर साल आपको रहती है कि चौमासे में बैठन तक की जगह ना रहती है, तो जहाँ से आपको निजात मिल जाएगी और आराम से आप मकान में रह निकलो।
1: देखो जो किसान साथी हमारी बात को सुन रहे हैं तो अगर उनके कच्चे मकान हैं तो वे भैया बिल्कुल आलस ना करें, सीधे बिल्कुल जो है अपनी तहसील स्तर पर जाकर ब्लॉक में जो होते हैं वहाँ पर अपनी बात को रखें कि और वाको एक फ़ोटो ले जाए अपने मकान को कच्चे को और अपने दस्तावेज ले जाकर उनसे जो है पंजीकरण करा दें।
2: जाके अलावा भैया देखो जब चौमासे आ जाते हैं तो क्या होता है अपने लोग परेशानी हो जाती है, सब्जियों बहुत कम ही जाती हैं चौमासे मान के लिए, और जो हमारे पशु हैं ना उनके लिए चारे की बड़ी दिक्कत ही जाती है। और चौमासे में हमारे बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो चारे के लिए हरे चारे के लिए चारे के मक्का की खेती कर लेते हैं। तो मक्का की खेती के बारे में कि कैसे करें, किन किन बातों को ध्यान रखें, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए एक अपने किसान साथियों के लिए भेंटवार्ता सुनवाते हैं जिसको विषय है चारे के लिए मक्का की खेती। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर MS पाल और आपसे बातचीत करके जानकारी दिलवा रहे हैं श्री राजेंद्र भट्ट। साथियों हम आपको बता दें जो जानकारी हमें पंतनगर से प्राप्त भई, तो साथियों इसे आप सुनो और हम सुने।
3: किसान भाइयों जैसे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर MS पाल जी कृषि वैज्ञानिक पंतनगर विश्वविद्यालय से। सर आज का जो विषय है वो है कि बहुत से हमारे किसान भाई वर्षाकालीन मक्के की जो फसल है वो चारे के रूप में लेते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाई को बताइए कि मक्के को किस तरह से हमारे किसान भाई चारे के रूप में इसकी खेती कर सकते हैं।
4: बिल्कुल सही प्रश्न किया। मक्का एक ऐसी फसल है जिसको आप अच्छा चारे के रूप में ले सकते हैं। कुछ किसान भाइयों की ये भ्रांति है, ऐसा किसान भाई कहते हुए पाए गए हैं कि मक्के के चारा खिलाने से पशुओं में दूध की पैदावार या दूध की गुणवत्ता घट जाती है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, इसको आप हरे चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है किसान भाई हरा भुट्टा उगाते हैं, हरा भुट्टा लेने के बाद जो चारा बच जाता है उसको उपयोग में करते हैं। वो तो आप कर ही सकते हैं, हरा भुट्टा लिया आप कोई भी प्रजाति जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो उसको आप चारे के रूप में ले सकते हैं। नहीं तो कुछ प्रजातियां जैसे आपके अफ्रीकन टॉल J1006 प्रताप मक्का 6, एक हमारे यहाँ DFH निकलने वाली है।

0: से पहले आप लगा लें। जहां बिल्कुल सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां पर बरसात तुरंत आने के बाद खेत को तैयार करके उसको आप लगाएं। बोने से पहले गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट जरूर डाल लें तो इससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा बात आती है इसको बीज शोधन जरूर इसको करें। बीज शोधन के लिए थेराम आजकल इमिडा क्लोपिड भी आती है 4-5 ग्राम किलो बीज की दर से आप कर सकते हैं। थेराम बेबिस्टन ये पुराने हो गए, इनसे बीज का आप जरूर शोधन करें। यदि आप बाजार से ले रहे हैं तब तो शोधित बीज मिलेगा। यदि बाई चांस कभी आपके अड़ोस पड़ोस या आपके किसी दोस्त से मिल रहा है तो बीज शोधन जरूर कर लें। इसमें मुश्किल से आपका 10 रूपये का खर्चा आएगा। बीज को शोधन करें और इसका बीज 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगेगा, यानी कि 1 किलोग्राम बीज आपको प्रति नाली के हिसाब से आपको डालना होगा। और बोया कैसे जाएगा, सामान्यतः किसान भाई बीज को छिड़क के बोते हैं तो कभी कभी बीज घना पड़ जाता है, कभी कभी दूर दूर पड़ता है, कभी चिड़िया खा जाती हैं, तो कोशिश करें ये लाइन में बोएं। तो ज्यादा गहरा नहीं, 3 से 4 सेंटीमीटर लाइन बना के उसमें बीज की 32 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बनाए और उसके बाद ढक दें और उच्च नमी पर हो तो 3-4 दिन में आपकी मक्का जम जाएगी। तो इस तरह आप लोग बुआई करें। इसके बाद आप खरपतवार का विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि खरीफ का मौसम होता है, इसमें खरपतवार लगते हैं। वैसे तो आप पेंडीमेथिलीन आप यूज कर सकते हैं या एलाक्लोर मिल जाए इसका भी आप यूज कर सकते हैं। निराई गुड़ाई आप कर दें 15-20 दिन बाद जमने के बाद तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद चूंकि सिंगल कटान वाली प्रजाति होती है, मक्का केवल एक बार कटती है, तो इसके लिए आप जब पहली या तो बरसात हो या जो सिंचित क्षेत्र है जिनमें सिंचाई आप करते हैं 20-25 दिन बाद घुटने तक की ऊंचाई पर फसल आ जाएगी, उस समय आप लोग जरूर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। और आजकल एक दो विशेष रूप से ये देखा गया है बहुत ज्यादा कीड़े लगते हैं मक्के में, है ना, तो इसमें आप जो भी आपका केमिकल हो क्लोरपाइरीफॉस है या कोराजिन है इसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं जिससे ये आपका सभी तरह के कीड़े मर जाएंगे। और ध्यान दें दवा डालने के कम से कम 20 दिन पहले कटान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फसलों को नुकसान होगा। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है।
1: कितने दिन बाद कटान करें दवा डालने के बाद, अगर चारे के लिए
0: कम से कम 20-25 दिन बाद कटान करें, ऐसी कभी समस्या आती है नहीं तो भी चारे वाली फसलों में किसी भी केमिकल स्प्रे या उसको नहीं हम रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए विशेष रूप से बता रहा हूँ किसान भाई, चूंकि आर्मी फॉल वॉर्म लग रहा है आजकल मक्के में, तो आप लोग कोराजिन यूज कर सकते हैं। कोराजिन एक ऐसी दवा है जिससे इसका कंट्रोल होता है, और नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लोरपाइरीफॉस भी बहुत कंट्रोल करता है। तो ये ऐसी बात आती है तो आप लोग ध्यान दें कि 20-25 दिन अंतर के बाद इसकी आप कटाई करें तो इससे आपकी सभी तरह की कीड़े खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद आप सिंचाई जरूर लगाएं। या चात का मौसम है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास सिंचित जमीन है तो 20-25 दिन के अंतर पर जरूर सिंचाई करें। कटान की बात आती है, कटान में अगेन मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि किसान भाई कटान करते समय विशेष ध्यान दें कि हमारी फसल की बढ़वार अच्छी हो गई है। तो जब ऊपर वाली बाल, मक्के में दो तरह के बाल आते हैं, एक तो भुट्टे वाली बाल आती है, एक ऊपर वाली बाल आती है, जो ऊपर वाली बाल निकलना शुरू हो जाए तब कटान करना चाहिए। ये लगभग आपकी 45 दिन के बाद आती है बोने के। वैरायटी के ऊपर भी निर्भर करता है, लोकल प्रजाति है यदि आपकी अफ्रीकन डॉलर है तब तो आपकी 50-55 दिन बाद आएगी, तो उस समय कटान करें और उस समय मैक्सिमम आपको फायदा होगा। कभी आजकल कई तरह की भुट्टी ले सकते हैं, जैसे आप हरे भुट्टे के रूप में मक्का लेते हैं। बेबी कॉर्न आजकल एक नई नई प्रजातियां आ गई हैं, बेबी कॉर्न जिसमें आप बेबी कॉर्न लेते हैं, किसान भाइयों ने सुना होगा, जो कि भुट्टा आता है, भुट्टा जैसे दिखाई देता है, भुट्टे का जैसे फूल आता है जिसको मंजरी बोलते हैं सामान्यतः, उसके आप तीसरे दिन आज दिखे आपके मंजरी या भुट्टा तो तीसरे दिन कटान कर लेना चाहिए। उसपे बेबी मक्का बोलते हैं जिसको बच्चा मक्का कहते हैं, तो ये आप उंगली के मोटे आकार की भुट्टा मिलेगी, इसको आप सब्जी के रूप में बहुत इसकी उपयोगिता है। बड़े बड़े मल्टी स्टार होटल इसको खरीदते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं, इसका खीर बनाते हैं, इसको रायता बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, बहुत महंगी भी जाती है। किसान भाई इसका ले सकते हैं तो ये आपका लगभग 40-45 दिन बाद आपके आ जाती है। इस समय बिल्कुल हरा चारा, अच्छी क्वालिटी का हरा चारा मिलता है, उस चारे को ले सकते हैं। कुछ आजकल स्वीट कॉर्न मक्का आती है, आप लोगों ने खूब खाई होंगी, बड़े बड़े मॉल में बड़े बड़े बाजारों में आजकल स्वीट कॉर्न बिकती हुई है, इसके लिए उगा सकते हैं स्वीट कॉर्न। बीक काटने के बाद हरा चारा रहता है।

0: उसको आप उपयोग कर सकते हैं, उसको आप चारे करें। तो आप मक्के को किसी भी रूप में लें, भुट्टा भुट्टा वाली मक्का ले रहे हैं, चाहे आपका हरा भुट्टा हो, चाहे बेबी कॉर्न हो, चाहे स्वीट कॉर्न हो, इस तरह की मक्का लेके आप दो तरह से फायदा ले सकते हो। इससे आपको रुपए भी मिलेंगे और हरा चारा भी मिलेगा। और केवल चारे के लिए लेना है तो आपको अफ्रीकन टॉल बताई, वेराइटी जीत 1006 बताई, प्रताप मक्का अच्छा बताई, इनको लें जो केवल हरे चारे के लिए होती है और 6 से 8 फीट ऊंची जाती है। इस समय इनको लें और करने के आपको बता दी, पहले आए तब उसे आप काटना चाहिए, बाल निकलना शुरू हो जाए और इसे आपको 400 से 450 क्विंटल उपज हरी मिलेगी। तो इस तरह आप मक्की से हरा चारा उपयोग करके अपने पशुओं का स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में भी जैसे चारे की काफी समस्या आती है और हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी हमारे बहुत से किसान भाई जो है पशुपालन करते हैं, हमारे अगर किसान भाई अगर मक्के को अगर पर्वतीय क्षेत्र में चारे के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो क्या वहाँ भी डॉक्टर संभव है चारे के रूप में मक्का उगाना?
0: पर्वतीय क्षेत्रों में किसान ले सकते हैं, ये मध्यम ऊंचाई तक पूरा तराई, भावर, वैली, जो घाटियों वाले और मध्यम ऊंचाई तक लगभग आप ये 1600 मीटर ऊंचाई तक ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मक्का 80 फुट प्लांट है, इसकी बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है और इसको आप आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों को मक्का जरूर लगानी चाहिए, इससे हरा चारा भी मिलेगा और आपको भुट्टा, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, ये कई तरह की आ गई है, QPM, तरह आप जो भी प्रजाति लाएं, कोई भी प्रजाति लाएं ले सकते हैं। केवल हरे चारे के लिए बताया, जो केवल हरे चारे के लिए प्रजाति है अफ्रीकन टॉल, J1006, प्रताप मक्का 6, ये प्रजाति केवल चारे के लिए है। और शेष आपकी अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे बेबी कॉर्न के लिए HM4, BL, ये विवेकानंद से निकली हुई प्रजाति है, BLB1, BLB2, जो केवल बेबी कॉर्न के लिए है। इसी तरह QPM, एक क्वालिटी प्रोटीन मक्के की, QPM 1, 2, 3, 4 कई है, 6 अलग अलग प्रजातियां हैं, किसान भाई देख कर लें। इसी तरह स्वीट कॉर्न की अलग अलग प्रजातियां हैं, तो किसान भाई उनको भी ले सकते हैं, जिससे फायदा कमा सकते हैं बाजार में बेचकर और चारा चारा भी लेकर।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि एक देखने में आता कि बहुत से किसान भाई घर का ही बीज उपयोग करते हैं चारे के लिए, क्या सही डॉक्टर साहब? अगर सही है,
0: बिल्कुल सही प्रश्न किया। हमारे किसान भाई सामान्यतः बीज 1 साल के बाद कई सालों तक सेम बीज उपयोग करते हैं। यदि आपके बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने बीज का चुनाव अच्छी तरह करके रख रखा है, तब कोई मुश्किल नहीं है। यदि आपकी प्रजाति हाइब्रिड है तब आपको हर साल बीज बदलना होगा, नहीं तो आपको उपज प्राप्त नहीं होगी। सामान्यतः किसान करते क्या, जो कम्पोजिट या जो ओपन पॉलिनेटेड प्रजातियां हैं उनके बीज को 2-3 साल तक उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, बशर्ते कि बीज में कोई बीमारी न लगी हो, घुन न लगा हुआ, बीज साफ सुथरा हो, उसका जमाव बहुत अच्छा हो, तो उसमें कोई समस्या नहीं। वैसे किसान भाइयों को हम सलाह देंगे कि बीज दूसरे साल जरूर बदल लें, यदि हाइब्रिड है तो आपको प्रत्येक साल बदलना होगा, यदि आपने हाइब्रिड बीज को दोबारा बोया तो आपकी उपज न के बराबर होगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर हमारे किसान भाई अगर इस की मक्का की बुआई करते हैं, जो हमारे चारे जो फसल है वो चारे के लिए कितने दिनों बाद तैयार होगी?
0: बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। प्रजातियां अलग अलग होती हैं, कुछ प्रजातियां जल्दी बढ़ती हैं, जल्दी पकती हैं, कुछ प्रजातियां देर से पकती हैं। सामान्यतया मोटे मोटे रूप में देगा जब आपकी ऊपर वाली बाल निकलनी शुरू हो जाए, जिसको नर मंजरी बोलते हैं, और वो सबसे उत्तम समय होता है मक्का काटने का चारे के लिए, उस समय काटना चाहिए, चाहे वो 40 दिन बाद आए चाहे 50 दिन बाद, सामान्यतया 45-50 दिन बाद आ जाती है ये स्टेज। और हाँ, एक चीज और किसान भाई ध्यान दें, जैसे जो किसान भाई छोटे किसान है, आपने छोटे किसान है, छोटा खेत लिया आपने, छोटी जोत वाले हैं, तो एक तरफ खेत आपका हरे चारे के लिए तैयार हो जाता है, आपने काटना शुरू किया और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो खेत खाली होता जाता है उसमें दोबारा से बीज डालते जाए, तो जब तक आप आखिरी में जाएंगे तब तक ये आपकी दूसरी फसल तैयार हो जाएगी, तो आपको लगातार हरा चारा मिलता रहेगा एक ही खेत से, बशर्ते कि आप उसमें सही से पानी और ऑर्गेनिक उर्वरक हो या आपकी केमिकल फर्टिलाइजर हो इनको आप डालें, तो आपकी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो किसान भाई, अभी आपने सुना डॉक्टर MS पाल जी को और आपने आज जाना कि जो किसान भाई चारे के रूप में अगर मक्की की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से बीजों का चुनाव करें। डॉक्टर साहब, आपने इतने व्यस्त कदम से समय निकाला आप हमारे स्टूडियो में, और हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह हमारे स्टूडियो में आप आके हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आप सभी का।
2: अभी हमारे किसान साथियों ने सुनी भेंटवार्ता जिसका विषय था हरे चारे के लिए मक्का की खेती। डॉक्टर MS पाल से जानकारी दिलवा रहे राजेंद्र भट्टी जी।

अब किसान साथियों को मनोरंजन को समय है, तो एक नज़रिया लग जाएगी जिसे स्वर दाएं सोनू तिवारी ने। तो सुन लेते हैं किसान साथियों लोकगीत।

0: भाई बहनों, अभी आपने सोनू तिवारी की आवाज़ में नजरिया लग जाएगी लोकगीत सुनो। साथियों, हमें उम्मीद है आपको पसंद आओ होएगो। भाई बहनों, अब आपको एक प्रगतिशील कृषक से करेगी बातचीत सुनवाते हैं। प्रगतिशील कृषक हैं श्री राजवीर सिंह खाबरी अब्बल, बिलारी, जिला मुरादाबाद से। तो साथियों, हमने इनसे काका बातचीत करी, हम आपको सुनवाते हैं।
1: राम राम।
2: राम राम जी।
1: और कैसे हैं?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप?
1: हम भी बढ़िया हैं, और घर परिवार में सब लोग ठीक ठाक हैं?
2: हाँ, एकदम बहुत अच्छे हैं।
1: तो इस समय खेती में क्या क्या है?
2: इस समय खेती में गन्ना है, और पशुओं के लिए थोड़ा सा परोवा करके जो है चारी वगैरह बो दी है।
1: अच्छा, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ावा बात से पहले आप हमारे किसान साथियों के लिए अपनो नाम और पतो बता दो।
2: मैं गांव खाबरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह बोल रहा हूँ।
1: अच्छा, तो सिंह साहब देखो, इस समय आपने बताया गन्ना है और चरी है पशुओं के लिए, लेकिन
2: हाँ।
1: अब ये समय धानों का भी है, अब नर्सरी वगैरह पड़ रही है, तो धान
2: जी
1: की नर्सरी आपने नहीं डाली अभी?
2: हाँ बिल्कुल, डाल दी है हमने धान की, क्योंकि जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है उसमें हमने 4-5 बीघा बचा रखी है, उसमें धान लगाने का हमारा ख्याल है।
1: अच्छा, हमारी सरकार भी जोर दे रही है और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि धान की सीधी बुवाई करो, उससे जो है लागत भी कम आएगी और उत्पादन भी सही मिलेगा। तो सीधी बुवाई आपकी तरफ नहीं होती क्या?
2: न, सीधी बुवाई हमारी तरफ नहीं होती, पहले तो हमें अपनी पौध डालनी पड़ती है जी।
1: अच्छा,
2: पहले पौध तैयार की जाएगी, उसमें फिर खेत में पानी करके जब पौध लगने लायक हो जाएगी तभी धान लगते हैं।
1: अब तो जो पुराने जमाने से जो परंपरागत तरीके से,
2: हाँ जी,
1: लेकिन अब इधर अपने क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में लोग सीधी बुवाई करने लगे हैं।
2: अच्छा,
1: और इस बार बहुत अधिक संख्या में लोग कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं तो आप थोड़ी बहुत जरूर ट्राई करो।
2: अच्छा, जिस तरह से कि गेहूं बो देते हैं उसी तरह से धान डाल दें खेत में?
1: हाँ, उसी तरह से हो जाते हैं। वैसे तो मशीन है, इधर मशीन से बुवाई हो रही है, लेकिन आप गेहूं की तरह भी इधर आप बो सकते हो, उसके बाद पानी लगा दें और उसका सही रहता है।
2: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे जी हम पौध लगाने से ही बच जाएंगे, तो क्या उससे धान अच्छी पैदा होता है मुकाबले पौध लगाने के?
1: हाँ, जो एक्स्ट्रा हो जाता है पौध डालने से लेकर और रोपाई तक, वो खर्चा बच जाता है।
2: अरे बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी तरीका है। मैं अपने गांव में एक मीटिंग करके जो किसान लोग हैं उनको सबको मैं बताऊंगा, भैया देखो इस तरह से जो आपने पौध जो लगा दी है उसको तो आप लगाए ले, लेकिन जो आप सीधी बुवाई करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा।
1: इसके अलावा आप अपने बिलारी में केवी के केंद्र है, वहां जाकर आप वहां अधिकारियों से कीजिएगा, वो भी एक मीटिंग आपके यहाँ रख देंगे किसानों को समझाने के लिए।
2: अच्छा, हाँ कृषि केंद्र है हमारे यहाँ चंदूसी रोड पर, थोड़ा सा बिलारी से आगे है।
1: सिंह साहब देखो, इस समय हमारी सरकार एक बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि हम ईंधन बचाएं, बिजली की भी खपत करें, तो हम सब लोग किसान हैं, तो हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? बिजली है और पेट्रोल है, डीजल बचाने में हम लोग किस तरह से, किन किन बातों का ध्यान रख करके बिजली की बचत और ईंधन की बचत कर सकते हैं?
2: बिजली की बचत तो हम इस तरह से कर सकते हैं, पहले अब किसान करता क्या है, उसने अपना खेत पे समर सेबिल करा रखा है, उसको खेती भरने के लिए वो जो है अगर उसको वो क्यारी बाई क्यारी बनाए, क्यारियां बना ले छोटी छोटी अपने खेतों में, तो उससे पानी की बर्बादी बच जाएगी और हमारी बिजली की बचत भी हो जाएगी। देखिए किसान क्या करता है, नाला खोल देता है, उसी से पूरा खेत में पानी जाता है, तो उससे टाइम ज्यादा लगता है, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ जाती है और टाइम भी बढ़ जाता है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो अपनी छोटी छोटी क्यारी बनाए खेतों में, इससे हमारा खेत भी बहुत अच्छी प्रकार से भर जाएगा और बिजली की बचत भी हो जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: हाँ। इसी तरह से अगर वो डीजल का यूज करता है तो भी वो इसी तरह से डीजल बचा सकता है।
1: हाँ, छोटी छोटी क्यारी बना लेंगे, खेत समतल करा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि खेत में जब समान रूप से पानी चलेगा तो जल्दी भर जाएगा और कम लगेगा।
2: जी।
1: इसके अलावा ट्रैक्टर में भी हम कुछ, और जो इंजन वगैरह है उसमें भी कुछ सावधानी अगर बरतेंगे तो उससे भी हम डीजल वगैरह बचा सकते हैं।
2: हाँ, क्योंकि ज्यादातर हमने भी अपने गांव में देखा है कि चारा लेने के लिए किसान जो है अपना ट्रैक्टर ले जाता है।
1: बिल्कुल,
2: अगर ट्रैक्टर ना ले जा करके थोड़ी सी अपने साइकिल पर ही ले आएगा या अपने सिर पर ही गाड़ा ले आएगा चरी का, तो भी हम डीजल अच्छी प्रकार से बचा सकते हैं। मैंने ये देखा है कि किसान जो है क्यारी से न चला गया है, इसने बाई चांस पानी छोड़ जाता है इंजन जो होता है, जिससे इंजन तो लगातार चलता रहता है, जिससे डीजल की ज्यादा खपत होती रहती है। अगर इंजन को स्टार्ट करने से पहले पूरी तरह से उसकी जांच कर ली जाए कि कहीं लीकेज तो नहीं है, तो डीजल हम आसानी से बचा सकते हैं उसमें।
1: बिल्कुल सिंह साहब, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अधिकतर देखा जाता है अगर उसके फिल्टर वगैरह से कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदे टपक रही डीजल की, तो किसान कहता है अरे का पूरे दिन में 150 ग्राम टपक जाए, तो वह ध्यान ही ना करते। लेकिन 150 ग्राम भी तो काफी है। अगर इतना ही हर गाँव में अगर 10-10 लोग रोज का 200-300 ग्राम बर्बाद करते रहेंगे तो कितना हो जाएगा?
2: अरे साहब, वो अगर 100-100 ग्राम भी टपक गया तो 1 लीटर तो चले ही गया हमारा, 10 आदमियों ने भी ऐसा करा तो। तो मैं तो सभी अपने किसान भैया को ये सलाह जरूर दूंगा कि जो भी आप कार्य करें तो बड़ी

0: सोच समझ करके करें और छोटी छोटी अपनी क्यारियां बना लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ट्रैक्टर ले जाते हैं, आपने सही कहा कि छोटे मोटे काम के लिए ट्रैक्टर ले जाते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं, पहले लोग साइकिलों से हम ले जाते थे चारा वगैरह, अब वो मोटरसाइकिल ले जाते हैं, ट्रैक्टर ले जाते हैं, वहां पर पता चला उन्होंने चालू हालत में छोड़ दिया ट्रैक्टर।
0: हाँ, ये किसान की भूल होती है, ये वो सोचा क्या है फिर स्टार्ट करना पड़ा, वो थोड़ा सा आलस कर जाता है किसान जो है, इसलिए आलस को त्याग देना चाहिए किसान को, अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए अपने वाहनों का प्रयोग करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: गांव में जो है भैंसा नहवाते हैं तो और से ज्यादा काम करती है, इस काम के लिए पाइप पकड़ लिया और भैंसों के ऊपर छोड़ दिया और बातें करने में व्यस्त है, तो ये उन लोगों की बड़ी गंदी आदत है। अगर उसी पाइप को डायरेक्ट भैंस पे ना छोड़ करके किसी ड्रम में पानी भर लिया जाए और लोटे से भैंसों को नहाया जाए जग से, तो हमारे पानी की भी बचत अच्छी प्रकार से हो सकती है और बिजली की भी बचत हमारी हो जाएगी उसमें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ये तो अधिकतर हमारे किसान साथी करते हैं और जो हमारी बहनें हैं घर में वो भी करती हैं, और इसके अलावा एक और गलती करते हैं, समरसेबल या मोटर का पाइप उन्होंने पता चला कि लैट्रिन के टैंक में डाल दिया, वो चल रहा है कई कई घंटों तक।
0: हाँ, ये बहुत गंदी बात होती है।
1: हमें लगता है कि हम किसान साथियों को भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को अगर हम अमल में ले लें और हम अपने प्रधानमंत्री जी की बातों को भी थोड़ा सा अमल में ले लें, थोड़ी थोड़ी भी अपनी आदत को संभाल लें, तो बहुत हम अपने किसान साथी योगदान कर सकते हैं ये ऊर्जा बचत में।
0: जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपसे बात हुई, नमस्कार।
0: नमस्कार साहब।
2: क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिशील कृषक से बातचीत कर जानकारी दिलवा रहे हिमपाल भैया, और जो जानकारी दे रहे हैं वो श्री राजवीर सिंह। हमें उम्मीद है कि जानकारी सुनकर किसान साथी बिल्कुल लाभ उठाएंगे। अब भैया, हमारे कार्यक्रम में कुछ बदलाव भए हैं, वो जानकारी अपने किसान साथियों को बता दें।
3: बिल्कुल भैया, तो साथियों देखो, हमारे कार्यक्रम में जो बदलाव करे गए हैं वो बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार के करे गए हैं।
2: तो महीने के जो पहलो बुधवार हुए हफ्ता को बा में सफल कृषक, और दूसरो बुधवार अगर महीने को है तो सफल महिला कृषक, और महीने को तीसरो बुधवार है तो महिला कृषि गोष्ठी, और महीने को चौथो बुधवार है तो सफल कृषि स्टार्टअप, अगर महीने में पांचवा बुधवार पड़ जाए तो सफल कृषक।
3: और साथियों गुरुवार की बात करें तो पहले गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को आकाशवाणी गांव में क्षेत्र संकलित कार्यक्रम पर आधारित पंचायत विशेष कार्यक्रम यानी पंचायत स्तर पर विशेष कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जाएगा, और दूसरे गुरुवार को कृषि पत्र का खेत खलियान कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही साथ तीसरे गुरुवार को भी आकाशवाणी गाँव में आपको सुनवाओ जाएगा, और चौथे गुरुवार को कृषि पत्र का खेत खलियान होए, और अगर पांचवें बुधवार गुरुवार पड़ता है तो पांचवें गुरुवार को भी आकाशवाणी गांव में आप तक पहुंचा जाए।
2: अगर महीने को पहलो शुक्रवार पड़ जाए तो लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीत पर आधारित लोकगीत सुनवाए जाएंगे, और महीने में दूसरो शुक्रवार पड़ जाए है तो कृषि संघ का समाधान, इसी प्रकार महीने के तीसरे शुक्रवार के लिए लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम, और शुक्रवार महीने को चौथो है तो कृषि संघ का समाधान समस्या व उससे जुड़े समाधान, और अगर महीने को पांचवा शुक्रवार पड़ जाए तो लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम।
3: तो साथियों आप हमारे कार्यक्रम में से जुड़ने के लिए आप हमें 0595-23-24-336 पर सजीव कॉल करके लोक मंजरी कार्यक्रम और कृषि संघ का समाधान कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ यदि आप व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहें तो आप 94100877786 यानी 9400877786 पर आप हमसे जुड़ सकते हैं।
2: भैया हम अपने ईमेल पता बता दें, patramila@rampur.gmail.com, सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आकाशवाणी रामपुर
3: पर भी आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहें तो आप कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर उत्तर प्रदेश पिन 244901 के माध्यम से आप पत्रों के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों हम आपसे फिर कह रहे हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को सुने और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिख भेजें।
2: बिल्कुल।
3: अब साथियों हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं तो हम आपको कुछ जानकारी दे दें कि इस समय जो सब्जी वाली फसलें हैं उनकी किस तरह से देखभाल करें।
2: देखो भैया सब्जी वाली जो फसलें हैं इस समय भैया देखो बरसात को मौसम शुरू होने वाला हुआ वहाँ पर खास तौर पर जो है हमें अपने फसलों की देखभाल करनी पड़ती है। सबसे पहले तो भैया वहाँ में अपनी जल निकासी की व्यवस्था अवश्य कर लें।
3: बिल्कुल भैया, क्योंकि जे फसलें सब्जी वाली होती हैं बड़ी नाजुक होती हैं और जब बारिश को पानी इकट्ठा हो जाता है और ऊपर से जब गर्मी पड़ती है ना, कहते हैं कि जो गर्मी इस समय की जो चौमासे गर्मी होती है उस समय जाके तो सावन भादव गर्मी में हिरणों कार्य पड़ जाते हैं तो और जो फसल की बाकी तो कोई औकात ही ना आए तो जो सब्जी वाली फसलें गर्म पानी पड़ने से खराब ही जाती हैं। इसलिए आप जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें, पानी खेत में कहीं पर भी ना रुकने पाए।
2: और भैया नराई गुड़ाई को विशेष तौर पर ध्यान रखें जिसमें जो खतपतवार जो उग जाते हैं। देखो बरसात के मौसम में बारिश जल्दी जल्दी होती है तो खतपतवार बहुत बढ़ जाते हैं।
3: बिल्कुल, नरान को टाइम ना मिलता है, ना खुदान को टाइम मिलता है।
2: हाँ, तो बाको जो है अपने किसी भी तरीके से उनको जो है निकासी कर दें, निकाल दें।
3: हाँ, अगर आप उसे एक साथियों ना निकालें खरपतवार उनको तो उसमें मक्खी और अनेक तरीका के कीट पैदा होंगे जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही साथ साथियों एक बात को और ध्यान रखें कि फसलों में या फसल के खेत में आपकी जो भी फसल है उसमें यहाँ वहाँ आप कूड़ा करकट इकट्ठो ना होने दें।
2: और देखो भैया इस बात करें जैसे कीट की और फफूंदजनित बीमारी बहुत लगती है बरसात के मौसम में, तो उनको जो है रोकथाम के लिए जो है समय समय पर दवाओं को प्रयोग करें।
3: साथ ही देखो सब्जी वाली फसलन में अधिकतर जो रस चूसने वाले कीट ज्यादा लगते हैं और इस समय जो है पत्ता वाली सब्जी ज्यादा ही जाती है जैसे मूली वगैरह है और बैंगन होते हैं। तो साथियों अगर बात करें रस चूसने वाले कीटन की तो आप इमिडाक्लोप्रिड या थाइमोक्साजोम बहुत ही अच्छी दवा है। इनमें से एक दवा को आप अगर आप 8 दिन के अंतराल पर 2-3 स्प्रे कर देंगे तो जो रस चूसने वाले कीट हैं उनसे निजात मिल जाएगी।
2: और देखो फफूंदी अगर लग रही है तो हम कार्बन डाइजिम या मैनकोजिम को मिश्रण मिला सकते हैं।
3: बिल्कुल। और भैया देखो जैसे हमने बात करी कि बैंगन या फिर तुरई वगैरह की भी फसलें हैं तो साथियों देखो जैसे तुरई की बात करी, तुरई में एक मक्खी लग जाती है वो जो है डंक मार देती है,
2: फल छेदक मक्खी होती है।
3: तो आप उसमें का जैसे इमिडा के साथ में लैम्डा मिला लेंगे, लैम्डा सालसुरे तो उससे वो बड़ी आसानी से खत्म हो जाता है। इसके अलावा साथियों हम अगर जो अंदर सूड़ी है जैसे तना भेदक है या फल छेदक है उसके लिए आप किसी अन्य दवा को प्रयोग कर दें जैसे आविमामेक्टिन को अगर आप स्प्रे कर देंगे उसके साथ में प्रोफेनोफॉस को मिला लेंगे और दोनों बाजार में मिले भी मिल जाते हैं उनको अगर आप स्प्रे कर देंगे तो हम समझते हैं कि आपकी फसल कीटन से बची रही। वैसे तो साथियों हमारा तो जय कहनो रहता है कि आप कीटनाशकों को कम प्रयोग करें और देसी उपाय ज्यादा करें।
2: ज्यादा करें तो भैया नीम ऑयल को इस्तेमाल कर लें, खाने वाली सब्जी में जो है ज्यादा रासायनिक तत्वों को इस्तेमाल ना करें।
3: और भैया देखो इस समय एक बात को आप ध्यान रखें क्योंकि गर्मी होती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं तो आप इस समय ढेंचा बड़ी आसानी से बीज मिल रहा है और इस समय मौसम भी है, आप जो सब्जी भाजी फसलें हैं या और कोई फसल है उनके चारों ओर ढेंचा को बाड़ा लगा देंगे तो उससे गर्मी खेत को कम लगती है क्योंकि उससे वो जब ठंडी ठंडी हवा उससे आती है, बड़े बड़े पेड़ जाते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा हरियाली होती है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ साथियों जो हमने बात करी कीटन के लिए आप खेत में 2-4 मेड़ा या फिर यहाँ वहाँ गेंदा के लगा दें तो उससे कीट गेंदा पाए जाएंगे और आप कीटन को हम बड़ी आसानी से मार सकते हैं। तो इस तरह से साथियों आप सब्जी वाली फसलों को ध्यान रखें।
2: अब भैया कृषि संकेत यहीं तक, कल के कार्यक्रम की जानकारी दे दें। चर्चा हुई कल सुकन्या समृद्धि योजना और जिसमें भेंटवार्ता हुई जून माह में पशुपालन से संबंधित कार्य जिस पर जानकारी दें मौलिका सक्सेना और कृषि संकेत हुए पशुओं के लिए उत्तम आहार और उसमें क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और मौसम की जानकारी।
3: साथियों हम आपको बताते हैं कल को मौसम, तो साथियों कल संभावित मौसम में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है और वायुमंडलीय नमी 39% रह सकता है और हवा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह सकता है। तो साथियों जो तो हो कल को मौसम को संभावित मौसम को हाल। अब साथियों अब दीपक भैया देखो अपने भैया बहन से विदा ले लियो।
2: हाँ बिल्कुल,
3: तो क्योंकि आप समय बिल्कुल ना कह रहे हो अपने साथियों से और
2: बातें बाते करे जाती हैं तो इसलिए जी अपने भैया दीपक
3: और हेमपाल भैया को दे अनुमति।
2: राम राम, राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 7 बजे प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोता मंच। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर श्रोता राजेश सोनी को। आपसे बात की है मनोज कुमार ने, प्रस्तुति असीम सक्सेना की है।

0: श्रोताओं नमस्कार। श्रोता मंच कार्यक्रम में आज एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वेणी से, राजेश सोनी जी की। यूं तो आपने हमारे इन श्रोताओं की चिट्ठियां जरूर सुनी होंगी, खासकर गीत आपके नाम कार्यक्रम में, या फिर गीत गाता चल कार्यक्रम में, या फिर फरमाइशी कार्यक्रमों में आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो आज श्रोता मंच कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राजेश सोनी जी वेणी से। राजेश सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्ते सर जी।
0: राजेश सोनी जी, सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि आकाशवाणी रामपुर से कैसे जुड़े आप और कब जुड़े?
1: सर जी, मैं आकाशवाणी रामपुर से 2022 से जुड़ा हूँ सर। मेरे को मालूम नहीं था, तो फिर मैंने जैसे श्रोताओं से जुड़ा हूँ मैं, तो उन्होंने श्रोताओं ने मोबाइल ऐप पे जानकारी डाली, जो श्रोता ग्रुप में ग्रुप रहता है उसने उसमें जानकारी डाली। बाबा साहेब वाडुदेव वगैरह उन्होंने हमको जानकारी दी कि आप आकाशवाणी रामपुर सुनकर देखो, बहुत कार्यक्रम यानी कार्यक्रम यहाँ की प्रस्तुति बहुत अच्छी रहती है और लाजवाब प्रस्तुति रहती है और एक से एक कार्यक्रम है। फिर सर जी, फिर हम 2022 से आकाशवाणी रामपुर से जुड़े।
0: अच्छा, तो वो कौन सा कार्यक्रम था जो आपने सबसे पहले सुना? आकाशवाणी रामपुर को आपने ट्यून किया और वो कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया।
1: 12 बजे का कार्यक्रम था सर जी, वो 12:10 को चालू होता था, गीत आपके नाम।
0: अच्छा
1: हाँ, तो उसमें मेरा सर जी पहला खत मेरा दीदी ने उठाया था, मेरे को रेनुक शायद है उनका नाम। तो उन्होंने मेरी पहली फरमाइश सुनाई थी फिल्म दिल वाले की।
0: अच्छा
1: हाँ, कितना हसीने चेहरा, कितनी प्यारी आके। तो वो पत्र लगा मेरा और मैं अपना नाम सुनकर इतना खुश हुआ कि चलो आज मेरे रामपुर में फरमाइश पहली बार शामिल हुई, तब मेरा मन खुश हो गया। तो मैं अति उल्लास उल्लास भर से मैंने और ज्यादा खत भेजना चालू किए सर जी, हर कार्यक्रम में भेजना चालू किए मैंने।
0: यही उत्साह श्रोताओं को जोड़ देता है और लगाव उनका शुरू हो जाता है। और कभी कभी कार्यक्रम में शामिल नहीं भी होती होगी चिट्ठी, तब फिर कैसा लगता है आपको?
1: नहीं, वो सर जी क्या होता है, जैसे आकाशवाणी में, आकाशवाणी बोलो तो ये एक माध्यम चैनल है, ऐसा जरूरी नहीं कि वह हर श्रोताओं की चिट्ठी लगना जरूरी नहीं है। सबको आकाशवाणी सबको यानी सबको देखती है, ऐसे नहीं करोड़ों श्रोता है आकाशवाणी के और करोड़ों श्रोता को भी लेके चलना पड़ता है, खाली एक श्रोताओं से ये नहीं होता। कभी कभी क्या है उससे नाराजगी नहीं करना पड़ता, हो जाता है, ऐसा नहीं है। हिम्मत हारना से कुछ नहीं होता, लेकिन हिम्मत जटाने से आगे बढ़ते है सर जी।
0: बिल्कुल सही बात है कि आप समझ रहे हैं हमारी मजबूरी। कभी कभी ऐसा होता है कि देर से ईमेल प्राप्त होता है या देर से खत प्राप्त होता है, तो उस वजह से भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाता। कभी कभी समय नहीं पाता, तभी कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल हम नहीं कर पाते हैं, बस यही वजह रहती है। हालांकि हमारे सभी श्रोता अपने हैं, सभी से हम बराबर प्यार करते हैं। राजेश जी, आपसे जानेंगे कि आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सबसे पहले तो कार्यक्रम गीत गाता चल, और फिर रात को गीतांजलि आता है, गीतांजलि वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और जो फोन इन कार्यक्रम होता है ना सर जी, शुक्रवार और सोमवार के दिन, वो कार्यक्रम में नियमित रूप से सुनते रहता हूँ सर जी। हर महीने 2-3 बार उसमें कॉल भी किया, मेरा कॉल भी शामिल हुआ, आपसे भी बात हुई है मेरी।
0: अच्छा।
1: और हाँ, पहली बार आपसे मेरी बात हुई थी, अखिलेश सक्सेना जी से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मेरे को, आपने जो मेरे को जो पहला गीत सुनाया था, वो गीत आज भी याद है सर जी मेरे को, खतरों के खिलाड़ी का।
0: अच्छा।
1: सारे सिक्के गीले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो।
0: ये गाना तो आजाद देश के गुलाम फिल्म का है और
1: हाँ हाँ आजाद देश के गुलाम
0: जी।
1: हाँ
0: चलिए, ये अच्छी बात है कि आपको अभी तक वो याद है कि आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया और अपनी पसंद का गीत जो आपने सुना। राजेश जी, आपसे जानेंगे कि आकाश

0: आकाशवाणी के कार्यक्रमों को आप रामपुर से तो बाद में सुनना शुरू किया, तो आप अपने स्थानीय केंद्र को भी सुनते होंगे, तो वो कौन सा साल रहा होगा जब आपने आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनना शुरू किया?
1: सर जी, मैं तो बचपन से आकाशवाणी का दीवाना हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं रेडियो लेके घूमता था, और सबसे पहले पहले सर जी आकाशवाणी विविध भारती से प्रस्तुत होता था कोलगेट सिवा का गीतमाला, जो अमीन सयानी जी प्रस्तुत करते थे उसको शुक्रवार के दिन। हाँ, शुक्रवार के दिन रात 8 बजे
0: जी।
1: तो वो कार्यक्रम में लगातार सुनते रहता सर जी, मेरे को उनकी आवाज में इतना जादू था और इतनी मुस्कुराहट आवाज थी उनकी आवाज में, जैसे क्या बोले तो बस मन में एक संख्या जगती थी, कैसे वाह क्या आवाज दी है ऊपर वाले ने।
0: वाह, बिल्कुल। हाँ, हम सब कायल हैं अमीन सयानी जी के, उनके
1: जी
0: आवाज के, और सभी लोग सुनना पसंद भी करते हैं उनको। राजेश सोनी जी, आपसे ये पूछेंगे कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आपको क्या अच्छा लगता है, और आकाशवाणी के कार्यक्रमों का जो 90 साल का हम जश्न मना रहे हैं
1: जी,
0: उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आकाशवाणी ने आपको क्या दिया, आपने क्या सीखा अभी तक आकाशवाणी के कार्यक्रमों से?
1: सर जी, आकाशवाणी ने मेरे को सब कुछ दिया है और मैं आकाशवाणी की वजह से सब कुछ सीख चुका हूँ। ऐसा ये नहीं है कि मेरे को, देखो सर जी, मैं स्कूल में गया नहीं, आज तक मैंने स्कूल देखा नहीं, ये आकाशवाणी की बदौलत है कि आज मैं यहाँ तक, जैसे खत के माध्यम से बोलो या चिट्ठी के माध्यम से बोलो, मेरे को चिट्ठी लिखना नहीं आता था, जब आकाशवाणी चालू किया सुनना तो मैं धीरे धीरे लिखना चालू किया, पढ़ना चालू किया, और आज मैं सर जी 50% में खत लिखता हूँ और 50% में पढ़ भी सकता हूँ सर जी।
0: वाह वाह, क्या बात है कि आप आकाशवाणी से इतना कुछ सीख पाए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजेश जी, आकाशवाणी रामपुर से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
1: मेरी अपेक्षा रामपुर से बहुत है सर जी, यहाँ पे जो कार्यक्रम प्रस्तुत होते ना, यह बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रहती सर जी, और उसमें कोई जैसे मन भाव वाला कोई ये नहीं है कि चलो आज ये श्रोता का नंबर लगा है तो उसी श्रोता का नंबर लगना चाहिए, ऐसा ये नहीं है। आकाशवाणी रामपुर इतना अच्छा है कि उनको फिर से शामिल करते हैं, यही बहुत प्यार मिलता है हमको आकाशवाणी से, और मैं आकाशवाणी का बहुत बड़ा दीवाना भी हूँ, कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ता आकाशवाणी का रामपुर का।
0: वाह, ये अच्छी बात है कि आप आकाशवाणी रामपुर से इतना प्यार करते हैं। राजेश जी, अगर आपसे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो आप क्या करते हैं?
1: सर जी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, और वैसे भी मैं साइट पे जैसे दिन भर साइट पे काम करते रहता हूँ, और शाम के वक्त जैसे 8 बजे 9 बजे दुकान पे बैठता हूँ, फिर दुकान पे भी मैं सुनते रहता हूँ रामपुर आकाशवाणी का, 11 बजे तक सुनते रहता हूँ। और जैसे मैं सर जी, जो भी आकाशवाणी इंडिया में सभी के कार्यक्रम में कार्यक्रम का लुप उठाता रहता हूँ, सभी के कार्यक्रम में सुनता हूँ।
0: बिल्कुल, और आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही आकाशवाणी अपने 90 साल की यात्रा पूरी कर रहा है, तो आकाशवाणी के 90 सालों में आकाशवाणी के श्रोताओं का बहुत प्यार मिला है, इसके हम आभारी हैं, और उम्मीद यही रहेगी आगे आने वाले दिनों में कि श्रोताओं का ये प्यार, ये स्नेह यूं ही बना रहे। कि आपसे पूछेंगे कि आसपास के इलाके में कोई प्रसिद्ध जगह हो जो आप बताना चाहें, कोई खास?
1: सर जी, यहाँ आसपास में प्रसिद्ध जगह जाम सावली का मंदिर है, हनुमान मंदिर जी, वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग प्रस्थान करते हैं और दर्शन करके जाते हैं, जो भी मनोकामना पूरी मांगते हैं वो पूरी होती है भगवान की कृपा से, और बहुत बड़ा मंदिर हो गया, जैसे अभी अयोध्या का मंदिर हुआ उस टाइप से हनुमान जी का भी मंदिर हुआ सर जी, निर्माण हुआ और बन के तैयार भी हो गया सर जी, और बहुत सारे यानी भक्तगण आते हैं दर्शन करने के लिए, दिल्ली से बोलो, मुंबई से बोलो, नागपुर से बोलो या छिंदवाड़ा से बोलो, आसपास के सभी से दर्शन करने के लिए आते हैं सर जी।
0: बिल्कुल,
1: और एक जमाना हमने तो नहीं सुना सर जी, लेकिन हमारे जो बाप दादाओं ने बताया कि ये मूर्ति जो हनुमान जी की थी वो खड़ी थी, तो वो जैसे चोर वहाँ चोरी करने गए थे तो वो चोरों को साथ लेके सो गई वो।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो तब से वो सोई, जो भी अपनी मनोकामना रही अपन मांग ले तो बिल्कुल उसका फल मिलता ही है सर जी।
0: चलिए, ये अच्छी बात है। राजेश सोनी जी, आपसे ये पूछेंगे कि आकाशवाणी रामपुर ने अभी कार्यक्रमों में बदलाव किए हैं, तो उन बदलाव में आपको क्या लगता है कि सही है या फिर कुछ और आप चाहते हैं?
1: सही है सर जी, बदलाव तो सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये चाहता था सर जी कि पत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि हर हर कोई किसी के पास मोबाइल नहीं रहता सर जी, जैसे किसी के पास कीपैड वाला मोबाइल रहता, किसी के पास ये रहता, तो वो मोबाइल पे जैसे अभी हमारे पास ये वाला मोबाइल है, ऐप वाला मोबाइल है बड़ा वाला, तो हम फेंक सकते हैं, फिर भी हम क्या बोलते थे ईमेल नहीं भेज सकते क्योंकि हमको आता ही नहीं सर जी। तो हम ज्यादातर पत्र में इतनी खुशी मिलती है सर जी, लिखने में इतनी खुशी मिलती है कि जो अपन पत्र लिखते हैं तो वो जैसे गाने चुन चुन के निकालते हैं और वो अपने उसमें भावना जुड़ी रहती है।
0: बिल्कुल, चिट्ठियों में भावनाएं छिपी होती हैं, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन ईमेल अपनी जगह ठीक है और खत का जो मयार है वो अपनी जगह ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप खत भेजें तो खत भी भेज सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। कुछ प्रोग्राम हमारे ईमेल्स पर हैं क्योंकि तकनीक के साथ चलना मजबूरी है, अगर हम तकनीक के साथ नहीं चलेंगे तो शायद पीछे छूट सकते हैं। तो और खत दोनों को समायोजित करते हुए कार्यक्रमों का प्रसारण हम करते हैं और श्रोताओं की पसंद पर ध्यान में रख करके करते हैं। सुनी जी, आपसे ये पूछेंगे, आज एंटरटेनमेंट के इतने सारे साधन हैं तो हम रेडियो को ही क्यों चुनते हैं? रेडियो में ऐसी क्या खासियत है कि लोग आज भी रेडियो से इतना प्यार करते हैं?
1: आज भी सर जी रेडियो से इतना प्यार क्यों करते हैं सर जी, कि रेडियो में इतनी जानकारी मिलती है, इतने पुराने गीत सुनने को मिलते हैं जो इंटरनेट पे नहीं मिलते, और जो इंटरनेट पे गीत सुनने की ये है वो उतना प्यार नहीं मिलता जितना रेडियो से प्यार मिलता है। ये रेडियो में जो भावना होती है, जो ये होता है, जो बोलते हैं ना, जैसे जैसे मान लो बीमार इंसान भी अगर वो रेडियो के कार्यक्रम सुन लेगा ना तो उसको ऑटोमेटिक उसकी तबियत यानी तबियत पे धीरे धीरे सुधार होना चालू हो जाता है सर जी। क्योंकि ये मेरे पे बीती है सर जी, क्योंकि मैंने जब मेरे तबियत खराब हुई थी तब उस टाइम मेरे को कोई नहीं था तो मेरे को रेडियो ने साथ दिया। तब मैं रात को यानी आपके जो गीतांजलि कार्यक्रम आता था तो 10:30 बजे वो कार्यक्रम सुनता था, तो उससे वही गीत से मेरे को धीरे धीरे उसका महसूस होने लग गया, मेरी तबियत में सुधार होना चालू हो गया।
0: बिल्कुल, संगीत ऐसा ही होता है। संगीत रोते इंसान को खुश कर देता है, हंसा देता है
1: जी।
0: संगीत में वो ताकत होती है जो शायद हम किसी और चीज से हासिल ना कर सकें।
1: नहीं कर सकते सर जी।
0: राजेश सोनी जी, आज श्रोता मंच कार्यक्रम में आप हमसे सीधे जुड़े हैं, तो श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: श्रोताओं से देखो सर जी, श्रोताओं सब बराबर है, सब अच्छे है, सब मिलजुल के रहना चाहिए और किसी की नाराजगी नहीं करना चाहिए कि चलो आज हमारा नाम शामिल नहीं हुआ, आज उनका नाम शामिल नहीं हुआ।
0: तो श्रोताओं, आज श्रोता मंच कार्यक्रम में हमसे बात कर रहे थे राजेश सोनी, जो बेरनी में रहते हैं और हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं। आज श्रोता मंच कार्यक्रम में इतना ही, मनोज को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता मंच। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर श्रोता राजेश सोनी को। आपसे बातचीत की थी मनोज कुमार ने, प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हमारा अभिमान है
2: हमारी एकता,
1: हमारा मान है
2: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
1: हमारी शान है
2: इस एकता की सुदृढ़ता।
1: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बनें।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं। श्रोताएं, ये आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। रात्रि 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आपके रेडियो सेट पर होगा रात्रि 8:00। शाम 7:31 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे रुचि शुक्ला के गाए कुछ गीत व भजन।

कल सवेरे 6:35 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश में मानसिक रोग एवं आयुर्वेद विषय पर जानकारी प्राप्त कीजिएगा। जानकारी देंगे डॉक्टर विनय वर्मा। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग आप सुन सकेंगे सवेरे 7:00। कल कलाकार होंगी कविता सक्सेना। फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुनिएगा सवेरे 7:31 पर। साप्ताहिक पत्रोत्तर कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप सुनिएगा कल दिन में 10:00।

कल दिन में 11 बजे धरोहर के अंतर्गत आप सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष श्री आदित्य प्रकाश तिवारी से असीम सक्सेना की भेंटवार्ता। श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मनभावन आपके रेडियो सेट पर होगा 11:30 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव की सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7

0: इस बीच तीन दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
2: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की, साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
3: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें

0: मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
1: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह सेसावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और

0: रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रुचि शुक्ला के गाए कुछ गीत व भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रुचि शुक्ला के गाए कुछ गीत व भजन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अर्शी मसूद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे बस इतनी ही इल्तिजा करते हैं, कार्यक्रम आपका है, गरिमा बनाए रखिए, नाम बदल कर कृपया हमें मैसेज ना करें। कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के लिए फरमाइश की है आप सभी ने। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुलरकर। दरियापुर भापरी महाराष्ट्र से गजानन येली, नवदीप येली, विश्वदीप येली, अशोक शेरडी अकोला से अरुण बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉ. प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। इसी गीत को सुनना चाहा है अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल दीपिका, गव्या सुचा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। पुफाली जिला से जयराम, दिशांत और अर्पिता। अमरावती से कमरिल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफा खान, आफिया खान, शाहिद भाई, रहू भाई। नाज मंजिल महसौल, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कालीर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। महाराष्ट्र से नारायण दयानंद, ओमकार और साई। जिला अमरोहा बस नई बस्ती पति खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सई फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी और शम अंसारी। नालेश्वर निर्वीर महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नहावकर और आप ही के परिवार से विशाल। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफिया ननस, आयजल्फिया सदफ। इसी गीत को सुनना चाहा है जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक, सुरेश चौरसिया। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म अनुरोध में।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: इस समय आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में आप भी अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, नंबर है 9410087876। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय अमित और समुद्र। मोहल्ला हलवाई अनशेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी और आपके परिवार के समस्त, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदरानी, हिना कौसर। आदर्श नगर मलूर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। पंजाब से परेम सिंह, मंजीत, करणवीर, दपिंदर, कुलवीर, कुलदीप, सिम्मू, दमन, अभिजोत। मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा, तूबा, शमीम अख्तर। बेडी से राजेश, सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। जलालाबाद से सुरेश, पूनम और विशाल। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया, भव्या कुमारी, निवेश और नियति। महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर। इसी गीत को सुनना चाहा है अतुल गौतमी और धमदीना ने कोल्हापुर से। सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया नाजिया, नूरी नाज। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकर। गांव चौहलदा बागपत से संजय, नमन, आपार। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहानी, पिंकी सहानी, डॉक्टर अफसल मलिक, संदीप, बेगम इफजल। रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी सहानी और सुनीता सहानी। जेल रोड जालंधर से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा, धर्मजीत। हरियाणा से बिट्टू, रीटा, रजत, मयंक। जैन मंदिर कुरावाली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसन अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। सरगुजा मैनपाट से रेशमा, सोनम, फातिमा और आसमा। बाबा कुटे रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वर, राजेश्वरी और उत्कर्ष। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा और आपके परिवार के समस्त सदस्य। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति और आपके परिवार के समस्त सदस्य। जिला काजगंज

उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका, सुशांत सुरेश। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ प्रकाश, बल्लू तरुण और आपके परिवार के समस्त सदस्य। आप सभी की फरमाइश पर आइए, सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म आबरू में।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, इरफान खान, राजद्वारा रोड कोठी अफसराला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीना तमान और शमा परवीन। नथाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, शिव कुमार, लोकेश, वैदेही और हंसिका। राजस्थान से शंभू, दयाल, विमला, अमरजीत, सुंदर, योगेश, दीपक और पूजा। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सुरेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर। महाराष्ट्र से सक्षम, ज्योति, लता, चांदनी और आपके परिवार के समस्त सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है मुबारकपुर से गांव फरांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार। छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और आपके परिवार के समस्त सदस्य। बेडी से हुकुम गरम कर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु। महाराष्ट्र से रामचंद्र

छत्तीसगढ़ से कलीम सलीम यूसुफ, भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल किरण कपिल और कुणाल, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन, मुन्ना अंसारी, बुलंदशहर से सईद निगहत शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरबाज और आबान, मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि अश्विन, मंगला और राजेंद्र जी शाह, खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली और आरती, गुजरात से धीरज, अकोला से सुशीला देवी, सदानंद कुमार गौरव, सनावद आजाद रोड से मोहम्मद असलम, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद सिद्दीकी, आफिया राफिया, मोहम्मद अदनान, पीराहा बाजार से अभय कुमार शिवानी, प्रियंका रिया जिया आयुषी और आपके परिवार के समस्त सदस्य, कलकत्ता से बसंत कुमार, रेखा देवी, अजय, रिम्मी और तनुश्री, मुबारकपुर आजमगढ़ से सलीम जावेद निखत नुसहत जावेद अख्तर अंसारी, तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार, मीरा देवी, गंगा देवी मिश्री, सरगुजा से प्रभा, प्रमिला, आशा, निशा, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्वी चौहान, शौर्या, श्रेयांश, अंकित और अनिकेत, मुरादाबाद ईदगाह गेट से शफी अहमद अंसारी, रईसुल अंसारी, पीरजादा कश्मीर से सालार, जिला बदायूं से सुपाली सिंह, महिपाल, शिवम, लेखराज और निर्मल, सिंदौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, माहिरा नूर, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि, श्रीमती शीतल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नाजमा, रियाज रिफाकत, बारादरी महमूद खान, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी, काट रोड से अजीत कसाना, चांद वली मस्जिद मुरादाबाद से मेराज अंसारी और वसीम अंसारी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और हर्ष, इसी गीत को सुनना चाहा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अंकुश, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बीबी गर्वी और हिमाक्ष, आप सभी की फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं
येसुदास को फिल्म सावन को आने दो में।

श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। आप भी अपनी फरमाइश हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9410087876। श्रोताओं, कार्यक्रम आपका है, गरिमा बनाए रखिए। आप सबसे अनुरोध है कि कार्यक्रम में अगर आपका नाम एक बार पढ़ा जा चुका है, एक बार शामिल हो चुका है, कृपया दो दो बार, तीन तीन बार मैसेज ना करें। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर पाकिजा रेडियो श्वेता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश रमेश, मोहम्मद शादाब, जामा मस्जिद रोड से हाजी इसहाक, मोहम्मद उमर, हाजी अयूब। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली राधिका, प्रभा देवी और अल कबीर। जाटू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोजा आलम, चांदनी नाज। महाराष्ट्र से रेवण अनीता, राहुल, अतुल गौतमी, अरुण, रायगढ़, बिहार से उमर राज, पवन, संजय, दीपक और कमल। खंडवा से राधिका, नीता, सपना और राकेश। जे रोड रायगढ़ से निशा, उमा और आपके परिवार के समस्त सदस्य। सहारनपुर से देव शंकर, प्रभा रानी, सुरेश और नरेश, नरेंद्र। पुराना तराब डुमलाऊ से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबाना बानो। जे रोड बक्सर से राजेश जी अंसारी, फातमानाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। जे रोड जालंधर से धर्मजीत और आपके परिवार के समस्त सदस्य। कासगंज से आबाद खान, नबील, आरफाइल, माँ एस, असलम सैफी, माँ जाहिद, बदायूं से आफरीन और जमीर खान। अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना, हिरामरी, प्रतिभा और आपके परिवार के समस्त सदस्य। राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुणा और प्रतीक। महासमुंद से याकूब यूसुफ, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन और आपके परिवार के समस्त सदस्य। साधु शहर राजस्थान से रामकुमार और चंद्रकला।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर छत्तीसगढ़ से रमेश मीरा गंगा और मिश्री, सरगुजा से प्रभा प्रमिला आशा निशा, सदर बाजार से रमेश जिला रामपुर तहसील सुवार से सुधीर कुमार, महाराष्ट्र से बबन, आप सभी की फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले को फिल्म वक्त में।

0: के दिल के सहारे कैसे प्यार करें।
1: इसी गीत के साथ अर्शी मसूद को दीजिए कार्यक्रम गीत का तचल समाप्त करने की इजाजत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर

0: अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our ties.
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों

0: की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under-18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Shubhendu Adhikari at Navarno in Kolkata, Mr. Vaishnav said 14,205 crore rupees has been allocated to West Bengal in the railway budget for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
1: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
6: In Madhya Pradesh, both the BJP candidates, Party National General Secretary Tarun Chugh and Rajnish Agarwal, filed their nominations for the Rajya Sabha elections today. The nomination papers were submitted before the returning officer at the Bhopal Assembly, senior party leaders, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President Hemant Khandelwal and Minister Kailash Vijayvargiya were among those present on the occasion. The Congress has fielded former Mandsaur MP Meenakshi Natarajan as its candidate. The last date for filing of nominations for three Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh is the 8th of June. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the road mishap in Ferozpur, Punjab today, which claimed 9 lives and injured several others. In a social media post, the Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was till today. Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia today said India's youth are the biggest strength of the country and will play a leading role in realizing the vision of Viksit Bharat by 2047. Addressing the youth for Vikasit Bharat, My Bharat Youth Convention in New Delhi, the minister said My Bharat was created by Prime Minister Narendra Modi as a platform for youth to share their aspirations, ideas and volunteer spirit for nation building. He added that 65% of the country's population is below

ने भी बरगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इन्फिरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्यादे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक केरलम और माहे में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निजाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वह सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से यह बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इक्तसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है।

0: चर्चा चारों ओर था। हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव

स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: नृत्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोबेल टाइम्स विशेषकर उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी तैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिख, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखू तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा मैगजीन है कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कुछ थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां

0: या उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपनी पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा। पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला तो जोशी बोले, तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले, मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उसका प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मुझे एक चीज ये थी उसमें फोटो भी छपता था तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूं, एक मनुष्य हूं, एक खास समाज में रहता हूं, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूं, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं अभाव की जो स्थिति है, आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान ली कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी

0: जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें। पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
1: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका महत्व यह है।
2: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
3: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है? हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
4: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
5: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
4: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
5: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
4: बिल्कुल,
5: और लगभग दोनों ने समान अधर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
4: जी,
5: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
4: शब्द चित्र
5: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए, और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
4: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
5: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
4: जी।
5: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
4: जी।
5: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य

0: जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है
1: जी
0: आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग
1: जी
0: किया है, इंदीवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण
1: ऐसा होता है।
0: भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है।
1: जी जी
0: तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में,
1: जी
0: साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही।
1: जी
0: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए
1: जी
0: हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो,
1: जी
0: लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है,
1: जी
0: वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस
1: जी
0: जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है,
1: बिल्कुल
0: और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं,
1: जी
0: उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है, तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों,
1: जी
0: या सुभद्रा कुमारी चौहान हों,
1: जी
0: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया,
1: जी जी
0: और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया,
1: जी
0: तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने
1: जी
0: स्वर देकर
1: स्वर
0: के
1: दिया
0: और
1: था
0: एक
1: उन्होंने।
0: कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था,
1: जी
0: तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई, इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है, और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान
1: जी
0: दिलाने के
1: जी
0: काम में
1: उनके
0: आकाशवाणी
1: लिए
0: का
1: एक
0: जो
1: बड़ा
0: अवदान है
1: प्लेटफॉर्म मिला है सर
0: वो तो
1: वो।
0: अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है,
0: जी
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से,
1: जी
0: कृष्णकांत जी दुबे,
1: जी
0: नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण
1: स्वतंत्र
0: करना
1: कुमार ओझा
0: चाहता
1: जी
0: हूं,
1: जी
0: ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया,
1: जी
0: उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें, तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित
1: जी
0: करना,
1: जी
0: कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा, लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है,
1: जी
0: वो एक प्रकार से कला का विषय
1: कला
0: है,
1: का विषय
0: लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है,
1: जी
0: चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का,
1: जी
0: और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के, आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है,
1: जी
0: उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं, अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए, और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने, तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ. विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rishikesh Gangurde, Akashwani ke A Shreni ke Gayak Kalakar hai. उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडिली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी, ग्रैंडर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। बियॉन्ड हिज वोकल प्रोवेस, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज एकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: यह था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our time.
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils in